0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, हमारा जो प्रयत्न है वह है लोगों के दुखों का निवारण करना। अब दुख दूर कैसे हों, जीवन की समस्याएं दूर कैसे हों। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है, हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। अब कैसे उनके दुखों का नाश हो सकेगा, इसका सरल उपाय एक ही दिखता है दोस्तों, वो है शिव पुराण या शिव भक्ति या अपने इष्ट की भक्ति। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यह पुराण जो है वो तो ऐसा पुराण है, ऐसा रामबाण है उपाय, इसको पठन मात्र से या श्रवण मात्र से इंसान के सारे दुख, सारी समस्याएं जो वो घिरा हुआ है, जिनसे परेशान है, दुखी है, सब दूर हो जाते हैं। वो उसको व्यापते ही नहीं हैं। और जो ऐसा पुराण हो, जो ऐसा अचूक उपाय हो, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, तो वो क्यों ना कर लिया जाए। सिर्फ इसीलिए आपके परोपकार के लिए एक छोटा सा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपकी समस्याएं, आपका जीवन जो है वो आनंदित हो, उसके लिए आप शिव पुराण सुने। और दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने एक बहुत ही सुंदर, रोचक और जो गूढ़ ज्ञान वर्धन करने वाला प्रसंग था, वो हमारे दोस्तों को आपने सुनाया कि किस प्रकार से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा, जिसे और कोई मार ही नहीं सकता था, और कैसे फिर सारे देवगण जो साथ गए थे, उन्होंने भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुतियां की। फिर भगवान शिव शांत हुए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने उनकी स्तुति की थी। तो लीला जी, हम पूछना चाहते हैं कि उसके बाद क्या सारे देवगण वापस चले गए और भगवान शिव भी पार्वती सहित अपने कैलाश को लौट गए, तो क्या हुआ इसके बाद, कथा कैसे आगे बढ़ती है, वो हम सब सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 11वां अध्याय चल रहा है। और इस 11वें अध्याय में भगवान शिव जब रुद्र रूप धारण किए त्रिपुर को मारने के लिए, तो फिर वो वापस अपने स्वरूप में नहीं आए, शंकर रूप में, शिव रूप में वापस नहीं आए। उनके रौद्र रूप को देख करके सभी भयभीत होने लगे, कांपने लगे। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान ने स्तुति की। अब देवता स्तुति करते हैं और वो भगवान शिव से कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं यहाँ देखते हैं। देवनाथ महादेव करुणा कर शंकर, प्रसीद जगताम नाथ, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद सर्वकर्ता त्वम, नमाम त्वाम वयम मुदा त्वयि भक्तिर भक्तिर दृढास्माकं नित्यं स्यादन पायनी। वो कहते हैं, देवताओं ने कहा कि देवनाथ महादेव, दयालु शिवजी, संसार के स्वामी हे शिवजी, प्रसन्न होइए। हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। अविनाशी मतलब भक्ति ऐसी हो जो विनाश को प्राप्त नहीं हो, कि आज तो हमने पूजा की है, कल जो है छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। या आज हमने पूजा की 2 घंटे और उसके बाद फिर भूल गए भगवान को, 24 घंटे में से 22 घंटे भूले रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अविनाशी भक्ति क्या होती है, प्रश्न ये उठता है। अर्थात भक्ति वह जो कभी खत्म ही नहीं हो। भगवान के साथ जो भक्ति होती है वो हमेशा अविनाशी ही रहे। यानी कि सुबह दूं, शाम दूं, मन करता आठों याम दूं, ये भक्त कहता है कि आपको सुबह सुबह में जो है नमन करूं, शाम में भी नमन करूं, लेकिन मन तो कहता है कि आपको आठों याम नमन करता रहूं, आपकी आठों याम भक्ति करता रहूं। इसलिए आपने देखा होगा कीर्तन होते हैं बहुत जगह तो अष्टयाम कहे जाते हैं, यानी कि आठों याम कीर्तन, सुबह दोपहर शाम तक रात तक कीर्तन चलता ही रहता है। अखंड जप भी आपने सुना होगा 24 घंटे चलते रहते हैं। तो ये सब बाहरी क्रियाएं हैं,
0: अखंड जप है
1: कीर्तन है, आठों पहर जो भी किया जाता है वो सब बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन मन हमारा अंतर में निवास करता है। तो आंतरिक क्रियाएं ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें ईश्वर को समर्पित कर दें, और आठों याम यानी आठों पहर सिर्फ भगवान ही हमारे सामने हो तो इसको अष्टयाम भक्ति कहते हैं। ये अविनाशी दृढ़ भक्ति होती है कि जरा भी भगवान के नाम से जो है हम दूर नहीं हो पाते, और इसी अविनाशी दृढ़ भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं, ये देवतागण शिव जी से कहते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा। अब शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे विधे, हे हरे देवा, प्रसन्नो अस्मि विशेषतः मनो अभिलषितम ब्रुत वरम सर्वे विचारतः। कहते हैं शिव जी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, आप सब इच्छा अनुसार वर मांगिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। अब सभी देवताओं ने कहा, क्या कहा, यदि प्रसन्नो भगवन यदि देयो वरस्त्वया देव देवेश चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासान ही नः सुरान यदा दुःखं तु देवानां संभवेद देव सत्तमा तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। वो देवतागण कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं का पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश करें। ये बहुत बड़ी बात देवताओं ने मांग ली कि जब भी कष्ट हो तब आप हमारा कष्ट दूर करें, हमारा कष्ट हरण करें, क्योंकि आप ही कष्ट हरता है, और आप अगर प्रसन्न होते हैं तो समझिए कि हमारा भी अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहते हैं संत कुमार जी ने कहा इसके बाद कि इत्युक्तो भगवान रुद्रो ब्रह्मणा हरिणा अमरे युग युगपत प्राह तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरंतरम। इस तो अब ब्रह्मा जी सब जो है जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न मन से कहने लगे, और उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है जब भी हमारा कार्य पड़े तो आप आ जाया करिए। तो संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु ऐसा ही कहा। हे देवताओं, आपके कहे हुए उन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ, इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उनको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। तो यहाँ जो भक्तिमय स्तोत्र हैं, जो स्तुति है देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, हरि के द्वारा, तो ये स्तुति हम सबको भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि वो प्रसन्न तो हमारा अंतर्मन प्रसन्न, और हमारा अंतर्मन प्रसन्न तो फिर हम सारे कार्य प्रसन्नतापूर्वक करेंगे, नहीं तो बस ऐसे ही आशा निराशा दुख सुख में डूबे रहेंगे। और दुख सुख का गहवर जो है वो तो है ही, सबके साथ है। कहते हैं कि जैसे रथ का पहिया होता है, उसमें 24 अरे लगे हुए होते हैं, ये सभी जैसे जैसे रथ घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं। तो हमारा सुख दुख ठीक इसी तरह से है, कभी पहिया ऊपर होता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर होता है फिर नीचे आता है, तो दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो इस सृष्टि का नियम ही है।
0: लीना दी, ये सत्य है कि जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा कि हमेशा सुख ही सुख रहे या हमेशा दुख ही दुख रहे, तो ऐसा तो दोस्तों कभी होता नहीं है। जब भगवान इनका युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो कुंती ने, कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि बुआ आप मांग लो, क्या मांगना है। तो दोस्तों पता है क्या मांगा था कुंती ने कृष्ण से? उसने कहा था केशव तुम मुझे दुख ही दुख देना। दोस्तों उसने दुख ही दुख क्यों मांगे? वो तो कुछ भी मांग सकती थी कि मुझे कभी ऐसा दृश्य ना देखने को मिले, कभी महाभारत जैसा, कभी मुझे दुख ना मिले, मेरे संतान को, कुछ भी मांग सकती थी ना। अब हम क्या मांगते हैं भगवान से? हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को धन देना, हमारे बच्चों के काम संभालना, बहुत कुछ मांगते रहे, मांगते ही रहते हैं। चलो भगवान से तो मांगना है, उसी से ही मांगना चाहिए। लेकिन उसने दुख क्यों मांगा? ताकि वो भगवान को, केशव को, श्री कृष्ण को पहचानती थी कि ये कौन है, और वो हमेशा उनको स्मरण रखना चाहती थी। वो जब भी बुलाए दुख में तो उनको आना ही पड़ेगा, वो हमेशा उनको स्मरण रखना करते रहना चाहती थी। बिल्कुल वही बात आप अपने जीवन पर लागू रखिए। आप हमेशा ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण करते रहेंगे तो दुख आएंगे जरूर, पर दुख सहने की क्षमता भी ईश्वर ही देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख आए और कब चले गए, और सुख आएंगे तो सुख में भी अभिमान करने की दुर्बुद्धि ईश्वर आपको नहीं देगा। दुख आए उसमें भी समान और सुख आए उसमें भी समान, आएंगे तो दोनों ही। इतने उदाहरण ईश्वर ने प्रकृति में ही दे रखे हैं। गुलाब का फूल इतना खूबसूरत होता है, फिर भी उसकी हर डाली में इतने कांटे होते हैं, एक फूल के साथ 10-10 कांटे होते हैं। अब इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि फूल में सुगंध भी है, सुंदरता भी है, ईश्वर ने मतलब देखते जाओ इतना सौंदर्य उसमें दिया है, लेकिन उसके साथ कांटे भी हैं, यानी कि उसके जीवन में दुख भी है और वो सुख भी है, उसकी सुगंध का, उसकी सुंदरता का। तो इन सब से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। आजकल जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो संतुष्ट नहीं है वह कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता, उसे संतोष मिल भी नहीं सकता। जो कुछ अपने पास है दोस्तों उसमें ही संतुष्ट रहिए। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाकर रात को आता है और बिना कोई चिंता किए हुए अपने सारे परिवार के साथ वह आनंदित होकर जैसा भी भोजन घर में बनता है उसको करके आराम की नींद सोता है। लेकिन जिसके घर में धन अधिक है ना तो उसको चैन की नींद आती है, ना ही वह अपने भोजन का आनंद ले पाता है, ना ही वह सो पाता है, दवाइयों पे दवाइयां खाता रहता है, तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा? क्या आप ऐसा धन चाहेंगे जिसमें जीवन का सुख ही चला जाए, जिसमें संतुष्टि ना आए? अब क्योंकि संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा, हैं? संतोषम ही परम सुखम ये कहा गया है, लेकिन संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ? तो दोस्तों जो लीना जी ने अभी बताया, जैसा कि हमारा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे तो दुख व्यापेंगे नहीं, आएंगे पर आपको अंदर तक दुखी नहीं देंगे, आप आएंगे और आप उसको सहन करते चले जाएंगे, सुख आएंगे उसको, आनंदित होते चले जाएंगे।
1: तो इस तरह से रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 11वें अध्याय में भगवान शिव ने देवताओं को वर दिया। अब 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। अच्छा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सनत कुमार जी, एतस्मिन् अंतरे शंभुम प्रसन्नम वीक्ष्य दानव तत्र आजगाम सुप्रीतो मयो दग्ध कृपा बलात् प्राणनाम हरम प्रीत्या सुरान्यान अपि ध्रुवम कृतांजलिर नत स्कंध प्रणमाम पुनः शिवम। कहते हैं इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने से बचा हुआ मय दानव शिव जी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मय दानव ने उनकी स्तुति की। क्योंकि मय दानव ही है जो भगवान विश्वकर्मा की तरह है। भगवान विश्वकर्मा क्या करते हैं, ईश्वर से संबंधित जो भी शिल्प कला होती है वो भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। जैसे जब ये बनाया गया महल भगवान शिव के लिए, तो वो किसने बनाया था,
2: विश्वकर्मा।
1: और जो
2: ये रथ बनाया था तो भी विश्वकर्मा,
1: वो भी विश्वकर्मा। शिल्प कला से संबंधित हर कार्य विश्वकर्मा करते हैं देवताओं की ओर से। और दानवों की ओर से जो शिल्प कला है वो कौन करते हैं, मय दानव। तो मय दानव ने त्रिपुरासुर की नगरी बनाई थी, लेकिन वो मय दानव बचा रह गया। क्यों बचा रह गया भाई, क्योंकि वो शिव जी को का भक्त था और शिव से उसका द्रोह नहीं था। त्रिपुरासुर आदि भी भक्त थे, लेकिन उनका धीरे धीरे शिव से द्रोह बढ़ता चला गया था, तो इसलिए वे नष्ट हुए। लेकिन मय का शिव से द्रोह नहीं था, इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम सब अगर शिव भक्ति में रमे रहेंगे तो हम सब का शरीर भले समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे मन, हमारी आत्मा सब में शुभ कर्म ही विराजेंगे। और शुभता जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ अंधेरा छट जाएगा। तो मन का अंधेरा अगर हमें छांटना है तो भगवान शिव के शरण में हमें जाना चाहिए। तो अब मय दानव का अंधेरा छट चुका था, उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे नहीं मारा, तो वो खुश होकर के शिव के पास गया। और देखिए आगे क्या होता है, मय दानव ने उनकी स्तुति की। अब वो भी कहता है, मय दानव भी कहता है कि देव देव महादेव भक्तवत्सला शंकर कल्प वृक्ष स्वरूपो असि सर्व पक्ष विवर्जित ज्योति रूप नमे नमस्ते अस्तु विश्व रूप नमो अस्तु ते नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः चित्र रूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः दिव्य रूपाय दिव्या सुदिव्या कृतये नमः नमः प्रणत सर्वार्थी नाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भर्त्रे च संहर्त्रे त्रिलोकानाम नमो नमः। अब देखिए मय दानव भी पढ़ा लिखा विद्वान था और उसने भी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति की। उसने कहा देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि ये दानव है और ये देवता है, आपने तो दोनों को समान रूप से
2: आशीर्वाद दिया।
1: तो आप ज्योति रूप विश्व रूप पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संघर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु तपस्या के फल को देने वाले शिवपति शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। इतना चीज सब कुछ बोल करके आगे वो कहता है कि मैं स्तुति करना नहीं जानता, आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। अब उसके अंदर भय खत्म हुआ और थोड़ा साहस करके वह भगवान शिव के पास गया और शिव की आराधना किया, उनकी स्तुति की और अंत में अपनी अज्ञानता भी बताई, अपना जो उसके अहंकार के समूल नाश का प्रतीक है कि भगवान शिव जो है सबसे पहले अहंकार का भक्षण करते हैं। वो किसी भी मनुष्य किसी भी पशु के अंदर तो अहंकार काम क्रोध होता नहीं है, लेकिन मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य को भी पशु की ही संज्ञा दी गई है, तो वो किसी के अहंकार का वो तुरंत भक्षण कर लेते हैं भगवान शिव। तो जब मय दानव उनके पास पहुंचा तो वो अहंकार रहित हो गया था। अहंकार रहित व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्तुति करना, तो कैसे स्तुति करूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होइए मुझ पर और मुझे शरणागति अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तब सनत कुमार कहते हैं, इत्याकर्ण्य मयोक्ताम हि संस्तुतिम परमेश्वर प्रसन्नो अभिहूत द्विज श्रेष्ठ मयम प्रोवाच चादरात। कहते हैं सनत कुमार जी कि इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर वे नारद शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा, हे नारद शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। देखिए शिव जी पर ब्रह्म परमेश्वर है, फिर भी वे अपने से छोटों का निरादर कभी नहीं करते, तो आदर पूर्वक उन्होंने मैं दानव से कहा। क्या कहा शिव जी ने? कहते हैं, वरम ब्रूहि प्रसन्नो अहम मैं दानव सत्तम मनो अभिलषितम यत्ते तद दास्यामी न संशय। वो कहते हैं कि हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा कि मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। अब मैं दानव ने क्या कहा? कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान वर योग्यो अस्मि अहम चेद्धि स्वभक्तिम देहि भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम स्वभक्तिम देहि शाश्वतीम स्वभक्तेषु सदा सख्यम दीनेषु च दयाम सदा उपेक्षा मन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर कदापि नासुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदानाथ मग्न मग्न त्वद भजने शुभे। अब मैं दानव कहते हैं क्या कि देव देव महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। यानी कि मैं दानव के मन में भी भक्ति जागृत हुई और वह दानवता छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा भगवान शिव की कृपा से। और वो फिर आगे कहता है, हे परमेश्वर अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता दिनों में दया खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो। असुरत तो उसके अंदर पैदा नहीं हो, क्योंकि वो मैदानव जान रहा था कि जो राक्षस कोटि के हैं, जो राक्षसी वृत्ति जिनकी है, उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। इसलिए उसने ऐसा भगवान महेश्वर से कहा और महेश्वर ने फिर कहा कि हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो, मैंने तुम्हारे इच्छित वर इस समय तुम्हें दे दिए हैं, तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार बीतल लोक में चले जाओ। अब दानव जो है सब पाताल के नीचे रहते हैं, अतल बीतल सुतल आदि बहुत सारे सात लोक हैं, तो उन्होंने बीतल लोक में मैं दानव को भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है, तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो, तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। यह आश्वासन भगवान शिव ने किसे दिया? मैं दानव तो भगवान शिव के लिए देव और दानव दोनों बराबर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये धनुज हैं, ये राक्षस हैं, इनको वर नहीं दिया जाए, या उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये देवता हैं तो सिर्फ इन्हें ही वर का अधिकार है। जिसने भी उनसे जो कुछ भी प्यार से मांगा, भक्ति से मांगा, उसे उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया। तो मैं दानव को भी उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया कि आप बीतल लोक में सपरिवार रहिए जा करके, और यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक ये प्रसंग था लीना जी, और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला था जिसको हमने कभी ना बाहर सुना है और ना ही हमें सुनने को कहीं मिला कि किस तरह से एक दानव भी भगवान की भक्ति पाकर उनके जो वरदान का है वो पात्र बन गया। तो जब दानव बन सकते हैं पात्र, तो इंसान क्यों नहीं बन सकते? तो लीना जी, अब क्योंकि एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, तो हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: और दोस्तों, अब मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम पुनः फिर मिलेंगे। इस एपिसोड को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए। Feel good, feel life.

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
2: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम।
3: हुँ.
2: फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए
2: रखी
3: है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
1: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
1: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
1: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र

0: जरूर है, तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगो अस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सभी कामनाओं

0: त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्रिय एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली, और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है, और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृष 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाभारत जो एक ग्रंथ है, इसके अंदर समाहित बहुत सारे विषयों के बारे में, बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के बारे में, और राग लेखा दासी जी हमेशा की तरह बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो राग लेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। तो वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर हस्तृष्ट हो गए थे।
0: जी।
1: उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया और वहाँ कुटी बनाकर आसपास के रमणीय वन, पर्वत, नदियों के किनारे विचरने लगे। अनेक वेद अध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक बातचीत करने पर कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछो, दुख के कारण उन सबके शरीर बहुत कृश हो गए हैं और वह वीर पत्नी होकर अनाथाशी हो रही है और सब और से दुखों से दबी हुई है। इसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार से दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। कुपुत्र के मुंह में सच कर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर इसे सुनाई। आजकल पांडव लोग द्वैतवन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्र से सज्जित होकर चले और यज्ञ चर्म और वल्कल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उनका घी जलावें। दुर्योधन से ऐसा कहकर दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में भी ये बात बसी हुई है। पांडवों को बल्कल वस्त्र चरम होड़े देख कर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी।
0: जी।
1: और इससे बढ़कर प्रशंसा की क्या होगा कि मैं द्रौपदी को भेदुओ वस्त्र पहने देखूं। कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैतवन जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश द्वैतवन में है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गोश यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है आजकल नरशार्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पासी में ठहरे रहे हैं। ये लोग जब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, किंतु अहंकार और मोह में चूर हो रहे हैं, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। शकुनी ने कहा, जहाँ पांडव लोग रहते होंगे वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं। इस प्रकार जब सब लोगों के ठहरने की ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवा कर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। द्वैतवन के सरोवर पर गए वे लोग और वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने सरोवर को घेर रखा था। सुता सरोवर को घिरा हुआ देखकर वे लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उसे सरोवर पर भेजा। गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंदबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, उसी से हम देवताओं पर इस प्रकार की हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सहस्त्र योजना कमर कस के तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बलाते स्वर्ण में घुस कर गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। एक एक कौरव वीरों को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। तब गंधर्वों ने सैकड़ों हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुर्योधन ने इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। चित्रसेन जी ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया और वो नीचे गिर गया रथ से। और बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ा लाने के लिए अत्यंत आतुर हुए। उनके मंत्री ने रो होकर धनराज से कहा, महाराज हमारे प्रिय ऋषि महाबाहु दृष्टराज कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे। धनराज ने कहा, भैया भीम इस समय कड़वी बातें सुनाने की का नहीं है। देखो ये लोग भय से पीड़ित होकर उसे प्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उसे उस तिरस्कार को वो सह नहीं सकते। अर्जुन नकुल सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ। यदि वह गंधर्वराज समझाने में जाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि अरे युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ये हमारा भाई दुर्योधन नहीं है सुयोधन है और हम लोग 105 भाई है। हम पांच भाई नहीं है 105 है
2: जी।
1: हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है। एक वे ही हम जैसी हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। मारुति पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। गंधर्व उन्हें उड़ते देखकर बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा गया जिसके चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे चित्कार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा। उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लटा दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। वे लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्री सहित बांध कर यहाँ ले आओ। भाइयों के साथ अर्जुन की सब प्रकार से रक्षा करना क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य है। फिर ये सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सही चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से सरलोक को चले गए। देवराज इंद्र के दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ के मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर व दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वैसा व्याकुल हो रहा था मानो इंद्रियां नष्ट हो गई है, शोक के कारण उसके हृदय थका जा रहा था।
2: जी श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और अभी रागलेखा दासी जी ने हमें कथा सुनाई, किस तरह से पांडवों की जो दुर्दशा हो रही थी वो भी बताया और कौरवों की क्रूरता के बारे में बताया, गंधर्वों से उनका किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से भाइयों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, ये सारी कथा हमने जानी महाभारत के इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा हम जान लेते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: दुर्योधन ने कहा, जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझे मंदोदती को मुंडन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो मैं उसी महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। मेरा जो विचार है वे सुनो, मैं यहाँ अंजल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब बाह्य सीमा से उड़ चले जाओ। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुर्योधन का प्रायोपवेश देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए कर्म कांड आरम्भ किया। वेद विधान में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में घी दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ से बड़ी ही अद्भुत कृपया जमाई लेती हुई प्रकट हुई। बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्य ने प्रसन्न के साथ इस प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ लिया। पुत्र ने कहा, जो आज्ञा, कहकर गई और एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुँच गई। एक क्षण में ही उसे देखकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आता देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोकों में भी उसकी निंदा होती है। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म, द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं में संग्राम करेंगे। अब आप अपने घर जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दुशन सवेरा होते ही खुद पुत्र करण ने हाथ जोड़कर हंसते कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छुपकर कहता हूँ, पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। इस प्रकार कहने और दुशासन के बहुत अनुनय विनय करने पर दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया और पांडवों के साथ युद्ध का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए साथी जोड़े उसको नियुक्त कर दिया। दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उस समय कौन का राजन सुनिए, मैं आपसे बात करता हूँ। विष्णु सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं, इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते। आपने जो सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी की विजय करने की आज्ञा दीजिए, आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शास्त्रों की शपथ कहकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार कर ली। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना लेकर चला और महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद अपना अशुद्ध बना लिया। उसे कर रूप में बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीत कर उनको भी कर लिया। वो हिमालय से शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। सब राजाओं को जीत कर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। इन सबको जीत कर इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी की विजय कर ली। दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि मैं पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था मैंने, अब मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन, इस समय सभी निपतिगण आपके अधीन है, आप याचकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। दुर्योधन ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए शास्त्र अनुसार विधिवत राजकीय यज्ञ आरम्भ कर दीजिए, इसकी समाप्ति पर मैं यथेष दक्षिणाएं दूंगा। उस पर पुरोहित ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किन्तु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, उसका नाम है वैष्णव यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ही जोड़ का है और हमें बहुत प्रिय है, इससे आपका हित होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। राजन, यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार हैं, सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। उस समय सारे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनमें से एक दूसरे दुशासन से कहा तुम शीघ्र ही जयपुरम जाओ और वहाँ रहने वाले पांडवों और ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। युधिष्ठिर ने कहा हम भी उसमें सम्मिलित होते किंतु इस समय इस प्रकार नहीं हो सकता क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास का नियम करना है। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते, फल मूल खाकर रहते थे। राजा युधिष्ठिर सोचते हम भाइयों पर जो महान दुख आ पड़ा है वे मेरी ही करने का तो फल है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती और नींद नकुल सहदेव द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। एक समय की व्यास जी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाते देखकर जीवन निर्वाह करते थे व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता, तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए उसे प्रसन्न होकर अपनी यथाशक्ति से दान दे। युधिष्ठिर ने कहा महामुनि दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा राजन दान से बढ़कर कठिन कार्य स्थिति पर दूसरा नहीं है। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए हुए धन का त्याग करना बड़ा ही कठिन है, अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है, उन्हें दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसमें से यदि कोई धन न्याय से कमाया गया हो तो उत्तम देश काल पात्र का विचार करके इसका दान किया जाए और इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है तो कर्ता की महान भरोसे रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकर लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह है मुद्गल ऋषि की कथा।
2: जी तो श्रोताओं इस ऋषि की कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आपसे इजाजत लेने का हो चला है। और इसी तरह बहुत सारी कथाएं और प्रसंग महाभारत के अंतर्गत जो समाहित हैं वो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं, लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेशन 107.8 FM। फील गुड, feel live.

सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूं बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वेव प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली. जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का. जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है. इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है. कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है. और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे. और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है. कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा. साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स हैं तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैन रेस्ट 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के 7 दिन मैं आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतुबंधनासन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंधनासन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतुबंधनासन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की। जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी। तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है। कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो अगर आप जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में। मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है, और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है। इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है। तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है। लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है, और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है। और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है। कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन। जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है। और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है। जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है। और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है। इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का। तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी। अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन्द्रो आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी, और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये घुमारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्टिस्ट. साक्षी में कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ वो दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया, कहीं आज इस तरह खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बन के अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया, लेकिन देखिए मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का, मस्तिष्क का

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूँ। तो चलो आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यह चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6 इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ। तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है। और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ।

गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा विटामिन हूँ, मेरी पहचान है। इसका फटाफट से आपको जवाब देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ। आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा। गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं विटामिन, क्या है मेरी पहचान। फटाफट से इसका जवाब आपको देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने वृष्णा 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल एक पहेली आपसे पूछी मैंने जिसका फटाफट से जवाब आ चुका है. हमारी लिसनर ने यह जवाब दिया है. लिसनर का नाम है प्रियंका. प्रियंका मिश्रा जो है इनका नाम है. उन्होंने जवाब दिया है सेक्टर 21 से, इन्होंने मैसेज करके मुझे जवाब दिया है. आपको बता दूं एक बार पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूं. आंखों की रोशनी का हूं पहरेदार, रात में दिखने में करता हूं उद्धार. मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा विटामिन का नाम, क्या है मेरी पहचान. तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ए. जी हाँ, और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से. लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का. तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो।

बड़ा जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि एक पहेली आपसे पूछी है मैंने, 2 पहेलियाँ आपसे पूछी. सबसे पहले सटीक जवाब दिया है हमारी लिसनर आंचल ने, और दूसरा जवाब जो है हमें दिया है हमारी आज की लिसनर ने, और जिनका नाम है प्रियंका मिश्रा. बिल्कुल सही दोनों के ही जवाब रहे. अलग अलग मैंने आपसे जो है पहेलियाँ पूछी और आपने दोनों ही जवाब जो है दिए हैं आप दोनों ने ही. चलिए इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस. और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का. जी हाँ, वक्त ये कहता है कि अब इजाज़त तो लेनी होगी, क्योंकि ये वादा आपसे करती जाती हूँ कि कल होगी मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है. बहुत देखिए यहाँ पर बातें जो है ये तो होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन अब मुझे चलने का जो है वो टाइम हो चला है, यानी कि मुझे इजाज़त का टाइम जो है ये हो चला है. तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जो लेकर आता है उन हस्तियों को जो देश का परचम लहराते हैं विश्व पटल पर। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बियॉन्ड द गेम प्रोग्राम में है श्रेयसी सिंह, एक ऐसा नाम जो ट्रैप शूटिंग में काफी महारत हासिल कर चुका है। और सिर्फ शूटिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे देश की राजनीति की भी, क्योंकि एक ऐसी शूटर हैं जो देश की राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं और बिहार के जमुई से ये MLA भी हैं। और ट्रैप शूटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेडल्स ही मेडल्स की बारिश है और अर्जुना अवार्डी भी रह चुकी हैं। सो श्रेयसी सिंह मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज की स्टूडेंट भी हैं। श्रेयसी के बारे में बहुत सारी बातें आज हम जानने वाले हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज समय निकाल कर यहाँ पे आ पाई हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है और खिलाड़ी हो और आप पॉलिटिक्स में हो तो समय अपने आप ही नहीं बचता किसी से मिलने का। सो थैंक यू सो मच श्रेयसी सबसे पहले तो आने के लिए रेडियो मानव रचना।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बिकॉज कमिंग टू मानव रचना हमेशा ऐसे लगता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ आने से ऐसे लगता है कि अपने घर अपने मायके वापस आ गए।
0: क्या बात है, तो
1: नॉट दैट आई एम मैरिड बट स्टिल इट फील्स लाइक होम।
0: क्या बात है, मतलब मायके में वापस आ गई हैं। और अर्जुना अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, सभी की झड़ी जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। सो श्रेयसी सबसे पहले तो मैं आपसे, बियॉन्ड द गेम हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें हम बहुत से खिलाड़ियों से बातचीत कर चुके हैं, आज आपका आना हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे आपने कहा

हर वापसी जैसी फीलिंग आती है। हमारे लिए भी ऐसा है कि हमारे ही अपने जो बच्चे होते हैं ना मानव रचना के, जब वो आते हैं तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है। सो सबसे पहला सवाल आपसे यही, शूटिंग की शुरुआत कैसी हुई? आपकी फैमिली में शूटिंग थी ये तो मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि फैमिली वाली चीज जो है वो बच्चे

0: उस जुनून को देखते हुए मेरा मन किया कि मैं भी निशानेबाजी करूं, लेकिन एज एन एथलीट, नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड. तो वहां से एक लंबी सफर की शुरुआत हुई.
1: और उस समय आप कितनी उम्र की थी, कब से शुरुआत करी?
0: 16 साल की थी.
1: यानी ऐसा नहीं है जैसे हम बाकी खेलों में देखते हैं कि 8-9 साल से, 6 साल से बच्चों को प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं. शूटिंग आप लेटर एज
0: निशानेबाजी में लोग कहते हैं कि क्योंकि खास तौर से शॉट गन शूटिंग जिसमें ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट इवेंट्स आते हैं, तो सबका ये मानना है, कोचेस का और ऑफिशियल्स का, कि जब तक 12 वर्षीय नहीं होते तब तक वो मसल डेवलपमेंट नहीं होती जिसकी जरूरत होती है. बिकॉज शॉट गन इज हैवी, 12 बोर बंदूक से हम चलाते हैं और उसका रिकॉयल बहुत होता है, तो मसल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा और पहले शुरू कर लेती तो, क्योंकि इतना जुनून है निशानेबाजी के लिए आज भी दिल में, कि उसको और लंबा मैं अपने करियर को चला सकती थी. बट मैं तो यही कहूंगी कि देर आए तो रुस्त आए.
1: बिल्कुल. और 2018-2014 कॉमनवेल्थ गेम्स कमाल के रहे, मेडल्स मिले, फिर उसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी मिला आपको. तो ये सब करने के बाद आप ओलंपिक्स भी खेली
0: जी.
1: तो इतना सब कुछ करने के साथ साथ ये राजनीति का टाइम कैसे मिला? क्योंकि राजनीति की बात अगर मैं करूं तो जो लोग राजनीति में जाते हैं वो बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं.
0: देखिए, इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगी. पहली बात, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आपके पास वो जुनून, वो पैशन है कुछ भी चीज़ परस्यू करने के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ जिसमें आप बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस जज्बे के साथ आप करना चाहते हैं, तो आप रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे. भले ही रात में आप 4 घंटे की नींद लें, विच इज़ नॉट हेल्दी, बट भले ही आप 4 घंटे ज़्यादा ट्रैवल कर लें, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन अगर वो जज्बा है तो रास्ता बन के निकल के आ जाता है. दूसरी बात, निशानेबाजी से राजनीति में आने का जो ये निर्णय लिया था मैंने, मतलब कोई शॉकिंग या कोई सरप्राइजिंग निर्णय नहीं था. मैं एक बहुत कम उम्र से ये जानती थी और ये समझती थी कि मुझे गंभीरता के साथ राजनीति में आना है. और इसकी चर्चा मैंने अपने पिताजी से भी एक बहुत कम उम्र में की थी. हालांकि उतनी समझदारी, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जुनून था.
1: जुनून
0: इसलिए था क्योंकि मैंने पिताजी को देखा था कि किस तरह से वो राजनीति करते थे और क्या उनकी फैन फॉलोइंग थी, और जो उनके आदर्श थे, जो उनके मोरल्स थे, जो उनकी लर्निंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स थी, उन सिद्धांतों पर मैं भी चलना चाहती थी. तो 2000, लेकिन हाँ, पापा ने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि श्रेसी, राजनीति को एक प्रोफेशन समझ के कभी उसमें मत आना. राजनीति जब भी करना तो सेवा भाव से करना, तभी ईमानदारी से कर पाओगी. वरना राजनीति, जब तुम्हें लगेगा कि राजनीति तुम्हारा जॉब है और तब तुम उस जॉब की तरह देखने लगोगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो सेटबैक्स आने लगेंगे और ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होगा.
1: बिल्कुल.
0: ईमानदार सिर्फ मॉनेटरी वेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ईमानदार मतलब खुद से, एक ईमानदारी से, लगन से आदमी जो काम करता है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर रही हूँ. तो पापा ने हमेशा बोला था कि अपने जिंदगी में कुछ बन जाना, उसके बाद राजनीति में आना, ताकि वो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं कुछ अचीव करके राजनीति में सेवा भाव के साथ आ रही हूँ. 2018 में अर्जुना अवार्ड मिला. 2019 में कुछ नेताओं की मंशा थी कि मैं राजनीति में, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, कि मैं राजनीति में आऊं. लेकिन मेरा उस वक्त का डिसीजन था कि मुझे तैयारी करके ओलंपिक गेम्स तक जाना है. तो अनफॉर्चुनेटली 2020 के ओलंपिक गेम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन भी हो गए और उसी साल बिहार का विधानसभा का चुनाव भी था. कोविड भी आया, तो कोविड में हर किसी के तरह हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से ये बात बिहार के बच्चों से, बिहार के युवाओं से ये निकल के आया कि दीदी आप भी राजनीति में आइए. और तब कहीं ना कहीं लगा कि एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं निशानेबाजी के करते करते, और अब शायद बिहार को मेरी ज़रूरत है कि एक अच्छा प्रतिनिधि बन के दिखाए, जनप्रतिनिधि बन के दिखाए. तो उस तौर से हम राजनीति में आए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और आपको इनकी भाषा से ही पता लग गया होगा कि हम बिहार की राजनीति में आए वाली जो ये भाषा होती है, बहुत प्यारी भाषा होती है. जो लोग बिहार और यूपी से ताल्लुक रखते हैं वो इसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं. तो श्रेयसी, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन जब आपने शूटिंग शुरू की तो शुरुआती दौर में कोई चैलेंजेस नज़र आए, कोई दिक्कतें नज़र आईं? क्योंकि जब बच्चा स्कूल में होता है 16-17 साल का, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसे में

0: बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि यार ये शौकिया चीज ली थी, अब कहीं प्रेशर तो नहीं बन रहा है। ये होता है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ। तो ऐसा कोई प्रेशर के टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं, पढ़ना भी है, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, कॉलेज भी ढूंढना है, करना है, आगे सारी चीजें।
1: आई थिंक एक खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को क्योंकि लेकर आगे बढ़ना था, मतलब हर दिन वो चुनौती लगता था। हर दिन ही एक नया संघर्ष होता था कि कहीं ट्रेनिंग भी, और एक तो शॉटगन ऐसा स्पोर्ट है जो आप रात को शाम को नहीं खेल सकते,
0: आपको
1: एग्जैक्टली आउटडोर स्पोर्ट है और रोशनी में खेलना है। तो और वही टाइम स्कूल और कॉलेजेस का भी होता है, तो वो चैलेंज हमेशा था। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम सो ग्रेटफुल टू माई स्कूल, टू माई कॉलेज एंड टू मानव रचना, बिकॉज एवरीवेयर दैट आई वेंट आई फाउंड टीचर्स, आई फाउंड फैकल्टी मेम्बर्स जो हमेशा उस मेरे उस संघर्ष का हिस्सा बन के मेरे संघर्ष को समझ पाते थे। और मुझे लगता है कि गुरु वही सही है जो, चाहे वो जिस भी फील्ड का गुरु हो। आज हम लोग किसी प्रोफेशनल सेटअप में भी जाते तो एक मेंटोर जरूर रहते हैं। तो कोई भी गुरु किसी भी फील्ड में हो, अगर वो अपने शिष्य का संघर्ष समझ पाए और उस संघर्ष में उसका साथ दे पाए तो सच्चा गुरु वही है।
0: बिल्कुल।
1: और वही गुरु मुझे डीपीएसआर के पुरम में भी मिले, मुझे हंसराज कॉलेज में भी मिले और मानव रचना में भी मिले। मेरे हर जिंदगी के पड़ाव में जब मेरी पढ़ाई को निशानेबाजी के साथ लेकर आगे बढ़ना था तो मेरे हर उस गुरु ने मेरा साथ दिया जो मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचा पाए है।
0: बिल्कुल। तो एक अच्छा मेंटर होना लाइफ में ना आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एकदम बदल देता है। सो ये जो प्रैक्टिस आप करती थी, फिर सुबह उठ के करती थी जल्दी जल्दी, या स्कूल से वापस आने के बाद जब बच्चा थक चुका होता है, टीवी देखना चाहता है?
1: स्कूल से आने के बाद कुछ दिन, स्कूल से आने के बाद एकदम हम लोग का स्कूल खत्म होता था अराउंड लंच आवर एंड बहुत कम टाइम होता है टू सन डाउन व्हिच इज अराउंड 4 o'clock मान लीजिए, तो हम लोग सीधा
0: स्कूल से
1: रेंज पे जाते थे। वहीं पे फ्रॉम आर यूनिफॉर्म वाज लाइक टी शर्ट एंड स्कर्ट,
0: करनी सिंह शूटिंग रेंज पे,
1: बट इन दिल्ली पब्लिक आर के पुरम।
0: ओके।
1: एंड वहाँ स्कूल से वो स्कर्ट और टी शर्ट में जाते थे लंच खाते हुए गाड़ी में, और शूटिंग रेंज करनी सिंह पे पहुँच के वी यूज़ टू क्विकली चेंज इन टू आर ट्रैक सूट और अपना इक्विपमेंट वगैरह तैयार करते थे एंड देन वी वुड ट्रेन। एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि बिकॉज लाइक यू सेड कि इतना धूप से फिर सीधे धूप में प्रेशर है सब कुछ है, आई ऑल्सो फेंटेड एट द रेंज ऑफ द गन इन माई हैंड, सो दैट वॉज अ बिट स्केरी, बट लाइक आई सेड दैट आई वॉज लिविंग विद दैट चैलेंज एवरी डे, हर दिन एक चुनौती था। बट आज अगर मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो लगता है कि शायद वही एक पागलपन सा था, जुनून सा था, कि हर दिन उस संघर्ष को मुझे बहुत मजा आता था। और कभी भी उस चैलेंज को अपने सामने देख के, आज भी जिंदगी में कोई भी चैलेंज होता है तो कभी भी मैं हदस्ती नहीं हूँ, निराश नहीं होती, लेकिन उस चैलेंज को देख के लगता है कि हाँ अब इससे कैसे पार हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और एक तरीके से जिंदगी का, और मुझे ये निशानेबाजी ने या मेरी खेल की स्पर्धा ने मुझे आज ये जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया है।
0: बिल्कुल।
1: कि जब सामने कोई चुनौती आए तो उससे हदसना या निराश नहीं होना, जीत और हार का फैसला बाद में होगा, लेकिन जब चुनौती आए तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, और किस तरह से उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसको अप्रोच करा जाए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये पॉसिबल हो पाता है कि आप अपने खेल में भी आगे रहें और राजनीति में भी आगे रहें और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें प्रेशर बहुत होता है।
1: जी।
0: आप खेल में जा रहे हैं, ओलंपिक्स 4 सालों में एक बार आता है, खेलों का महाकुंभ है, जब आप वहाँ जाते हैं तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, वो एक आम इंसान शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, हजारों जगहों से लोग आपको देख रहे हैं और अनगिनत कैमरास लगे हुए हैं आपके एक एक शॉट पर, सबकी नज़र रहती है, और ऐसे में कितना प्रेशर फील होता है ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी बातें या आपकी बातों को जानकर लोग समझेंगे कि कितना प्रेशर होता है। आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में, क्योंकि वहां पर तो मेडल्स की बारिश हुई, लेकिन ओलंपिक्स में एक अलग प्रेशर के साथ जब आप पहुंची तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगी।
1: जी।
0: तो कॉमनवेल्थ से शुरू करते हैं और फिर ओलंपिक्स पे आते हैं और फिर अगले ओलंपिक्स की भी बात करते हैं।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए मेरे लिए राष्ट्रमंडल खेलों पर विजय होना सिर्फ मेरा व्यक्तिगत सपना नहीं, लेकिन मेरे पिताजी से किया हुआ एक वादा था, और क्योंकि एक कम उम्र में मैंने उन्हें खोया था, और जो लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी वो भी राष्ट्रमंडल खेलों में एक अच्छे प्रदर्शन को लेकर हुई थी। तो निश्चित रूप से उस जीत को मैंने इमोशनली अपनी जिंदगी से जोड़ा हुआ था. और वो कहावत है ना कि हम तो अकेले चल पड़े थे, पलट के जब देखा तो पूरा का पूरा जमाना साथ था. और उसी सफर को जब शुरू किया था निशानेबाजी में, अच्छा प्रदर्शन किया, तो लोगों के साथ साथ सबसे पहले एक्सपेक्टेशन उम्मीदें बढ़ती हैं अपने माता पिता की. तो हमारे पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, उनको भी लगा कि नहीं जैसी अच्छा खेल रही है, आगे खेल के जीत सकती है, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जीत सकती है. तो उनसे मेरी आखिरी बात वही हुई थी. एंड 2010 में वो गुजर गए और एक 8 साल का लंबा संघर्ष के बाद हमने स्वर्ण पदक जीता था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में. तो उस चीज़ को अगर मैं उस सफ़र की बात करती हूँ तो प्रेशर उतना महसूस नहीं हो रहा था जितना, या प्रेशर झेलने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई थी. क्योंकि अपने पिता को किए गए वादे का जो संकल्प लिया था वो उस प्रेशर से कहीं ज़्यादा ऊंचा था
0: बड़ा था.
1: और एक सफ़र जो एक बेटी और पिता के सपने से शुरू हुआ, उस 8 साल के सफ़र में बिहार के बहुत लोग, भारत के बहुत लोग उस सपने को से जुड़ चुके थे. तो जब इतने सारे लोग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकली, लेकिन जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो जितना भी प्रेशर हो वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाता है, वो बट जाता है सब.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: ओलंपिक गेम्स तक जब पहुंचे तो एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, लेकिन मेरा पहला ओलंपिक गेम्स था. और जैसा आपने कहा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि किस तरह का प्रेशर होता है. मुझे आज भी याद है, मैं शायद इस उदाहरण से लोगों को समझा पाऊँ कि कितना प्रेशर होता है. जब सुबह से उठते थे तो रात के 9-9:30 बजे तक का एकदम शेड्यूल बना रहता था.
0: टाइट शेड्यूल होता है क्या?
1: टाइट शेड्यूल रहता था और उसी में रिक्रिएशनल टाइम भी रहता था. आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कमरे में ना, हम वैसे खिलाड़ी नहीं थे कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें और किसी से बातचीत नहीं करें. तो रिक्रिएशनल टाइम हो, ट्रेनिंग टाइम हो, कोच के साथ कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो, वो सब चीज़ का प्लान बंधा हुआ था. सुबह से उठ के मतलब वार्म अप हो, शाम आके वर्कआउट करना है, रेंज कितनी बंदूक चलाने है, कारतूस चलाने, क्या क्या करना है, सबका बना हुआ था. अब 9:30 बजे था कि अब सोना है. अब नेचुरली आप एक पेन पेपर को डायरी पे लेके लिख सकते हैं दैट दिस इज व्हेन योर नाइट टाइम और योर स्लीप टाइम स्टार्ट्स. लेकिन रात को जब आप 9:30 बजे उस बिस्तर पे लेटते थे, लाइट ऑफ कर देते थे, तो उस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ ख्याल के अलावा और कुछ नहीं आता.
0: बिल्कुल.
1: अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ खेल से जुड़े हुए, कुछ ओलंपिक से जुड़े हुए, कुछ माँ से जुड़े हुए, कुछ राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन वो ख्याल बहुत क्राउड कर देते थे. तो दिमाग एकदम जैसे टेबल टेनिस का कोई पिंग पोंग टेबल होता है ना, टक टक टक टक, टक, टक, टक, टक और दिमाग वैसे चलता रहता था. और उसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया.
0: हाँ.
1: कि हाउ डू यू टीच योर सेल्फ टू स्लीप. नॉर्मली लोग इतना दिन भर थक जाते हैं, सो जाते हैं, किसी ने सिखाया ही नहीं कि भाई सोते कैसे हैं. तो आई थिंक सबसे बड़ी कठिनाई मेरे लिए उस दौरान वो थी कि शाम को जब, रात को जब कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, तब उस खाली दिमाग को शांत करके सोए कैसे.
0: क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है पूरे दिन में. और
1: पेरिस ओलंपिक गेम्स में आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं मीडिया की तरफ से कि खाने में कितनी प्रॉब्लम थी.
0: काफी
1: तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से लेके इतनी बड़ी बड़ी, जो एक सपना है हर खिलाड़ी का सपना होता है कि स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक गेम्स में, तो उस सपने से लेके इतनी छोटी छोटी चीजों तक ध्यान जाता था.
0: बिल्कुल.
1: और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता था मेरे लिए.
0: कोई फैमिली से गया था आपके साथ वहाँ पर?
1: हाँ, मेरे पूरे राजनीतिक और पूरे निशानेबाजी के करियर में हम, माई मदर हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी. माई मदर, माई सिस्टर एंड माई मासी, ये तीन महिलाओं का
0: मतलब
1: साथ,
0: पूरी वुमेन आर्मी जो है इनके साथ लगी रहती.
1: ये तीनों महिलाओं का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है मेरे, और खास तौर से मेरे निशानेबाजी के करियर में. और मुझे अगर आप समय अलाउ करते तो मैं छोटा सा एक कहानी बताना चाहती हूँ. 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत रोमांचक मोड़ पे आकर गोल्ड मेडल डिसाइड होना था, मेरे और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहे थे गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी थी एमा कॉक्स उनका नाम था, उनके और मेरे बीच में गोल्ड मेडल का टाई शूट होना था, लाइक अ पेनल्टी शूट आउट और यू नो सडन डेथ जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: और सिर्फ हम दोनों के बीच में था, तो पूरा स्टेडियम ऑजी ऑजी का नारा लगा रहा था, ताली बज रही थी, ऑफ कोर्स होम ग्राउंड एडवांटेज उसी को कहते हैं, और उस वक्त मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े चक्कर में पड़ गए, क्योंकि एक तो फॉरेन लैंड, ऊपर से भारत में अभी तक किसी ने स्वर्ण पदक निशानेबाजी में खासतौर से शॉटगन की स्पर्धा में नहीं जीता था, तो वो प्रेशर भी था, पिताजी का सपना पूरा करने वाली बात की, करोड़ों बिहारी और भारत के लोग हमारे साथ थे तो उनका भी सपना पूरा करना था, बट वहीं पर बड़ी धीमी बट बड़ी मजबूत आवाज तीन महिलाओं की आई, वो यही तीन महिलाएं थी, मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरी बहन, बड़ी बहन, इन तीनों ने बड़ी दमदार आवाज में बोला भारत माता की, एंड ऑब्वियसली माय सिस्टर वाज लाइक इंडिया, एंड आई रिमेम्बर लिसनिंग टू दैट थ्रू माय ईयर मफ्स एंड आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दिस, अब ये कर सकते हैं बिकॉज देयर आर माय पीपल इन द स्टैंड आल्सो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल दैट यू लव फॉर देम टू सपोर्ट यू, सबसे ज्यादा देखिए हर कोई सपोर्ट कर सकता है आपको जिंदगी में किसी भी फील्ड में, सब लोग का सपोर्ट हो सकता है, आप बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, पीपल दैट यू लव, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता ना तब तक वो बूस्ट नहीं मिलता, वो हौसला नहीं मिलता, तो मेरे लिए इन तीनों महिलाओं का मेरी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल रहा है।
0: तो लोगों की लाइफ में होता है, कई बार हमने ये सुना भी है, एक बिहारी सब पर भारी, यहाँ चार बिहारी थे जो सब पर भारी पड़ गए और गोल्ड मेडल आ गया भारत की झोली में। तो श्रेयसी ये तो हो गई कॉमनवेल्थ की बात, ओलंपिक्स का भी आपने बता दिया, लेकिन क्या आपको वो याद है जब पहली बार आप किसी टूर्नामेंट में गई थी, जब आपने खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो पहला जो टूर्नामेंट होता है ना, वो अमिताभ बच्चन की बात है कि पहली बार सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद वो बार बार होती हैं चीज़ें, अलग हो जाती हैं, वो सेकेंड थर्ड टाइम होती है, लेकिन कोई भी चीज़ पहली बार होती है वो हमेशा आपके दिमाग में घर कर जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो अच्छी बातें होती हैं या खराब बातें होती हैं, सो कोई पहला टूर्नामेंट जो आप बताना चाहें।
1: आई थिंक जो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल था, गोल्ड मेडल था, फिनलैंड में जीता था मैंने, और आई रिमेम्बर कि मैं वहाँ गोल्ड मेडल जीत गई, तब तक सब कुछ ठीक था जब तक मैं ऑन फील्ड थी, एकदम सारा प्रेशर, सारा इमोशन, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, ठीक है, और मैं अपना फाइनल शॉट लिया, स्वर्ण पदक जीता, सब लोगों ने हल्ला किया, मैंने बड़े कामली टर्न अराउंड करके सबको वेव किया, थैंक यू किया, अपने कोच से मिलने गए। वहाँ से आने के बाद जब हम लोग अपने रेस्ट एरिया में गए तो हमारे कोच ने हमको फ़ोन ला के दिया दैट इट इज़ योर पेरेंट्स, आपके मदर फादर फ़ोन पर हैं टू कंग्रेचुलेट, एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि मैं, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ अपने माता पिता को कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, दैट वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एंड ऑल दैट, सो आई वाज सो हैप्पी ओवरवेल्म्ड कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और मेरे आंख से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 या 7 मिनट, जब मेरे पेरेंट्स मुझे कंग्रेचुलेट कर चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो फाइनली उन लोग ने पूछा अच्छा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इंडिया वापस आ रही हो, क्या खाना पसंद करोगी?
0: माता पिता बस यही बातें पूछते हैं, मम्मी खास तौर पर।
1: I was a foodie, so and they knew कि बाहर जाके कोई भी, और 17 वर्ष के होंगे,
0: 17-18 साल
1: के होंगे, तो उस वक्त घर का खाना बहुत याद आता है, स्पेशली ना हम लोग फिनलैंड में बहुत ही छोटे टाउन में थे, वी वर नॉट इन हेलसिंकी कि सब चीजें हैं आसपास, तो घर के खाने की याद आती थी फॉर श्योर, देयर इज नो डिनाइंग दैट, सो दे वर ऑल लाइक जस्ट टू काम माय डाउन, काम मी डाउन, दे वर लाइक अच्छा सब छोड़ो ये बताओ कि खाना क्या खाओगी।
0: क्या बात है, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही चीज़ें सोचते हैं, और मुझे लगता है छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना वो आपके दिमाग में, आपके दिल में घर कर जाती हैं। बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अगर कोई बच्चा फरीदाबाद से दिल्ली भी जा रहा है ना, तो माँ उसको फ़ोन करके पूछती है रात को खाने में क्या खाओगे, तो ये पेरेंट्स का बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे बच्चा पास हो, चाहे फेल हो, चाहे गोल्ड जीते या ना जीते, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहते, तभी वो भगवान भी कहलाए जाते हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: श्रेयसी, आपके फादर के जाने के बाद कहीं ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में वो एक छत जो आपको गाइड कर रही थी, आपको समझा रही थी, आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो कहीं छत चली गई है, कुछ ऐसी फीलिंग आई है आपको? क्योंकि शूटिंग उनका था जिसको आपने देख के आगे बढ़ना सीखा था, समझा था, तो उस दौरान कहीं, क्योंकि उसके बाद आप कॉमनवेल्थ खेली और कॉमनवेल्थ में जो आपने सिल्वर जीता, फिर गोल्ड जीता, फिर ओलंपिक्स में पहुंची, ये छोटी चीज़ें नहीं होती। एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप्स में पहुंचना, ये सारे सिलसिले उसके बाद के हैं। तो खुद से इतना बड़ा दृढ़ निश्चय, अकेले चलना, ऐसे दौर में किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? आपके कोच ऑफकोर्स, उन्होंने गाइड किया होगा, आपकी मदर रही होंगी, लेकिन ये ताकत, ये जज्बा कहाँ से आता है? क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते जिसको देख के आपने उस फील्ड में कदम रखा हो और वो आपके अपने पिता।
1: नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आज भी जिंदगी में इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा कि एक 17-18 साल के वर्ष की बेटी का उनसे उनका पिता छीन लिया जाए। तो उस दुख को मुझे लगता है बहुत लोग बोलते थे कि विद टाइम
0: ठीक हो जाएगा,
1: हाँ ठीक हो जाएगा, कम महसूस होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कम महसूस होता है। मैं आज भी अपने पिताजी को उतना ही याद करती हूँ जितना जिस दिन वो गुजरे थे और उनकी याद आई। और लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, सबसे बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई थी, उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खोया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फादर और एक मदर का रोल निभाया। और जहां भी अगर मेरी मदर कमजोर पड़ी तो मेरी बड़ी बहन ने वो रोल अदा किया। और इन दोनों के वजह से मुझे जो फादर की कमी बड़े होते हुए लेट टीन इयर्स में या प्रोफेशनल करियर्स में, क्योंकि मैं मात्र 29 साल की थी जब मैंने बिहार विधानसभा लड़ने का निर्णय लिया, तो कम उम्र में जब ये कठिन फैसले लेने थे, उस वक्त इन दोनों का सपोर्ट भी रहा, इन दोनों की क्रिटिकल थिंकिंग भी रही, इन दोनों की रैशनल थिंकिंग भी।

0: करते हैं और जो अपने विवेक के साथ मेरे लिए या मेरे साथ निर्णय लेने में हमेशा खड़े हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसीलिए आज मैं जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाई। मैं घर में छोटी थी तो माँ और बड़ी बहन का साथ जितना रहा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कितना कॉम्प्रोमाइज किया मेरे आगे बढ़ने के लिए, ये शायद इसकी चर्चा मैं खुद नहीं कर सकती और उन्होंने कभी इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। लेकिन आज क्योंकि एक उम्र पर हम पहुंच गए हैं और देख सकते हैं चीजों को और अच्छे से, तो लगता है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया।
1: बिल्कुल।
0: उन लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लोग मुझे जानते हैं, चिन्हते हैं, लोग मेरे फैंस हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन को वो ख्याति नहीं मिलती। इसलिए आज आप रेडियो के माध्यम से जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनकी बात हमेशा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ी।
1: बिल्कुल।
0: उन दोनों का भी साथ था, उन दोनों का भी संघर्ष था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वुमेन पावर बहुत खास तौर पर से यहाँ पर दिखती है।
0: ओह एब्सोल्युटली, वी आर चैंपियंस ऑफ वुमेन्स वॉइस, बोथ मी एंड माय सिस्टर, थैंक्स टू आवर मदर। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने की सोच और समझ रखी है और एक कम उम्र से हम लोग जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिला इस चीज को रखते आए हैं, बोलते आए हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और श्रेयसी शायद नहीं जानती लेकिन मैं आपकी मदर से मिली हूँ नेशनल चैंपियनशिप के दौरान शूटिंग रेंज पे, उनसे मुलाकात हुई थी थोड़ी देर के लिए
0: बातचीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मुस्कुराती रहती हैं, बहुत सिंपल छवि की महिला है, मुस्कुराती रहती हैं और अपनी बेटी को उस दौरान भी मेडल जीतते हुए देख रही थी और तालियां बजा रही थी जब स्टैंड में सब खड़े हुए थे, बिकॉज आई वॉज होस्टिंग दैट सेरेमनी, सो इसलिए मैं उनसे मिली थी। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी कुछ यादें होती हैं बहुत ताज़ा रहती हैं, तो मेरे जो जहन में आई वो मैंने आपसे शेयर करी। अब बात करते हैं वापस ट्रैप शूटिंग की। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। जब हम शूटिंग की बात करते हैं, जब आपने शुरुआत करी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते या फिर बाकी खिलाड़ी जो थे वो धीरे धीरे अभिनव बिंद्रा जीत चुके थे, बाकी खिलाड़ी आ रहे थे, तो ऐसे में आपने काफी जल्दी शुरुआत करी बाकियों के मुकाबले, अगर मैं कहूँ जो आजकल की जनरेशन है। पर अब शूटिंग में बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं
0: जी।
1: मतलब अब पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा 8-9 साल का हो तो फटाफट उसे शूटिंग की ओर भेज दें क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, मेडल्स बहुत आ रहे हैं आज की तारीख में। बट लोग बेसिक्स शायद नहीं जानते कि शूटिंग में जाने से पहले, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैप शूटिंग, जैसे आपने कहा 12 साल से पहले नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके शोल्डर्स, आपकी मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते और उसमें झटका लगता है बहुत तेज। जो आपके पास जो गन होती है बहुत भारी होती है, उसका बैग ही बहुत भारी होता है जब आप लेके चलते हैं। सो क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या गाइड करना चाहेंगी पेरेंट्स और बच्चों दोनों?
0: देखिए शूटिंग में जिसको, सबसे पहली बात तो जिस बच्चे को रुचि है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, उसी बच्चे को खेल में या निशानेबाजी में आना चाहिए। क्योंकि जब तक वो खुद से रुचि और इंटरेस्ट नहीं होगा ना, माँ बाप के पुश करने से नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: आपको टीवी पे लगता है कि बहुत आसान है मेडल जीतना या बहुत सारे मेडल्स शूटिंग में आ रहे हैं, लेकिन किसी भी एक शूटर से पूछ के देखिए कि उस शूटर ने अपनी जिंदगी में कितना त्याग किया है।
1: बिल्कुल।
0: उस एक पदक को जीतने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: तो सिर्फ हम जीत देखते हुए ये नहीं निर्णय ले सकते कि हम भी अपने बच्चे को चाहते हैं, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब तक बच्चे के मन में खुद से नहीं आए तब तक उसको किसी भी फील्ड में पुश नहीं करना चाहिए, मेरे सबसे पहली राय है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि शॉटगन एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें निश्चित रूप से हमें कभी भी जो मसल डेवलपमेंट जब तक पूरा नहीं होता है, जो 11-12 वर्षीय ही होता है, उससे पहले नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ योर फिजिकल हेल्थ।
1: बिल्कुल।
0: तो उस फिजियोलॉजी को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, उस साइंस को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, और जब डेवलप हो जाए बच्चा उस तरीके से, मसल उतना डेवलप हो जाए, तभी उस बच्चे को इस खेल में आना चाहिए। और मुझे लगता है चलाते हैं वो 12 बोर होती है हिंदी में हम बोलते हैं, एंड इट्स अ वेरी इट्स अ डेंजरस वेपन, इट शुड नॉट बी टेकन ईजी। तो जिस भी निशानेबाज को निशानेबाजी में आनी है, सबसे पहली चीज एक बंदूक को कैसे हैंडल करो।
1: बिल्कुल।
0: ये सीखना जरूरी है, बंदूक को चलाने से पहले बंदूक की सेफ्टी को सीखना ज्यादा जरूरी है, एंड दीज आर द थ्री सजेशंस दैट आई कैन गिव फ्रॉम माय साइड।
1: बिल्कुल। और श्रेयसी एक और चीज है, जो ये जो ट्रैप होता है ये थोड़ा महंगा स्पोर्ट है। बहुत सारे लोग जब कभी बात करते हैं या हम रेडियो पे कभी किसी खिलाड़ी से बात

0: करते हैं, तो वो पूछते हैं कि ट्रेनिंग कैसे लें, गन्स कितने की होंगी, कितना खर्चा हो, क्योंकि शूटिंग अपने आप में एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो रहा है शुरू से. सो ये कैसे मैनेज करें, क्या इसमें जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो बहुत सोचता है जाने से पहले ऐसे खेलों के बारे में, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं.
1: बिल्कुल, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. महंगाई इस कारण भी है कि किस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं वो भारत में नहीं बनता है. चाहे हम क्ले टारगेट्स की बात करें, चाहे हम एम्यूनेशन की बात करें, या हमारी 12 बोर बंदूक के बारे में बात करें, तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है.
0: बिल्कुल.
1: और सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्टेड क्वान्टिटी में ही आप इम्पोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि जो नेशनल खेलता है, जो नेशनल रिनाउंड शूटर रहता है, वो साल में एक ही बंदूक इम्पोर्ट कर सकता है, और उसके बाद भी वो अपने लाइसेंस पे दो ही बंदूक रख सकता है. तो इन सब चीज़ों के वजह से, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट, गन लॉज आर इम्पोर्टेंट इन आर कंट्री, और उस वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है, और ये अब आपको शायद लगेगा कि मेरे अंदर से एक पॉलिटिशियन बोल रहा है, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैंने इस व्यवस्था को अपने सामने सुधरते हुए और बेहतर होते हुए देखा है. आज की डेट में अगर हम सरकार की बात करें, तो अनेकों स्कीम्स के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, बच्चों को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए सोशल पॉलिसीज की को चेंज किया जा रहा है. उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंट को इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है. और जब बच्चे एक लेवल पर आ जाते हैं, चाहे भले ही वो स्टेट लेवल हो जाते हैं या नेशनल लेवल हो जाते हैं, तो स्टेट लेवल पर आने पर भी बहुत सारे राज्य भारत में आ, जैसे और बिहार भी उसमें शामिल है, जबकि बच्चे उनको बच्चों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है. तो वेदर वो एक स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो, वेदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, काफ़ी जरियों से आज सरकार भी मदद कर रही है खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए. और जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते तो उनको प्रोत्साहन राशि के, आज तो प्रोत्साहन राशि भी बढ़ गई है,
0: काफी बढ़ गई.
1: आपने देखा कि गोल्ड मेडल अब ओलंपिक्स में आप लाइए तो आपको 7 करोड़ तक केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है. उसी तरीके से स्टेट्स
0: भी आगे बढ़.
1: लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके सिर्फ वो एक राशि की बात नहीं है, उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है. और वो चाहे स्टेट लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, या मतलब एमएनसीज के साथ हो, स्पोर्ट्स सेक्टर्स में हो, आजकल वो जॉब अपॉर्चुनिटीज और सेक्टर्स भी बढ़ गए हैं. तो मुझे लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब की जो मानसिकता है वो अब धीरे धीरे बदलते जा रही है, और इसमें सरकार और समाज दोनों का साथ है. समाज इसलिए भी मैं बोलूंगी क्योंकि आज जैसे हम मानव रचना की ही बात करते हैं, तो मानव रचना ने भी अपना एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाया.
0: बिल्कुल.
1: जिसमें बच्चों को कम राशि पर खेलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है.
0: वो फैसिलिटीज मिलना बहुत बड़ी बात है.
1: फैसिलिटी मिल रही है जिससे कि बच्चे सिर्फ फिर स्कूल कॉलेज तक खेल के रुक नहीं रहे, वो भी आगे जाके स्टेट और नेशनल लेवल तक खेल रहे. मैं खुद मानव रचना की एक शिष्य रही हूँ, निशानेबाजी का के अकेडमी से मैंने भी यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है. तो निश्चित रूप से जब समाज और सरकार आके किसी भी एक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन रूप से सामने आता है. और आज भारत एक जीता जागता उदाहरण है खेल किस प्रकार.
0: बिल्कुल बिल्कुल. कहाँ एक मेडल के लिए तरसता भारत, आज बहुत से मेडल आ रहे हैं और आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा मेडल आएंगे. आगे लॉस एंजलिस की क्या तैयारी चल रही है?
1: लॉस एंजलिस से पहले आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट, हमें बात कर लेनी चाहिए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव.
0: बिल्कुल. ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप बीजेपी से हैं
1: जी,
0: और बहुत छोटी उम्र में राजनीति को भी ज्वाइन कर लिया आपने, और क्या आपको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप खेलों से ताल्लुक रखती हैं तो खेल मंत्री भी बन सकती हैं?
1: देखिए, हमने बताया अपने फादर के बारे में, कभी भी हम राजनीति में किसी पद के लिए नहीं आए.
0: नहीं, पर एक खिलाड़ी को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो ग्राउंड लेवल से समझता है चीजें.
1: ये निर्णय मेरा और आपका नहीं हो सकता है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है. हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और ये निर्णय मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप जब मेरे विवेक का, मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिस पद पर चाहेंगे, आप कर सकते हैं. मेरा राजनीति से सिर्फ इतना ताल्लुकात है कि मैं जिस विधानसभा या जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, वहां ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करके दिखा सकूं। वहां पर जात नहीं बल्कि जमात की राजनीति करके दिखा सकूं, ये मेरा संकल्प है और ये मेरे सिद्धांत है। मुझे विरासत में ना तो निशानेबाजी मिली, क्योंकि निशानेबाजी में भी पापा और बाबा साहब एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर थे, और मेरे फादर क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी थे, तो लोगों को लगता है कि मुझे विरासत में राजनीति और निशानेबाजी में। मैं आज आपके रेडियो चैनल के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहूंगी कि मुझे विरासत में सिर्फ और सिर्फ संस्कार मिले थे। इन संस्कार को लेकर मैं आगे कैसे बढ़ी, किस निर्णय का और किस संघर्ष का सामना मुझे करना पड़ा, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: और सिद्धांतों और संस्कारों को लेकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आने वाले समय में किस पद पे मुझे बैठाया जाएगा, किस पद तक मैं पहुंच पाऊंगी, और ये जनता, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, जनता वोट करती है। आज के युग में आप किसी का हाथ उठाकर किसी बटन पे नहीं दबा सकते। उस 2x2 के कमरे में जाकर व्यक्ति कौन सा किस प्रतिनिधि को या किस पार्टी को बटन दबाता है, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित रूप से बिहार की जनता चाहेगी, उनका प्यार और आशीर्वाद रहेगा, तो बहुत से पद आएंगे जाएंगे जिंदगी में, लेकिन जिस सेवा और ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आज के समय में जम्मू और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है।
0: बिल्कुल। और ये बहुत ही बढ़िया रहा जो बातचीत इन्होंने करी है, और एक महिला खेलों में भी है, राजनीति में भी है, और जी जान से सेवा कर रही है। इस छोटी उम्र में अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आगे जाके तो पता नहीं क्या ही होगा। सो ये तो बात हो गई राजनीति की, और कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में हमें बताना चाहेंगी, क्या खास रहा आपके कॉलेज के दौरान, जब आप हंसराज कॉलेज में थी या जब आप मानव रचना में भी थी, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स वालों को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं।
1: दोनों कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक अलग ही लाइफस्टाइल है।
0: बिल्कुल।
1: कॉलेज का लाइफस्टाइल तो सच मानिए तो मैं जी ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग जहाँ भी स्पोर्ट्स वाले मिल जाते थे तो वो स्पोर्ट्स की चर्चा होती थी, वो ऑन फील्ड प्रैक्टिसेस की बात होती थी। तो आई डोंट थिंक दैट एक कन्वेंशनल कॉलेज लाइफ हम जिए हैं, क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज, वो कैफेटेरिया में गप और वो चाय पे चर्चा नहीं कर पाए,
0: वो टाइम ही नहीं मिला।
1: और एक एथलीट होने के नाते हमारा भी कर्तव्य था कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी। तो जब बच्चे रात में स्नीक आउट करके अपने बार या क्लब्स जाते थे
0: या फिल्म देखने जाते थे
1: तो हम लोग, और एंड आई एम टॉकिंग फॉर मोस्ट एथलीट, हम लोग लिटरली ये बात करते थे कि नहीं यार, सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाएं या 5 बजे का अलार्म लगाएं ताकि सही टाइम पे फील्ड पहुंच पाए। तो वो ऑप्शन नहीं था अपने पास, लेकिन जब कॉलेज में, जो मैंने पहले भी बात कही उसी को मैं दोहराती हूँ, कि कॉलेज में जब तक सही गुरु का साथ नहीं मिलेगा तब तक खिलाड़ी को खेल को आगे बढ़ाना और पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे मानव रचना में उन प्रोफेसर्स का साथ पड़ा, हमारे कैंपस में एक अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के आगे बढ़ के एक नेस्कैफे का कैफे है। उस नेस्कैफे कैफे पर बहुत सारी यादें हैं। कॉम्पिटिशन खराब हुआ तो टीचर्स वहाँ कॉफी पिलाने ले गए, एग्जाम खराब हुआ तो टीचर्स वहाँ कॉफी पिलाने ले गए, थके हुए ट्रेनिंग करके कैंपस आए हैं पढ़ाई करने के लिए, बुक्स लेने के लिए, टीचर्स से कुछ डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ जाके कॉफी, कोल्ड कॉफी स्पेशली वहाँ जाके पी है। तो आई थिंक वो गोइंग टू दैट नेस्कैफे कैफे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ मानव रचना फॉर मी।
0: बिल्कुल। ऐसे प्रोफेसर सबको मिले जो बात बात पे कॉफी पिलाने ले जाएं, पर उसके लिए आपको ऐसा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा।
1: आई थिंक सो, या।
0: सो श्रेयसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें ऐसी जो आपने अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर करी और स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में हमसे शेयर करी, बहुत मजा आया बातचीत करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले बिहार चुनावों के लिए भी, क्योंकि ये जो आप कोशिश कर रही हैं ये कोशिश एक नई जनरेशन ही कर सकती है। खेलों में तो आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उस धरातल पर जाकर काम करना, जीरो से उठकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और जनता के सिलेक्शन के साथ आना ये बहुत कमाल की बात है, और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही प्रतिनिधित्व करेंगी, अपने परिवार की जो संस्कार आपने लिए हैं उनको आगे लेकर जाएंगी और सेवा भाव रखेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच। आज वाकई में जो मैं हम लोग ने बात शुरुआत की थी कि ये मायके की तरह है मानव रचना हमारे लिए, वाकई में आज इतनी पुरानी यादें ताज़ा हुई है कि मानव रचना वापस ऐसा लग रहा है कि घर आ गए। एंड पूरा दिन कैंपस में गुजारे, लोगों से बात किए, बच्चों से बात किए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल, कुछ अपने जमुई वाले एक्सेंट में कुछ भाषा में कुछ बोल के बता दीजिए। चलते
1: नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: जमुई
0: ऐसे
1: में भी ऐसे ही बोलते हैं।
0: तो बहुत लोग कनेक्ट करते होंगे आपसे, खासतौर पर से लड़कियां बहुत कनेक्ट कर पाती हैं।
1: हाँ, युवा युवतियों से एक वो कनेक्ट रहता है, महिलाओं से भी, क्योंकि युवा और महिला, और मैं सिर्फ ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं कर रही हूँ, युवा और महिला सिर्फ उनसे कनेक्ट कर सकता है जो उनके जैसा दिखे, जो उनके जैसी बात करे, जो उनके हक की, उनके हित की बात करे। तो मेरा युवा और महिलाओं से कनेक्ट अच्छा रहता है। एक बेटी है, क्योंकि उसी वही हमारा घर है, जमुई हमारा घर है, तो एक बेटी है, तो उस अधिकार के साथ लोगों के घर में घुस भी सकते हैं, लोगों को से माफ़ी भी मांग सकते हैं, और वही वहाँ की जनता हमसे लड़ भी सकती है, क्योंकि एक बेटी के ऊपर अपना अधिकार सब लोग समझते हैं। इसलिए वो प्यार, और वो प्यार का संबंध है जो वोटों में कन्वर्ट हो जाता है।
0: बिल्कुल, और आगे भी वो कन्वर्ट होता ही रहेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि मानव रचना का नाम आप जैसे जैसे विश्व पटल पर रोशन करी हैं, आप भारत की राजनीति में आगे बड़े लेवल पर लोकसभा में भी रिप्रेजेंट करें आगे आने वाले समय में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच श्रेयसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बियॉन्ड द गेम का हिस्सा बनने के लिए।
1: थैंक यू।
0: तो आज के इस बियॉन्ड द गेम में बहुत सी बातें हमने कर ली हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ राजनीति की और संस्कारों की भी। ये जो खास एपिसोड रहा है, ये आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में ये सारी बातचीत जा सकती है, सारी जानकारियां जा सकती हैं। और मैं चाहूंगी कि आप भारत की इस बेटी से जुड़ी हुई ये जो सारी बातें हैं जरूर शेयर करें और जरूर सुने और देखें भी। फिलहाल बियॉन्ड द गेम में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको भी पता है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। देखिए, इस जिंदगी में ना, आज के जमाने में हम सब बड़े सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी जीते हैं, जहाँ हमारा जन्म होने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन आजकल के जमाने में अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है और उसे जिंदा रखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत बहुत है। और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मोटिवेशन आएगा ऐसे ही लोगों से जो आज भी निस्वार्थ भावना से इस मानवता को जिंदा रखे हुए हैं। जहां पर हम ये कहते हैं कि मानवता करना बहुत जरूरी है, वहीं पर मैं हमेशा इस चीज को एंडोर्स करती हूँ कि हमारी सोसाइटी के आज भी ढेर सारे अनसंग हीरोज हैं जो ना तो खुद अपनी तारीफ करते हैं और ना ही अपनी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। और इस काम के लिए खास तौर पर इस कार्यक्रम को रखा गया है जिसका नाम है मानवता की राह पर। सो इसमें मैं आपको ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे एनजीओ से मिलवाती हूँ जो आज भी मानवता का बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है मदन चावला जी। आई एम श्योर अगर आप फरीदाबाद शहर में रहते हैं सो आपने इनका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया, ये खास फाउंडेशन चलाते हैं जिसके ये फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और अच्छी बात ये है कि लंबे समय से ये थैलेसीमिक बच्चों के लिए ढेर सारा काम कर रहे हैं। और जब कभी भी मैं थैलेसीमिक बच्चों की बात करूं या उनके लिए काम करने की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिक बच्चों के साथ ये काम कभी अंत होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके लिए सबसे पहले तो रक्त की ज़रूरत और उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य रखने की ज़रूरत एक एंडलेस काम है। और ऐसे नेकी का काम करना आसान नहीं होता है। तो करेंगे इसके बारे में आज ढेर सारी बात और उसके लिए करेंगे मदन चावला जी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: मदन जी। सबसे पहला सवाल गिफ्ट के बारे में, आप तो वाकई थैलेसीमिक बच्चों को जीवन का गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए GIFT ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया, इसकी शुरुआत कब, कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: गिफ्ट की फॉर्मल शुरुआत हुई थी सन 2019 में
0: जी।
1: ये 8वां साल हमारा चल रहा है और इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग 20-22 साल पहले एक बार मैं जा रहा था अपनी कंपनी, उस टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर कार्यरत था और मैं जा रहा था किसी कंपनी के असाइनमेंट से अमेरिका। सो यूरोप से जो अमेरिका की मेरी फ्लाइट थी वह ब्रसल्स टू मेम्फिस प्रैक्टिकली, उसमें मुझे एक ऐसा पेशेंट मिला जिसको थैलेसीमिया के लिए एक इंजेक्शन लगता है, डिस्फेरल इंजेक्शन, वो हाथ पे लगा हुआ था, काफी जवान बच्चा था वो। तो जब उसकी मम्मी से बात हुई, मैंने पूछा कि ये इंजेक्शन क्यों लगा हुआ है, तब उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन के थ्रू इस बच्चे के अंदर से एक्स्ट्रा आयरन बाहर निकालते हैं। बात बढ़ती गई कि आयरन इस अंदर एक्स्ट्रा क्यों हो गया, तो पता चला इसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं
0: जी।
1: अब ट्रांसफ्यूजन क्यों होते हैं, तो बताया कि थैलेसीमिया नाम की इसको बीमारी है
0: जी।
1: तो तब पहली बार मैंने ये वर्ड सुना था थैलेसीमिया, तो दिल में आया कि हमें कुछ ऐसे बच्चों के लिए करना चाहिए। पर कॉर्पोरेट की लाइफ, आप एक बड़े पोजीशन पे हैं, आपकी लाइफ बहुत बिजी होती है, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं पर आप टाइम नहीं दे पाते हैं, आपके पास पैशन है, आपके पास हार्ट है। तो फिर शुरू हुआ कुछ अपने यार दोस्त के साथ मिलकर किसी के लिए कभी ब्लड दे देना, किसी कुछ फाइनेंशियल मदद कर देना, पर वो मजा नहीं आया। फिर जब थोड़ा सा लाइफ ने और टाइम दिया लोगों की सेवा के लिए, तो मैं किसी और एनजीओ के साथ भी जुड़ा था
0: जी।
1: उनके साथ मिलके भी काम किया था, पर लगा कि नहीं, जो विजन मेरा है शायद वो विजन हमारा उस एनजीओ के साथ मिलके नहीं अचीव हो पा रहा था
0: जी।
1: तब हमने गिफ्ट को जो है धरातल पे लाने की सोची और आज गिफ्ट जो है पूरे इंडिया में थैलेसीमिया बच्चों के लिए काम कर रही है।
0: देखिए, जब कभी भी थैलेसीमिया की बात होती है ना, तो लोगों को ना ऐसा लगता है थैलेसीमिया इसमें कौन सी नई चीज़ है, हर चौथी बार आप थैलेसीमिया का नाम सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये बीमारी हो गई है तो आप कोई दवाइयाँ खाई और आप ठीक हो जाएंगे। सो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि ब्लड हमारे देश या पूरे विश्व में बनता नहीं है, इट इज़ नेवर प्रोड्यूस्ड एनीवेयर, इट इज़ नेवर मेड, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को दिया जाता है। अब आज के ज़माने में जहाँ पर कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को स्माइल भी नहीं देता बिना किसी कारण के, ऐसे में अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई आप रक्तदान कर दीजिए, किसी का जीवन बच जाएगा, तो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना। सो ऐसे समय में अगर आप इतने सारे पैन इंडिया थैलेसीमिक बच्चों के लिए आप कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन अरेंज कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उनकी लाइफ को एक मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक वाकई बहुत ही नेकी का काम है। तो सोचने में, समझने में, देखने में इसे बहुत आसान लगता है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने में कितनी ही मेहनत लगती होगी, लेकिन किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, कैसे मदद करते हैं, करेंगे इसके बारे में बहुत सारी बात। उससे पहले सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, जुड़े रहना रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया के साथ, और मदन चावला जी जो इनके फाउंडर हैं हमारे साथ बैठे हैं। मदन जी, मुझे बताइए कि इन बच्चों की आप मदद करते कैसे हैं? जैसे ही आपके पास ज़रूरत आती है, मदद के लिए आपके पास कॉल आता है, तो आप उनकी मदद कैसे करते हैं?
1: बच्चों की मदद करने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो तीन पिलर उसके अंदर है
0: जी,
1: कंट्रोल, केयर एंड क्योर
0: जी।
1: C2C बोलते हैं हम। कंट्रोल में जो हम बच्चों के परिवार की मदद करते हैं कि कम से कम उस परिवार में या उनके एक्सटेंडेड फैमिली में दूसरा थैलेसीमिया बच्चा ना पैदा हो, तो इसके लिए हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्लस उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने परिवार में उन सब लोगों का जिनकी शादी निकट भविष्य में होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है, वो एक जांच करवाएं जिसे बोलते हैं HPLC
0: जी।
1: उस जांच के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या आपके अंदर वो डिफेक्टिव थैलेसीमिया वाला जीन है कि नहीं है। अगर है तो आप शादी से पहले इतना जरूर करें कि अपने होने वाले पार्टनर का भी वो टेस्ट करवाएं ताकि आपके भविष्य में वो ऐसा बच्चा आपके परिवार में ना पैदा हो
0: जी।
1: पहली मदद ये। दूसरी जो मदद होती है उसे हम बोलते हैं केयर। केयर में जो होता है हम बच्चों की चार प्रकार से मदद करते हैं। सबसे पहले उनके लिए ब्लड अरेंज करना, थैलेसीमिया के लिए ब्लड मीन्स लाइफ। दूसरा होता है उनका रेगुलर डॉक्टर्स के थ्रू फ्री चेकअप करवाना
0: जी।
1: हिंदुस्तान में हमारे लगभग 25 हॉस्पिटल स्ट्रेटेजिक टाइप हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं और डॉक्टर उनसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं उन्हें कंसल्टेशन देने में, उनका फ्री हेल्थ चेकअप करने के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनके लिए मेडिसिन अरेंज करना
0: जी,
1: चाहे वो आयरन कलेक्शन की मेडिसिन हो या किसी भी अन्य प्रकार की मेडिसिन जो उन बच्चों की लाइफ के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए जरूरी है, हम वो दिलाने में उनको फैसिलिटेट करते हैं। और चौथा जो काम है उन बच्चों के नियमित टेस्ट करवाना। जैसे आपने सुना होगा अभी रिसेंटली फरीदाबाद में ही कुछ बच्चों के HIV उनको डायग्नोज हुआ है
0: जी, जी,
1: तो इन बच्चों के अगर नियमित रूप से टेस्ट करवाते रहें, जैसे HBV, HBC या आयरन के हैं या किसी और प्रकार के टेस्ट जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उनकी लाइफ जो उनका जीवन अच्छा बना रहता है
0: जी।
1: तो चार प्रकार से बच्चों की मदद करते हैं और हमें टेस्ट भी फ्री करवाते हैं उनके लिए। फिर जो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो थैलेसीमिया का फिलहाल हिंदुस्तान में एक ही परमानेंट क्योर है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
0: यस,
1: और अभी मैं कल पुणे गया था तो हमने पुणे के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप लगाया था
0: जी,
1: HLA जांच के लिए। HLA जिसका पूरा मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये एक प्रकार के DNA की जांच होती है
0: जी।
1: और अभी जांच पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल फ्री करते हैं। गिफ्ट के स्ट्रेटेजिक टाइप हैं वर्ल्ड की कुछ रिनाउंड जेनेटिक लैब्स के साथ, जैसे अमेरिका में हिस्टोजेनेटिक लैब है, जर्मनी में DKMS लैब है। ये लैब्स हमें बिल्कुल फ्री किट्स देती हैं और हम बिल्कुल फ्री सुविधा पेशेंट्स की फैमिलीज को प्रदान करते हैं ताकि कुछ बच्चों के लिए हम उनके मैचिंग के स्टेम सेल डोनर ढूंढ सकें और उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकें। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि जब से गिफ्ट इनकॉर्पोरेट हुई है कोविड के बाद, हम लगभग 250 बच्चों के बिल्कुल निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और बच्चे पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और हम बात करें HLA जांच के मार्केट में प्राइस की, तो एक जांच लगभग 12,000 रुपए की होती है और मैं सुविधा बिल्कुल निशुल्क पेनी डिलीवर पे प्रोवाइड करते हैं।
0: मदन जी, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में कहा और इनफैक्ट थैलेसीमिक बच्चों के लिए सिर्फ एक यही कहना चाहिए एकमात्र इलाज होता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आपका बोन मैरो मैच करना, मतलब वो एक सबसे बड़ी चीज़ है और उसका एक लंबा इंतज़ार भी होता है। सो ये जो लंबा इंतज़ार है, ये लंबा इंतज़ार है ब्लड ट्रांसफ्यूशन का, और वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन हर 15 दिन में या महीने में आपको करवाना होता है, और ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चुनौती है किसी भी शख्स के लिए, क्योंकि ये एक अनएंडिंग चीज़ है, इसका कोई अंत नहीं है। आज आप एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको पता है आज आपके पास 15 दिन का ब्लड है, आपके पास इतने डोनर्स हैं और ये लोग आकर डोनेट करके गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा ज़िंदगी में कि आप ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाना चाहते हैं, लोग आ नहीं रहे हैं और ब्लड की ज़रूरत है। सो देखिए, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन कोई है जो इस राह पर निकला है ये सोच कर कि मैं इसे कर दिखाऊंगा। कैसे करते हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, कैसे मदद करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना लंबा इंतजार करवाता है, सारी चीज़ें जानेंगे आज, और इनफैक्ट थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम हैं ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसेमिया के फाउंडर मदन चावला जी के साथ, और ये जिंदगी का गिफ्ट दे रहे हैं थैलेसेमिक बच्चों को। हम बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि आइडियली इसका डिटेक्शन जो होता है वो बड़ी अर्ली एज में हो जाता है, और जब तक ये बच्चा बड़ा एडल्ट बनता है या तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, या वरना मुझे बताइए कि इनकी अमूमन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए कितनी लंबी रह सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह पाती है।
1: हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे एरियाज की जहाँ पर इस बीमारी के डॉक्टर सही नहीं है, तो वहाँ पर एवरेज लाइफ जो है वो 10 साल तक है। एंड ऐसे शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई जहाँ पर थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस है और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर एवरेज लाइफ 25 से 30 साल तक अभी है अगर बच्चे का हम ढंग से ध्यान रखते हैं। बहुत कम बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो 30 साल की उम्र से ऊपर जी रहे हैं, एंड हम आशा करते हैं और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ चलेगा कि वो अच्छी लंबी आयु जी सके।
0: आई थिंक मदन जी, एक बड़ी अहम चीज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में अभी इसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। अगर मैं हमारे सबर्ब्स या मैं अगर हमारी अर्बन सिटीज, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की भी बात करूं, तो यहाँ पर भी आज अगर आप सिर्फ डोनेशन के लिए ही लोगों को कहें कि भाई आप बोन मैरो डोनेशन के लिए सिर्फ अपना सैंपल दे दीजिए, तो उसके लिए भी लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है। और आप तो अब तक 250 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, जो सर्जरी अपने आप में काफी जटिल होती है, तो कैसे पॉसिबल किया, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं?
1: बहुत बड़ी चुनौती है, ऑफकोर्स बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है जिसको हम बोलते हैं लो हैंगिंग एप्पल्स, वो बेसिकली ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हों
0: जी।
1: तो हम टिपिकली कॉलेज में जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, वहाँ लोगों को अवेयर करते हैं किसके बारे में, या फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं
0: जी।
1: या फिर उन फैमिलीज में जैसे जिनमें ये बच्चे हैं वो इस मुसीबत को समझते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आपको सिंपल एक चीक स्वैप देना है, आपका हम ब्लड भी नहीं निकालेंगे, कोई प्रिक नहीं लगाते आपको, एंड स्वैप देने के बाद आपका हम सैंपल भेजेंगे विदेशों में, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपका दोबारा कंसेंट लेंगे कि आपको फिर मेडिकली पूरा काउंसिल करवाते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स के थ्रू कि आज तक स्टेम सेल डोनेशन से किसी को ऐसा कोई नुकसान नहीं हो जो लाइफ टाइम उसको हर्ट करे। और पहले जो था ये स्टेम सेल डोनेशन की प्रक्रिया थोड़ी डिफिकल्ट थी, जहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आपको इंजेक्शन दिए जाते थे, प्रॉपर एनेस्थीसिया दे के आपको बेहोश करते थे और फिर इंजेक्शन के थ्रू आपकी बोन मैरो निकालते थे, उसमें से स्टेम सेल अलग करते हैं। अब ये प्रक्रिया थैंक्स टू एडवांसमेंट इन साइंसेस बहुत आसान हो गई है। अब हम लोगों को यही अवेयर करते हैं कि आप सैंपल दीजिए, सैंपल की रिपोर्ट आएगी, पहली बार तो आपके मिलने के चांसेस कम होते हैं। आप मानिए कि एवरेज 1 लाख में से एक बच्चे के लिए कोई मैचिंग का डोनर घर से बाहर मिलने की उम्मीद होती है, और जब वो मिलता है तो हम उस डोनर को समझाते हैं कि आप इस बच्चे के लिए बिना पंखों वाले फरिश्ते के रूप में धरती पर आए हैं, तो प्लीज आप इस कार्य की इम्पोर्टेंस को समझिए, एन एम ए सहयोग दीजिए। फिर उनको डॉक्टर से मिलवाते हैं, डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, उनको पूरा मेडिकल प्रोसीजर समझाते हैं और साथ में एश्योरेंस देते हैं कि ना तो आपको मेडिकली कोई तकलीफ आने वाली है, ना ही फाइनेंशियली, आपको घर से लेकर हॉस्पिटल तक ले जाना और वापस घर पहुँचाने का खर्चा भी हम पूरा उठाते हैं। इस प्रकार उनको समझाते हैं तो कुछ लोग समझते हैं, और जो समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और उनके आगे आने के सहयोग से जो है हम बच्चों का ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, चुनौती बहुत बड़ी है, पर वही व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
0: वाकई देखिए, मैं जब कभी भी लोगों को कन्विंस भी करने की कोशिश करती हूँ या मैं लोगों से जब बात करती हूँ, तो मैंने लोगों में एप्रिहेंशन देखा है। आज भी लोग इस बात को लेकर डरते हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा मैच कर गया तो हमें न जाने क्या डोनेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कोविड में जैसे हमें अपनी जाँच करवानी होती थी तो क्या होता था, एक स्वॉब ही तो होता था जो हमारे मुँह में ऐसे घुमाया जाता था और हमारे गले का जो सैंपल है वो लिया जाता था। अब बिल्कुल ऐसा ही एक सैंपल है आपका लिया जाएगा, लेकिन होता क्या है ना, लोग इस बात से नहीं डरते हैं कि हम वो एक सैंपल दे दें, लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं अगर ये मैच हो गया तो मैच होने के बाद ना जाने हमें किस प्रकार की सर्जरी करनी पड़ेगी या हमारे साथ क्या लॉस हो जाएगा। और जब तक इस बात की नॉलेज लोगों में नहीं है ना, तब तक बहुत सारे ऐसे थैलेसेमिक बच्चे हैं जो शायद बिना किसी इलाज के इस दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका मैच मिल नहीं पाता है। अब परेशानी ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो सकती हैं, नीदर कैन दे बी मैन्युफैक्चर्ड, ना ऐसी कोई साइंस आई है, ना कोई एडवांसमेंट हुई है कि इन्हें कहीं बाहर बनाया जा सके। और ऐसी ही एक चीज़ है रक्त, रक्तदान के बारे में भी करेंगे बात। छुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, फील गुड।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये अस्त्राल छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं मदन चावला जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। मदन चावला जी, कहना बहुत आसान है, मैंने प्रैक्टिकली सोशली बड़ी एक्टिव हूँ, बड़े सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने की कोशिश की है, इतने सारे जानकार लोगों को कहती हूँ, अगर मैं 100 लोगों को बोलती हूँ तो 10 लोग टर्न अप करते हैं ब्लड देने के लिए। ब्लड लेने के लिए जब हम बैठते हैं तो उसमें बहुत सारे रिजेक्शंस आ जाते हैं, आसान नहीं है, क्योंकि कहीं किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कई बार आधे से ज़्यादा लोग तो एनीमिक निकल आते हैं। मुझे बताइए कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन तो आपकी डायर नेसेसिटी होती है कि आपको तो ब्लड चाहिए ही चाहिए उन थैलेसेमिक बच्चों के ट्रांसफ्यूशन के लिए, सो कैसे अरेंज करते हैं आप लोग?
1: कोशिश और अधिक कोशिश, उससे भी अधिक कोशिश। देखिए, जवाब दूंगा मैं आपको, बिल्कुल ठीक कहा आपने, खुद ही आपने ये देख रखा है कि इतना आसान नहीं होता लोगों को कन्विंस करना, पर क्या करें, देयर इज नो चॉइस। तो आपको फिर बार बार जाना पड़ता है, एक दरवाजा खटखटाना पड़ता है, दूसरा खटखटाना पड़ता है, तीसरा खटखटाना पड़ता है, 100 में से 10 लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कि यस हम लगाने की कोशिश करेंगे, फिर अपने हिसाब से बोलते हैं हम आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद लगाएंगे, पर आपको तो हर 15 दिन के लिए ब्लड अरेंज करना है, तो आपको अधिक से अधिक दरवाजे खटकाने हैं अपने नेटवर्क में, खासकर उन लोगों को जो आप समझते हैं कि आपसे इस विजन में अलाइन करते हैं, जो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उनसे आप बार बार बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और समाज में कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं और इवेंचुअली आप अपने टारगेट में सफल हो पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी अप्रोच में, अपने मिशन के साथ लोगों को ये बताना पड़ता है कि उनके सिर्फ 15 मिनट जो है ब्लड डोनेशन के काउच पर किसी बच्चे को 15 से 21 दिन का जीवन दे सकते हैं, तो लोग इस बात को समझते हैं, जो समझते हैं उनको हम आगे रेगुलर डोनर बनने के लिए भी कन्विंस करते हैं, और हमारे एक रेगुलर डोनर का डेटाबेस है, अगर हमें ब्लड कहीं से भी नहीं मिलता तो हम उनके पास जाते हैं कि प्लीज़ आपके 3 मंथ हो चुके हैं, ये लेडीज़ के लिए आपके 4 मंथ हो चुके हैं, प्लीज़ दोबारा टाइम निकालिए, हमें 15 मिनट दीजिए और किसी बच्चे की जान बचाने में सहभागी बनिए।
0: मदन जी, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की और हमने ब्लड ट्रांसफ्यूशन की भी बात की, और ये दोनों ही चीज़ें बड़ी जटिल हैं क्योंकि ये ह्यूमन डिपेंडेंट है, यानी हम किसी की मर्जी पर डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के लिए, और यहाँ तक कि मर्जी किसकी है, एक ह्यूमन बीइंग की, जिसका मूड ही कभी आप गेज नहीं कर सकते हैं, हमेशा से वो चेंज होता रहता है, तो ऐसे में डिसीजन कितने इन्फ्लुएंस्ड होंगे। लेकिन एक और चीज की जरूरत होती है जब कभी भी हम मदद करने के लिए निकलते हैं, और वो है फंड्स, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे टेस्ट्स और उन जैसे सर्जरीज को करवाना। इसी के साथ ब्लड डोनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं, जो इनफैक्ट मेडिकल एसोसिएशन के पैरामीटर्स हैं, उसमें भी बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज करता है गिफ्ट से?
1: वेल, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपकी विल पावर, सेकेंडली आपकी नॉलेज, तीसरा आपका जो लॉजिक है कन्विंस करने का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए
0: जी।
1: इस फील्ड में घुसने से पहले मैंने बताया था कि इमोशनल, तो पहले इमोशनली बहुत पहले मैं चाहता था घुसना, पर पहले देन रियलाइज़ किया कि नहीं, एनजीओ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एनजीओ चलाना, उसको सस्टेन करना और अपने विजन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं स्पेशली यूरोप गया, मैं अमेरिका गया, वहाँ पर लोगों से मिला, हॉस्पिटल्स में गया, डॉक्टर्स से मिला, हिंदुस्तान में बहुत बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर से अपना नेटवर्क बनाया, खूब नॉलेज पहले ग्रहण की, उसके बाद उस नॉलेज के थ्रू हमने अपना नेटवर्क बनाया और फिर लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। फंड्स लेना बहुत बहुत बहुत मुश्किल काम है, बट वही मैंने कहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ तक बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए, तो ट्रांसप्लांट के लिए थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं, और कोल इंडिया नामक एक कंपनी है जो कि PUC है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, वहाँ से भी कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से 10 लाख रुपए पर बच्चे के ट्रांसप्लांट के लिए जो है प्रोविजन किया गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के परिवार को वो फंड भी मिल जाए, और जहाँ से जो कोल इंडिया का जो फंड होता है वो सिर्फ हिंदुस्तान में 18 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर ये लागू होता है, तो गिफ्ट ने उन 18 हॉस्पिटल से ही स्ट्रेटजिक टाइप किया है कि हम उन्हीं हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। बाकी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर हमारी अपनी भगवान की दया से कुछ गुडविल बन चुकी है, तो हम इंडस्ट्री में जाके कुछ CSR फंड होते हैं उनके लिए अप्रोच करते हैं और वो भी मदद करते हैं। बाकी आप जैसे जो इंडिविजुअल लोग हैं जो दिल रखते हैं, छोटी छोटी बचत अपने जो पॉकेट से होती है उनकी, वो मदद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा ली हुई बचत, जो बचत की मदद है, हम बच्चों तक पहुँचा सकें और आगे उनका जीवन अच्छा रह सके।
0: मदन जी, हमने फंड्स की बात की है, तो फंड्स एक चैलेंज बहुत बड़ा, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसी चीज है जिसको प्रोक्योर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर जरूरत पड़ती है कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हैं कि भाई आपको समय समय पर ह्यूमन इंटरेक्शन करना है, अब बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं

0: कि एग्जैक्टली वो गिफ्ट के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो अपना समय दें, चाहे वॉलंटियर करना चाहें, वो आकर किसी थैलेसीमिक बच्चे से मिलना चाहें, सो कैसे ये किया जा सकता है?
1: जुड़ना बहुत आसान है, शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम लोग ना हो। आप बात करते हैं फेसबुक की, आप बात करते हैं व्हाट्सएप की, आप बात करते हैं यूट्यूब की, आप बात करें लिंक्डइन की, आप बात करें किसी भी और अन्य चैनल की जो पब्लिक में पॉपुलर है, गिफ्ट वहाँ पर अवेलेबल है
0: जी।
1: आप वहाँ से हमें फेसबुक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकली हर वीक हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में खुद को फिजिकली प्रेजेंट करते हैं
0: जी।
1: वहाँ पर लोग आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। जहाँ तक बात है आप कैसे मदद कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अवेयरनेस फैलाएं, थैलेसीमिया के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को HPLC टेस्ट करवाने के लिए मोटिवेट करें, एनकरेज करें। इस टेस्ट की मार्केट में कीमत लगभग 1200 रुपए की है, हमें टेस्ट बहुत ही कम दर पे, अगर कोई कैंप लगाए तो हम 150 रुपए में कैंप ये टेस्ट करने को तैयार होते हैं। और जो पुअर फैमिलीज हैं जो टेस्ट करवाना चाहते हैं, उनके पास 150 रुपए भी नहीं है, हम उनके लिए भी स्पॉन्सर ढूंढ के ये टेस्ट फ्री करवाते हैं। हमने बहुत सारे कॉलेजेस, फरीदाबाद में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, दयानंद कॉलेज फरीदाबाद में लड़कियों का कॉलेज है, एक दिन में 1000 फ्री टेस्ट करवाए हैं। आपके पड़ोस में DAV सेंटेनरी कॉलेज है, यहाँ पर हमने एक दिन में 500 फ्री टेस्ट का रिकॉर्ड बना रखा है। तो सबसे पहला जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, मैं कहूँगा यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन गिफ्ट। आप मदद करिए, अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को टेस्ट करने के लिए मोटिवेट करिए। ऑफ कोर्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो जरूर ब्लड डोनेट करिए। अगर आप किसी मेडिकल रीजन से ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं तो अपने परिवार में, अपने मित्र सर्कल में लोगों को ब्लड डोनेशन करने के लिए मोटिवेट करिए। और आप समझते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, हम लोगों के टेस्ट भी करवाते हैं और फंड की जरूरत पड़ती है, तो आपके नेटवर्क में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसे परिवार में संबंधित लोग हैं जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मानव तकलीफ खर्च करना चाहते हैं, उन्हें प्लीज हमारा नाम बताइए, हम उनको बच्चों से मिलाएंगे। हर महीने के पहले वीरवार को फरीदाबाद के फोर्टिस अस्पताल में, जो कि नीलम चौक पर है, हमारे लिए स्पेशल डॉक्टर्स आते हैं गुड़गांव से, हिमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, जो बच्चों को फ्री चेकअप करते हैं। आप फरीदाबाद में महीने के पहले थर्सडे को आमंत्रित हैं, आप आइए, उन बच्चों से मिलिए, देखिए कि डॉक्टर उनके लिए क्या करते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, बच्चों से उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके हम किस प्रकार से मदद करते हैं ये उनसे सुनिए। और आप चाहें तो किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उनके लिए आप लगातार अगर तीसरे महीने ब्लड दें तो एक बच्चे का जीवन आपकी वजह से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बन सकता है।
0: सुनना अगर आपने देखा तो बहुत इजी लगा, लेकिन आई एम श्योर जब आप इसके लिए थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आई एम श्योर जब आप इसके लिए थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। बस उन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बिल्कुल भी स्वे मत होने दीजिएगा और ऐसे नेक काम के साथ जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि एक बार अगर आप ऐसा करते हैं ना सो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन आता है, अंदर से जो खुशी आती है ना, उसका बयां शायद मैं शब्दों में नहीं कर सकती। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं मदन चावला जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन फॉर थैलेसीमिया। मदन जी, क्या हमारे पास, क्योंकि आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया काम करती है, क्या हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा है जो ये बता सकता है कि हमारे पूरे भारत में कितने थैलेसीमिक बच्चे हैं?
1: वेल, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं जो थैलेसीमिया मेजर हैं। थैलेसीमिया मेजर मतलब वही बच्चे जिनको ब्लड चढ़ता है। और मैं अनऑफिशियली बात करूं, मेरे हिसाब से ये आंकड़ा इससे लगभग 4 गुना ज्यादा हो सकता है
0: जी।
1: क्योंकि मैं फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद का आंकड़ा जो टिपिकली हमारे सिविल हॉस्पिटल से लिया जाता है, सरकार के खाते में जाता है, और यहाँ पर लगभग 70 बच्चे रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया के
0: जी।
1: और मैं अपनी संस्था की बात करूँ तो फरीदाबाद में लगभग 200 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो आप इस फासले का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यस, मतलब हम बात करें लगभग 1.5 से लेकर 3, 3.5, 4 लाख तक बच्चे हिंदुस्तान में हैं जो थैलेसीमिया मेजर हैं और जिनके लिए हमें ब्लड अरेंज करना पड़ता है, जिनके लिए दवाइयाँ अरेंज करनी पड़ती हैं, जिनके लिए हम अगर वो उस एज ब्रैकेट के अंदर हैं कि इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती हैं।
0: मदन जी, आप तो इतने लंबे समय से थैलेसीमिया पर काम कर रहे हैं और आपने ना इसकी एक बड़ी इनडेप्थ स्टडी भी की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तब से और आज तक, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, अगर हम देखें 2019 से और आज 2026 तक, मुझे बताइए कि क्या ये आंकड़ा कम हो रहा है? क्या इस अवेयरनेस का वाकई इम्पैक्ट है हमारी पॉपुलेशन पे और सोसाइटी पे?
1: अगर सच्चाई की बात करूं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आंकड़ा कम नहीं हो रहा है
0: जी।
1: हम बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को इस बीमारी के जो है अवगुणों के बारे में समझाते हैं, पर फिर भी अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करते हैं तो थैलेसीमिया के कारण हम हिंदुस्तान में लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे 10 साल की उम्र में हर वर्ष खो जाते हैं और लगभग इतने ही बच्चे हर साल नए जन्म भी ले रहे हैं। तो ये आंकड़ा पिछले 10-15 साल से स्थिर है, वहीं का वहीं है
0: जी।
1: ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि एफर्ट्स बहुत की जा रही है, हमारे जैसे बहुत सारी और भी एनजीओ हैं जो इस काम में कार्यरत हैं
0: जी,
1: पर अनफॉर्चुनेटली ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं हो पा रहा है।
0: पदन जी, इसे कम कैसे किया जा सकता?
1: बहुत सिंपल है। थैलेसीमिया क्योरेबल बहुत मुश्किल से होता है, क्योर करना बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रिवेंट करना बहुत ही आसान है। एक छोटा सा लोगों को थैलेसीमिया के बारे में बताएं कि ये ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे, ना केवल बच्चे को बल्कि पूरे परिवार के जिंदगी को इम्पैक्ट करती है। इसको रोकने के लिए छोटी सी जाँच है, HPLC टेस्ट होता है, किसी भी लैब में जाएं वो टेस्ट करवाएं। आप नहीं करवा सकते हमें बताएं, हम आपका टेस्ट करवाएंगे, उस टेस्ट की रिपोर्ट आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। रिपोर्ट पढ़ना बहुत आसान है, उस रिपोर्ट में HbA2 एक पैरामीटर होता है, HbA सबको मालूम है हीमोग्लोबिन, A2 पैरामीटर को देखिए, अगर वो 3.5 से ज्यादा है इसका मतलब आप थैलेसीमिया कैरियर हैं। थैलेसीमिया कैरियर मतलब आप बीमार नहीं हैं पर आप एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में HbA2 3.5 से ऊपर आया है तो आप प्लीज एक जेनेटिक काउंसलर से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपको आगे जाके क्या करना चाहिए ताकि आपके परिवार में थैलेसीमिक बच्चा ना पैदा हो। इतनी सी जानकारी आप अपने दिमाग में रखें, अपने परिवार में अपनाएं, इसको लागू करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, एक बहुत स्ट्रांग चेन बनाएं जो समाज के हर वर्ग तक, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ताकि आने वाले कुछ वर्षों में हम इस बीमारी को पूर्णतः क्योर कर सकें, सॉरी कंट्रोल कर सकें। जब ये कंट्रोल हो गई, जो बच्चे रह गए, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनके इलाज की जिम्मेदारी, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारी संस्था उठाने को तैयार है।
0: सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मैं खास तौर पर मैंने ये सवाल पूछा मदन जी से, क्योंकि एक लंबे समय से जब भी हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो शायद बहुत कम बच्चे रह गए होंगे जिन्हें थैलेसीमिया, और आने वाले समय में इतनी समझदार पॉपुलेशन है हमारे देश की जिन्हें पता है कि हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़े, सो ऐसी बीमारी को जन्म देना ही क्यों जब वो आप ही के हाथ में है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपने एक छोटा सा टेस्ट कराना है और उसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं आपके घर में थैलेसीमिक बच्चा पैदा ही नहीं होगा। आने वाले समय में जिस तरीके से हमने पोलियो को बचाने की कोशिश की है, अब हम पोलियो को रोक चुके हैं अपने देश में, ऐसे ही शायद हम थैलेसीमिया को रोक सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरत है सिर्फ समझदारी की। तहे दिल से धन्यवाद मदन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे?
1: मैसेज बहुत सिंपल है, मैं रिपीट करूँगा, थैलेसीमिया को क्योर करना बहुत मुश्किल है, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। आपके हित में, आपके परिवार के हित में, अपने समाज के हित में थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाएं, एक छोटा सा टेस्ट करवाएं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर आप HPLC टेस्ट करवाते हैं आपके परिवार के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं किसी कारणवश, अगर खासकर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, हमें बताएं, हम उसे स्पॉन्सर करेंगे। अगर आपके रिश्तेदार इस बात को समझते नहीं हैं, उन्हें हमसे मिलाएं, हम आपके घर आएंगे, उनको समझाएंगे कि इस टेस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है जो आपके परिवार के भविष्य के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। हम उनको टेस्ट के लिए इनकरेज करेंगे, उनका टेस्ट करवाएंगे, हम और आप मिलके इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। गिफ्ट का उद्देश्य यही है, आप हमारे उद्देश्य में हमारे साथ जुड़ें और हम मिलकर अपने पूरे भारतवर्ष को थैलेसीमिया मुक्त बनाएंगे।
0: वाकई यही सपना देखा है हम सब ने कि हम आने वाले समय में अपने भारत को थैलेसीमिया मुक्त देखें, और इसमें आप सभी एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। इनफैक्ट जो नंबर आज हमारे फरीदाबाद शहर का है रजिस्टर्ड, 70 कह लीजिए इनके पास, 200 कह लीजिए किसी और NGO के पास, अगर 100, 200, 150 बच्चे हैं, तो मैं ये चाहूँगी सबसे पहले तो चलिए ना हम अपने शहर के ही इस नंबर को कम करने की कोशिश करते हैं, इस नंबर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक करते हैं और आने वाले समय में इस नंबर को बढ़ने नहीं देते हैं। थैलेसीमिया से मुक्त होंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारा पैसा भी हम बचा पाएंगे। और सोचिए ना, इन बच्चों को जिंदा रखने के लिए कितने रक्त की जरूरत पड़ती है, उस रक्त को भी हम बचा पाएंगे। सो वक्त है आपसे इजाजत लेने का, इस छोटे से संदेश के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।
2: चिमारू विंटेज के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को एक लंबे समय से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ खुद सशक्त हैं, लेकिन सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी जर्नी पर वो चल रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो खुद भी सशक्त हैं और दूसरों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हैं। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं गीतांजलि चौधरी। गीतांजलि चौधरी जी फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की, यानी बहुत सारी महिलाओं को लीड कर रही हैं और बहुत सारी महिलाओं को राह दिखा रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की, और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और इसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। गीतांजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम।
1: गीतांजलि जी, सबसे पहला सवाल इस कार्यक्रम का हमेशा एक ही होता है, महिला सशक्तिकरण के मायने आपके लिए क्या हैं? सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप महिला सशक्तिकरण को कैसे देखती हैं?
2: मैं बताती हूँ, हर लेडी को उसकी लाइफ से जुड़े सशक्तिकरण का मतलब है, हर लेडी को उसकी लाइफ से जुड़े हर डिसीजन लेने की शक्ति, उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंट और उसका समान अधिकार, ये उसे मिलने चाहिए। और उसके साथ साथ वो अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा, इस पर अगर वो ध्यान देती है तो वो स्ट्रांग कभी नहीं बन पाएगी। पहले होता था कि महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता था, मतलब ऐसे माना जाता था कि औरत सिर्फ घर की शोभा है। वो ठीक है, उसने घर संभाला, उसने घर को मजबूत बनाया, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाया। आज जरूरत है एक होम मेकर बनने के साथ साथ एक सोशल मेकर, सेल्फ मेकर बनने की भी, क्योंकि औरत अगर अंदर से मजबूत होगी तो घर, परिवार, समाज और ये देश भी मजबूत होगा।
1: वाकई दोस्तों, सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं तो महिलाओं के लिए आज भी सशक्तिकरण शायद फ्रीडम के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जरूरत यह है कि महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आज भी समाज में एक ऐसी कंडीशन है कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेने की जरूरत है। यानी आपको न सिर्फ अपनी ही इच्छा का काम करने के लिए दूसरों से पूछने की जरूरत है, लेकिन आपको दूसरों से वैलिडेट करवाने की जरूरत है। और इमेजिन करिए, ये कैसी विडंबना है कि जो महिला सृष्टि की रचना कर रही है उसी महिला को बाकी सारी चीजें करने के लिए सिर्फ दूसरों की परमिशन की जरूरत है। सो इसीलिए सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: है हप हप, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से, जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। आने वाले समय में ये अपने क्लब को लीड करती हुई प्रेसिडेंट होने वाली हैं और आज हम इनसे बड़ा अहम सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। गीतांजलि जी, मुझे बताइए, जमाने भर से महिलाओं के लिए ना बड़े सारे चैलेंजेस आए हैं
1: जी,
0: सो अगर मैं आज की बात करूँ, करंट सिनेरियो की बात करूँ, सो क्या कहेंगी, किस तरीके के चैलेंजेस महिलाओं के
1: लिए चैलेंजेस हैं? घर और नौकरी, यानी जो घर और ऑफिस दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। घर में बच्चों का, माता पिता का, इन लॉज का ध्यान रखना और ऑफिस में भी अपना बेस्ट देना, ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। और जैसा कि सब जानते हैं, संसार पुरुष प्रधान है, उसके बीच अपने वर्चस्व को बनाए रखना और अपने आप को सेफ रखना, ये आज हर लेडी की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ अपने आप को खुश रखना भी हर लेडी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को अगर वो पार करती है तो वो खुद भी खुश रहेगी और संसार को भी खुशियां दे सकेगी।
0: बिल्कुल सही कहा गीतांजलि जी ने, वाकई जरूरत ये है कि भाई ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए। अब एक जमाना था कि महिलाएं हमेशा घर पर रहती थी, थोड़ा सा जमाना बदला, थोड़ी सी एम्पावरमेंट आई, थोड़ा सा सशक्तिकरण आया, और इस सशक्तिकरण के आने से महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और बढ़ाया। अब परेशानी ये है कि उन्होंने जिम्मेदारी तो बढ़ाई, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी और अब वो घर में एक साझेदारी देने लगी, जहां वो भी घर से बाहर निकलकर ना सिर्फ नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हैं, लेकिन वो घर पर पैसा भी लेकर आ रही हैं, कंट्रीब्यूटर भी बन गई हैं। लेकिन परेशानी ये है कि उनकी जिम्मेदारी अब डबल हो गई है। एक तरफ तो वो पुरुषों के बराबर बाहर जाकर काम करके आ रही हैं, लेकिन घर आकर जो उनकी जिम्मेदारी पहले डिफाइन की गई थी वो आज भी बरकरार है, और कहीं ना कहीं इस कड़ी में एक बैलेंस बिगड़ रहा है। या तो आप ये दोनों चीजें बैलेंस करते हुए अपनी सेहत को, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते रहिए और इन चीजों को बैलेंस करते हुए जिए, और अगर आप ये नहीं करती हैं तो बहुत सारे आपके सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, करेंगे इसके बारे में बात, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM. मैं पॉइंटेड एफएम पर, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट. महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से. गीतांजलि चौधरी जी फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की. ढेर सारी महिलाएं इस पूरे के पूरे कहना चाहिए लीडिंग लेडीज के साथ जुड़ी हुई हैं, और न सिर्फ उन्हें सशक्तिकरण मिल रहा है लेकिन उन सारी महिलाओं को कहना चाहिए एक वे आउट भी मिल रहा है. लीडिंग लेडीज में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाता है. सो मुझे ये बताइए गीतांजलि जी, आप एक होममेकर थी, फिर आप सोशल वर्क में आई, लीडिंग लेडीज जैसा कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रही हैं जहां महिलाओं को आप सशक्तिकरण देने की कोशिश कर रही हैं. घर से बाहर निकलकर दो चार फेस्टिवल साथ मिलाना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ काम करना और फिर धीरे धीरे समाज के काम भी करना. मुझे बताइए ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अगर 24/7 घर पर गीतांजलि चौधरी जी मिल रही हैं और सडनली फिर वो वहां से गायब हो जाती हैं, तो लोगों को लगा होगा, परिवार को लगा होगा कि भाई अब इसका पूरा समय तो बाहर निकल रहा है, औरों के काम में निकल रहा है. तो कैसे बनाया ये बैलेंस, कैसे मैनेज किया आपने
1: ये बैलेंस? मैं सच बता रही हूँ और बड़ा प्राउडली सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो बैलेंस बना है ना, ये मुझे मेरे परिवार के प्यार से बना है. बिल्कुल, जैसे जब माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे, ये लोग देखते हैं कि जैसे बहू है, पत्नी है, माँ है, कुछ अच्छा करना चाह रही है, वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, और उसमें ये करने की काबिलियत है, जब वो देखते हैं ना कि ऐसी ताकत है उसमें, तो वो उनको अलाउ करते हैं. तो वो सबसे बड़ी ताकत तो वो परिवार है जो उसको ये करने की के लिए अलाउ भी कर रहे हैं और उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं. और ये 100% सच है कि मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे इन लॉज

0: कभी भी मुझे सोशल काम करने और अपने मन का काम करने से कभी नहीं रोका, उल्टा हमेशा मुझे एंकरेज किया कि तुम कर सकती हो, तुम खुश हो तो जरूर करो। एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरह अगर परिवार का साथ मिलता है तो ये तालमेल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक फैमिली सपोर्ट जो बैकबोन की तरह हमारे साथ है, वो मेरे साथ रहा, इस वजह से मैं घर भी और बाहर भी दोनों जगह को मैनेज कर पाती हूँ।
1: वाकई दोस्तों, आई थिंक ये हर महिला का सपना होगा कि जब वो घर पर आए तो उसे कभी भी ये ना सुनने को मिले कि तुम बाहर थी और तुम्हारे काम हम कर रहे थे, या फिर ये सुनने को ना मिले कि तुम्हें तो घर के कामों की जिम्मेदारी ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। सो इस गिल्ट में ना महिला ना तो अपने सपनों को पूरा कर पाती है, ना प्रोफेशनली स्ट्रांग हो पाती है, और ना ही अपने वर्क प्लेस पर उस कॉन्फिडेंस से काम कर पाती है। अब महिला दो परेशानियों में आ जाती है, या तो रिबेल करे कि भाई घर छोड़ दीजिए और आप जाकर अपना करियर बनाइए, और नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए, और कॉम्प्रोमाइज की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ी दुख भरी होती है। सो दोस्तों, ये जरूरत है हमारे समाज की, कहीं ना कहीं हमारे समाज को जरूरत है ऐसे परिवारों की, ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे। फिलहाल सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो वनवृष्णा 107.8 एफएम के साथ। वापस लौट कर आऊंगी इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से। गीतांजलि चौधरी जी जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, अगला सवाल, हमने ना बहुत सारी तरक्की की है और अगर आप देखें तो महिलाएं आज शायद हर प्रोफेशन में हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक आप जहां भी सोचें, हर जगह महिलाएं अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। लेकिन अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूं या फिर कहना चाहिए जेंडर के साथ सामंजस्य बनाने की बात करूं, तो सोसाइटी में आज भी वो नहीं है। आज भी महिलाएं दहेज के लिए जलाई जा रही हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं। आज भी महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज भी महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी घर और घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी जॉब या तुम्हारा करियर। सो मुझे बताइए कि कैसे बैलेंस आए जेंडर इक्वालिटी में, सोसाइटी में ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए।
1: ये बैलेंस तभी क्रिएट हो सकता है मैम, जब ये जो स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग होती है ना वो खत्म हो, जो ये रूढ़िवादिता है, जो हम पुरानी सोच जिसे कहते हैं, वो अगर बदलती है तो समाज काफी हद तक बदल जाएगा। जैसे पुरानी सोच में पहले कहते थे कि महिलाओं को केवल घर संभालना चाहिए, पुरुषों को बाहर काम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी महिला में काबिलियत है तो बाहर काम कर अपना परिवार अगर वो चला सकती है तो वो क्यों नहीं करे। कुछ लोग महिलाओं की सोच को छोटा समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें इस संसार में लाने वाली एक औरत ही है। समाज और एक औरत की हिम्मत, धैर्य और उसके त्याग को कम आंकता है। और एक चुनौती है, और वो है सबसे बड़ी चुनौती जो एक लड़की के सामने आती है, वो है बॉडी शेमिंग, जिसके चलते आजकल की लड़कियों ने सर्जरी शुरू करवा दी है पतला सुंदर गोरा दिखने के लिए। क्योंकि मोटी काली लड़कियां, जो ये एक बहुत नेचुरल चीज है, उसने अपना अपने लिए वो चूज नहीं किया है कि वो मोटी हो, कि वो काली हो, कि वो नाटी हो। तो ये जो चीजें हैं ये एक प्राकृतिक है, भगवान ने उन्हें बनाया है। तो इन सब से परे अगर उसके लिए सोचा जाए, इस सबसे परे अगर समाज उसकी अच्छाइयों को देखे, ना कि उसकी सूरत को ना देखे, उसकी सीरत को देखे, तो समाज, घर, परिवार और ये देश, उनकी तरक्की से कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ये देश तरक्की करेगा अगर उसकी अच्छाई तो है ही, एक महिला की अच्छाई के साथ साथ उसकी बॉडी शेमिंग ना की जाए, उसकी उसकी जो थोड़ी कमियां हैं उसके साथ उसको अगर अपनाया जाए, ये संसार, ये देश, ये समाज उसको अपनाए, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बाकी दोस्तों, इस अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो जरूरी ये है कि लेट अस बी मोर कंपैशनेट। कोशिश करें ना कि हम महिलाओं को एक ह्यूमन बीइंग भी समझें। कई बार तो मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट है सोसाइटी का जहाँ महिलाओं को ना शायद एक केयर गिवर समझा जाता है, जैसे इनकी ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना उन्हें अप्रिसिएशन की जरूरत है। वो दिन रात खाना बनाती हैं, बट आप उसे अप्रिशिएट भी मत करिए, लेकिन जिस दिन खराब बनेगा उस दिन आप उसे क्रिटिसाइज जरूर कर दीजिए और उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी जिम्मेदारी है, ये तो बाय डिफॉल्ट चिप में लगकर आया है कि आपको ये काम करने हैं। सो कहीं ना महिलाओं को एक ऑटो मोड पे डाला हुआ है जहां पर कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स या उनकी भी जिंदगी है, इसकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर एक महिला ऑफिस में कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाती है और घर पर काम नहीं पूरा हो पाता है, तो आप खुद ही सोचिए कि घर पर क्या बवाल होगा। तो कहीं ना कहीं डरी हुई महिला या तो ऑफिस से कोशिश करेगी कि भाई वो ऐप के जरिए खाना भिजवा दे, या बच्चों को कॉल करेगी या मैनेज करेगी, और फिर वो गिल्ट के साथ वापस आएगी। रादर देन, मुझे ऐसा लगता है कि होना ये चाहिए कि अगर वो काम में बिजी है तो बाकी सभी लोग ये सोच कर कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, खुद मैनेज करें, जो कि बहुत आसान होता है। आजकल छोटा सा बच्चा भी ये जानता है कि अगर उसे कुछ खाना है, फॉर दैट मैटर पिज्जा, उसे ऑर्डर करना आता है। सो ये सारी चीजें तभी होंगी ना जब हम उसे एक इक्वल जेंडर समझेंगे और उसे एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं समझेंगे कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिला पर है। और आई थिंक नॉट इवन महिला के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम फीमेल जेंडर पर एक अलग ही प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं, इसे बदलने की जरूरत है। कैसे बदला जा सकता है, आप भी मेरे को सजेशंस भेज सकते हैं। उसके लिए आप कुछ भी नहीं करिए, बस मुझे अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए 8010781078 पर। चलिए भाई, वक्त हो गया एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, यानी आपके लिए एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना। जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लव।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से। गीतांजलि जी जो कि फाउंडर है लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी है रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, अब अगला सवाल महिलाओं के लिए। हम पूरे टाइम अभी तक यही बात कर रहे थे, देखिए वैसे तो महिलाओं को करियर अपनाने के लिए कोई नहीं रोकता है आज के जमाने में, थोड़ा लिबरेशन फिर भी आ गया है, लेकिन दो ऐसे असमंजस के समय आते हैं महिला की जिंदगी में जब उसे अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहला जब उसकी शादी होती है,
2: बिल्कुल,
1: और दूसरा जब उसके परिवार बढ़ता है यानी बच्चा होता है
2: जी।
1: ये दो ऐसे जिंदगी के डिसीजन है जहाँ पर की अक्सर ये कहा जाता है अरे भाई शादी होकर तुम दूसरे शहर में जाने वाली हो, नौकरी करने की क्या जरूरत है, इसे छोड़ दो। सो कभी भी आज तक मैंने ये नहीं देखा है कि एक पति अपनी पत्नी की नौकरी के लिए प्लेस ऑफ वर्क बदल रहा है या जगह बदल रहा है, या उसका ख्याल रखते हुए कि भाई उसका भी एक अच्छा करियर है उसे मैनेज किया जाए या उसकी प्रायोरिटी रखी जाए।
2: बिल्कुल,
1: वैसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है घर में तो पूरा का पूरा परिवार बाय डिफॉल्ट यह सोच के रखता है कि अब अगर वो किसी भी करियर में है या किसी भी प्रोफेशन में है सो बच्चे का ख्याल रखना एक महिला का काम है। और उसकी मैटरनिटी लीव अगर मिलती है तो बहुत खुशी की बात है, और उसके बाद शायद उसे ये कंपेल किया जाता है कि बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो अपनी नौकरी को भी छोड़ दें। और ऐसे में हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी जो है घर की वो हमेशा महिला पर आती है। इसको क्या ठीक किया जा सकता है, इसको बैलेंस बनाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर अच्छे

0: अब कि उसको काम कैसे करना है, जैसे ऑफिस का काम घर पर जरूरी नहीं है कि वो करे, अपना ऑफिस का काम है ऑफिस में खत्म करो, वही वही आदमी के लिए है, वही औरत के लिए है। और काम के दौरान जैसे मान लो हम काम है, और यही चीज है हमारा बाहर, अगर हम ऑफिस में हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई टेंशन है तो हमें अपने उस काम में नहीं दिखानी चाहिए, तो हम दोनों तरफ बैलेंस कर पाएंगे, हम घर को भी ध्यान रख पाएंगे और हम ऑफिस में भी अच्छा काम कर पाएंगे। और जैसे कि वी कांट अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू एवरीवेयर, मतलब जरूरी नहीं है कि हम, जरूरी नहीं कि हमें हर जगह होना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार हमें काम करना है और अपनी जरूरत के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर बड़े ही सॉफ्टली से, जो हम नहीं कर सकते तो हम मना कर दें कि नहीं अब हम नहीं कर सकते हैं, हमें इतना ही करना है, अपने लिए घर के लिए, और एक हेल्पर रख सकते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं जिससे कि हमें भी परेशानी ना हो और हमारे घर वालों को भी परेशानी ना हो। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इवन फोन को भी हटा दो, थोड़ा समय ऐसा बिताओ जिससे हमें आपस में खुशी मिल सके। अपने हस्बैंड से अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर करो, हर बात को शेयर करो, वो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि बल्कि हम सोचते हैं कि नहीं उनको नहीं बताएंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं या कोई बात आपको परेशान कर रही है या आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों लाइफ में, तो हस्बैंड बहुत ही अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे क्या होगा, हम बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है। और अच्छे दोस्त बनाओ जो हमेशा आपके साथ खड़े हों, हमेशा आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें और आपकी हर अच्छी चीज में आपका साथ दें। और अगर हम कहीं गलत भी हैं तो वो हमें समझाएं कि हम गलत हैं। और जब बच्चे छोटे हैं तो एक ऑप्शन हो सकता है, अगर ये ऑप्शन हमें मिलता है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, तो हमें वो करना चाहिए ताकि हम जॉब छोड़ने की बजाय हम काम घर से कर सके, तो वो दोनों ही लाइफ इजीली बैलेंस हो जाएगी, जहां तक मेरा मानना है।
1: वाकई गीतांजलि जी ने बड़े सारे टिप्स दिए हैं कि भाई आप कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर सकती हैं। बट मैं तो ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट न सिर्फ आपके जीवन साथी का होता है लेकिन आपके परिवार का होता है। तो अगर परिवार ये कहता है कि भाई तुम्हारा करियर उतना ही जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जिंदगी का ये है कि अक्सर महिलाओं को तब तक बहुत ज्यादा अच्छी या रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन नहीं दी जाती है, पोस्ट नहीं दी जाती है, जब वो इस फेज में होती है, या तो उनकी शादी हो रही होती है या फिर उनका कहना चाहिए कि मटर्निटी का टाइम होता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि न जाने शादी के बाद ये महिला नौकरी छोड़कर न चली जाए चेंज ऑफ प्लेस के कारण, और कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए भी महिलाओं को प्रमोशन नहीं देती हैं ये सोचकर कि अब ये महिला मेटर्निटी लीव पर जाएगी, यानी हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, यानी इसको हमने काम सिखाया और उसके बाद कोई और आएगा। सो ये सारी चीजें जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर होती हैं। सो ऐसे में महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, अपनी नौकरियां छोड़नी ना पड़े, या कॉम्प्रोमाइज करके वो जब अपनी मेटर्निटी लीव से वापस आती हैं तो उन्हें कई बार लगता है कि 3 साल का गैप आ गया है, जो मेरे साथ के कॉलीग्स थे वो आगे पहुंच गए हैं, वो प्रमोट हो चुके हैं, मैं आज भी वहीं पर हूं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं से ये कहा जाता है फॉर पेटी मनी, अरे भाई तुमसे ज्यादा पैसा तो तुम्हारे पति और पूरा परिवार कमा रहा है, सो तुम जा किस ले रही हो, तुम घर पर ही रहकर बच्चे का ख्याल रखो। सो ये सारी चीजें हर घर में होती हैं, इतना कॉमन है कि आई एम श्योर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे। बट जरूरत ये है कि उस महिला की आइडेंटिटी है, वो पैसा उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना अस्तित्व है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मनी उसे ये मौका मिलना चाहिए कि वो वापस अपनी उस डिग्निटी को कमा पाए, और इसके लिए मुझे लगता है पूरा परिवार और पूरा समाज भी उसकी सपोर्ट में रहना चाहिए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हमने ढेर सारी बातें की गीतांजलि चौधरी जी से, जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स के साथ आपने बातचीत की और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी भी दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला।
0: गीतांजलि जी, जाते जाते आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं ये सबके लिए कहना चाहूंगी, उसमें मैं आप सब हैं, कि जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ बात करने के लिए ना रहे, वो होनी चाहिए। मेन और वुमेन दोनों ही इस संसार को चलाने के लिए जरूरी हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। दूसरा है एजुकेशन, बेटा हो या बेटी दोनों को जरूर पढ़ाएं, शिक्षित जनता ही देश का भविष्य तय करती है। तीसरा है सेफ एनवायरनमेंट, हर माँ बाप को अपने बेटा बेटी दोनों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि तभी ये समाज सेफ हो सकता है। मजबूत कानून व्यवस्था बने, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये देश में चलती रहेंगी ना, ये देश समाज कभी भी तरक्की की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। बस लास्ट में एक शेर छोटा सा कहना चाहूंगी।
0: जरूर।
1: तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है, तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है, जन्म क्या पहचान क्या वो जान देती है, ना भूल कर ये भूलना उसे आंकते हो तो, ना भूल कर ये भूलना उसे आंकते हो तो, जीतेगी वो हर हाल में जब ठान लेती है।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, और वाकई आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं वो मोटिवेटेड हो गई होंगी, और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया है कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस समाज में, इस सोसाइटी में। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, जो आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुई।
1: जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना से टाटा बाय बाय, टेक केयर, फील गुड फील लव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर लें ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ना सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहाँ हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहाँ इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है, मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो CEO हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है।
1: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है?
2: देखिये मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने 3 गिलास को मिलाया और वो पूरा 1 गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं कि वो डेलिब्रेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते वेरी गुड। तो खैर हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड आप लोग करिए। हमने लगभग मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जाकर के लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। 8-10 साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढे और उनको हमने जो नाम दिया, क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है और वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
1: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो वन ऑफ रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो वन ऑफ रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ना सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहाँ हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहाँ इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है, मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो सीईओ हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ, और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है।
1: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है।
2: देखिये मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने तीन गिलास को मिलाया और वो पूरा एक गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं कि वो डेलिब्रेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते वेरी गुड। तो खैर हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड आप लोग करिए। हमने लगभग मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जा करके लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। 8-10 साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी, और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढते और उनको हमने जो नाम दिया, क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है और वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
1: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं या फिर मैं रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करूं, पानी हर जगह काफी कम है, तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे, अनिल जी से करेंगे ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। जी हाँ, जल प्रहरी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पानी को बचाने के अलग अलग तरीके कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, अब अगला सवाल, और वो सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पानी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम इंडिविजुअल्स का नहीं है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंडिविजुअल अप्रोच से ही हम पानी को सही ढंग से बचा पाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ कि जब 2019 में हम पहला जल प्रहरी किया तो बहुत सारे लोगों का हौसला जो था वो बहुत बढ़ गया, उनके भीतर बड़ा उत्साह था, बहुत सारी जगह उनकी न्यूज पब्लिसिटी हुई। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी को टारगेट्स दिए हुए, सभी डैम्स को, कि आपको ये अमृत सरोवर बनाने हैं, ये इनको रिवाइव करना है। अब ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें फोन किया कि आप लोगों ने जो जल प्रहरी किया था तो हमें कोई ऐसा बंदा बताइए ना, कि क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, लेबर घरों में थी, तो प्रोसेस नहीं काम कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एंड दैट IAS ऑफिसर वाज वेरी स्मार्ट, ही सेड कि वो काम हम करना चाहते हैं, हम वाटर अथॉरिटी को रिजुविनेट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक दो जो जल प्रहरी थे उनका कॉन्टैक्ट दिया और वो उन्होंने एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट करवाया। आपको जान करके अच्छा लगेगा, हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो प्रोजेक्ट करीबन 30-35 लाख रुपए का बताया गया। जब जल प्रहरी को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम इस तालाब को बना सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बना सकते। बोले कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बताया कि आप हम 50 लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना में तो 7-8 लोग आ पाएंगे, और आप यहाँ पर हमारे लिए खाने का और रहने का अरेंजमेंट करवा दो, और 20 लीटर तेल लगेगा JCB मशीन से, इतने दिन JCB मशीन काम करेगी, और कुल मिला के करीबन 30-35 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो जब जूनियर ऑफिसर ने ये सब सुना और उसने सीनियर ऑफिसर को बताया, तो सीनियर ऑफिसर ने हाथ करके कहा कि या तो ये लोग फ्रॉड हैं या फिर ये वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं। एंड वो रिस्क लिया उसने, और उस रिस्क को लेने के बाद वो वाटर बॉडी 7 डे में वो वाटर बॉडी तैयार हो गई, एंड ह्यूज वाटर बॉडी, अच्छी वाटर बॉडी वो तैयार हो गई। थोड़े दिन बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भी आ गया। जब पानी आ गया तो जो सीनियर ऑफिसर था वो उसको देखने गया, उसने देखा और जो जूनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये कुल 37 हजार रुपए में तैयार हुई है, तो सब ने उनके लिए क्लैपिंग की। सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज आ रहे हैं, ऐसे ये लोग पानी की रक्षा करते हैं। या आप यकीन मानिए, हम कोई भी क्या बैंक में बिना पैसा रख करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? भावना जी, आप कर सकती हैं?
0: वाकई नहीं।
1: तो हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो हमारा जो डिपॉजिट है हम उसे सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन सोच लीजिए कि अगर सुबह आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। बस श्रोता से, हर लिसनर से मेरा एक ही सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, मॉर्निंग में अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए आज से विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट भी शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, उसी से बहुत भला हो सकता है। आप कर सकते हैं, आप करते हैं, आप जाने अनजाने पानी खराब भी करते हैं और जाने अनजाने आप पानी बचाते भी हैं। तो बस उसका प्रहरी बनना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा।
0: नहीं बड़ा, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब जब तक पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक के लिए आप ये सोचिए कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड मार्क है, और पूरा दिल्ली NCR भी मैं अगर कहूँ तो इसी एरिया में आता है, लेकिन क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? एक्चुअली यस, पॉन्डमैन ने तो ये प्रूव किया हुआ है। भाई रमेश जी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप मुझे एक जगह दीजिए और लाइए आपके पॉन्ड्स को, मैं वापस रिवाइव कर दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये है कि क्या हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं और हम कॉन्शियसली सोसाइटी में जी रहे हैं, या आप एक मोबाइल फोन की जिंदगी जी रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी सुना रही आपको एक प्यारा सा गाना, और वापस लौट कर यही आना। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी। अनिल जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम ना एक मोबाइल फोन जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है हम इससे बिल्कुल
1: अनजान है,
0: एक्चुअली अनजान है। सो एक बड़ा जरूरी सवाल, इतनी अवेयरनेस है, इतनी

0: इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार से लेकर इंडिविजुअल्स तक, हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पानी को बचाइए, कंजर्व करिए, लेकिन उसके बाद भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आप लोग इस अवेयरनेस को कैसे पहुंचा रहे हैं जन जन तक?
1: देखिए, हम लोग जो है हर बार हम जब जलधरी का आयोजन करते हैं उससे पहले पूरे साल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर से हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब 2025 का हमने जल प्रहरी आयोजित किया तो हमारे साथ सिंगानिया यूनिवर्सिटी थी, सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डीसी मनोज कुमार जी, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया। हमारे साथ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, उनकी जो प्रिंसिपल थी, इत्तेफाक से वो फरीदाबाद में रहती हैं, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया। और इन बच्चों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिस प्रहरियों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं ताकि उनको पता चले कि वो आखिर कर कैसे रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपने देखा होगा एक ये जो आजकल शादियों के टाइम आपने बैंड वाले देखे होंगे, हमारा एक जल प्रहरी है वो बैंड बाजा बजाता है। अब आप सोचिए वो कैसे जल प्रहरी हो सकता है, बट यू नो व्हाट ही डू, जिस दिन उसके पास काम नहीं होता है वो अपनी साइकिल लेता है, वो गरीब है, बहुत गरीब है, साइकिल लेता है और उसमें कुछ नल टोटियां प्लास्टिक की या लोहे की डाल लेता है और वो लेकर के निकल जाता है। जो पब्लिक जो टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो उनमें से पानी टपकता है, वो उनको चेंज कर देता है। सो कैन यू बिलीव दिस, एक आदमी जो खुद बेचारा 200-500 रुपए कमाता है दिहाड़ी, और वो महीने में 1500 रुपए इस तरीके से खर्च करके जल प्रहरी बन।
0: वंडरफुल।
1: तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी ये चाह ले कि मुझे ये करना है तो वो फिर किसी भी अवेयरनेस और किसी भी उसकी उसको जरूरत नहीं होती है। ये फायर, ये लाइट, ये मन में जो मानवता की राह पर जो चले का जो एक बीज हमारे अंदर रोपित होता है, हमने ये सब कहानियां सुनी हुई है दादाजी से, नानी से, और इवन मोबाइल फोन में भी अगर हम उसको भी देख के अलर्ट हो जाए, बिकॉज लोग कहते हैं हमारा शरीर जो है वो 2/3 वाटर है। आपने सुना होगा कि जब हमारे बॉडी में इन दिनों में खासतौर से जब हम ह्यूमिडिटी है तो वी फील अनकंफर्टेबल, किस लिए? बिकॉज पानी खो रहा है, जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हम खो जाते हैं। तो जब हम बॉडी के पानी की रक्षा करते हैं, हम उसके प्रहरी हैं, तो हमें समाज के पानी की भी रक्षा करना चाहिए।
0: वाकई भाई बड़ी खूबसूरत सी कहानी, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करने वालों को ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना उन पर ध्यान दे रहे हैं, और पानी को बर्बाद कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हमारे पास अबंडेंस में है। बहुत सारे लोग अक्सर ना जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि अरे मैडम आप हमेशा पानी पानी की बात करते हैं, बट क्या आपको पता नहीं है कि हमारे सागर में, या फिर कहना चाहिए हमारे ओशंस में इतना पानी है, जब कभी भी चाहेंगे इसे रिफाइन करेंगे नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। लेकिन ना लोगों को शायद आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पोर्टेबल वाटर है जिसे पिया जा सकता है, उस पानी में और हमारे समुद्र के पानी में बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है या फिर जो पानी है जो हमें हमारे नदियों से मिल रहा है, जो हमें हमारे तालाबों से मिल रहा है, उस सारे पानी को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम हर इंसान इसे रियलाइज करें। हम वीडियोस देखते हैं, हम अलग अलग किस्म के कहना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना चाहिए, या हर इंसान या हर इंडिविजुअल को इसे कैसे अपनाना चाहिए, करेंगे इसके बारे में बात, छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं

0: रियाज है, हमारे एक जलपैरी है अनिरुद्ध तोड़कर, अब वो महाराष्ट्र से हैं
1: जी।
0: ग्राउंड वाटर सोर्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जितने अब हम बड़े हैरान होते थे, सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो महाराष्ट्र से हमारे पास आते थे जलपैरी के, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हमने देखा कि महाराष्ट्र में वास्तव में बहुत पानी का दोहन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि वहां पे इतना बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया है वहां पर, इसके बावजूद पानी की कमी है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसके बावजूद वहां पानी की कमी है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसके बावजूद वहां पानी की कमी है। आखिर हमसे चूक कहां हो रही है? मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो उनको याद आ जाएगा, आप अगर मान लीजिए दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या फरीदाबाद में हैं, तो आपने देखा होगा किसी गाँव के साथ में एक पॉन्ड था, तालाब था, वो तालाब लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर कूड़ा डाल करके, मलबा डाल करके, और आपने उस पर कुछ नहीं किया। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जब सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आपका फोन, और मुझे लगता है आपके पास आरजे भावना है। आप आरजे भावना को बताएं कि आपके इलाके में ये वाटर बॉडी है और वो उसको ऐसे लोग किल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है, और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने का माहौल बनने की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत जागरूक तो हुए हैं लोग। मैंने अभी तक किसी भी गांव में जहां मैं गया हूं ये नहीं सुना कि किसी ने तालाब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हों, और जो आदमी एफर्ट्स करता है वही जलत्रहसी होता है, और वो उसको सब पूरे गांव वाले लोग पागल कहते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में तालाब जो है उसको कब्जा करके, उस पॉन्ड को फिल करके, उस पर मकान बनाने का या प्लॉट बेचने का साधन है, लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं वो उनकी लाइफ लाइन है। आप सोचो अगर यमुना दिल्ली और NCR में ना हो तो पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम इन छोटे छोटे पॉन्ड्स को रिचार्ज नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए मुझे लगता है भावना कि पानी को लेकर के हमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और इसमें अपने एक एक छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, आप पानी को वेस्ट ना होने दें। मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी तो इस अभियान से जुड़ी हुई है, उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो 3 बार चलाने के, 4 बार चलती है और 4 बार फ्रेश वाटर लेती है, उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक बना के काम करती है ताकि उसका पानी वेस्ट ना हो। तो मुझे लगता है एक होम मेकर ये कर सकती है कि वो पानी वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख सकती है, बच्चे फ्लश करते टाइम ध्यान रख सकते हैं, अननेसेसरी पानी गिर रहा हो स्कूल कॉलेज में तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बोल करके उस टैप को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या कहीं खुला हुआ है टैप तो उसको बंद कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है, और अगर फिर भी ना मिले कोई साधन तो जल प्रहरी को संपर्क करें या फिर भावना आरजे भावना को संपर्क करें, हम बताएंगे।
1: वाकई बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के, और खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि भाई अगर आपके घर में आरओ है और उससे फिल्टर हुआ पानी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भाई आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उस पानी को जरूर बचाइए। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अनिल जी के साथ, अनिल सागर जी जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं वाटर कंजर्वेशन के? हम पानी को क्यों नहीं सही तरीके से बचा पा रहे हैं? एक चैलेंज जो मुझे नजर आया है इतने सालों में, माइंडसेट। आप मुझे बताइए बाकी क्या चैलेंजेस हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है लालच
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही, क्योंकि सामने जिसके घर के सामने पॉन्ड है उसको ये लालच है कि मैं इसको खत्म करके और अपना प्लॉट बड़ा कर लूं। ब्यूरोक्रेसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पॉन्ड बनाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसके बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू होते हैं वो उसे उतना अच्छे से नहीं पता होते हैं। तो कई बार वहां पर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको काम करने से रोकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। कई बार फंड्स की प्रॉब्लम होती है। मजेदार बात ये है कि भावना, आप पानी का बिजनेस करें तो आपके पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन आप पानी बचाने का काम करें तो आपको पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे और फंड्स की बहुत क्राइसिस होती है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही है, माइंडसेट। जब तक हम छोटी सी गाड़ी लेते हैं जो कि कुछ लाख की होती है, उसमें कोई स्क्रैच मार जाए तो हम डरने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज हमारी जिंदगी छीन सकती है, वाटर, पानी, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, खत्म हो गया, कोई 20 लीटर वाली दूसरी बॉटल मंगवा लेंगे, या 100 रुपए की ये ले लेंगे, या 50 रुपए की हम ये मंगवा लेंगे। बट मुझे लगता है नहीं, आप अगर पानी बचाने के एफर्ट्स शुरू करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करेंगे, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा।
0: और इसमें एक चीज आप जरूर जोड़ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता, या इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट लग जाएगी और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अकेले मेरे करने से क्या होगा, ये तो सरकार की या फिर प्रशासन का काम है। ये एक बहुत गलत सोच है। इंडिविजुअली आप अपने घर की यूनिट से शुरू करते हुए इंस्टीट्यूशंस तक, ऑफिसेस तक, जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, और खास तौर पर वो जल जो आपको डायरेक्टली आसमान से मिलता है और जो कि सड़कों को फ्लड कर देता है, कहीं किसी शहर को वेनिस बना देता है, तो कहीं देखिए तो किसी किसी शहर को पूरी की पूरी तरीके से डुबो देता है। लेकिन इस पानी को अगर आप न सिर्फ जमीन में जाने दें तो
1: ये माँ की गोद में उतार दें,
0: एग्जैक्टली, तो ये आपके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और आपकी वाटर बॉडीज को भी रिचार्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप जरूर न सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, और समय समय पर हम आपको हमारे प्रोग्राम्स में तो ये बताते ही रहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमान,

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। अनिल जी, वैसे तो आप अपने काम में काफी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका खास इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में जब लोग सुन रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ क्या कोई जुड़ सकता है और क्या इसे रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आसपास पानी कैसे बचा सकता है, एक जल प्रहरी कैसे बन सकता है?
1: ठीक है, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने सही का रहन एक बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर के आसपास जहां भी आप एक ऐसा पिट बना सकते हैं घर के सामने, जहां आप अपनी छत से पानी को धरती माँ की गोद में उतार सकते हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये संभव नहीं, आपके इलाके में कोई भी बोरवेल है वो डेड है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में अगर कोई छोटा सा तालाब है और वो गंदा है, तो एक दिन आइए ना, एक दिन आउटिंग करते हैं, तालाब के साथ बातें करते हैं, तालाब को जिंदा करते हैं। यकीन मानिए, तालाब जिंदा होगा तो आप खुद मुस्कुराएंगे और देखेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है। आपके इलाके में कोई नहर है, छोटी नदी है, उसमें कोई कचरा डालता है, आप उसे रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए। अगर नहीं मानता है तो आप उठा दीजिए वो कचरा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद लोग वहां पर डालना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप पानी को बचाने को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत बात कर सकते हैं। आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है आप जल प्रहरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। हम जरूर, हमारे जल प्रहरी इन सब कामों में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे लोग काम करते हैं और सरकार के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि काम करने वाले 1,500-1,00,000 होंगे, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, यूं कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हैं। तो वो करोड़ों हाथ अगर जुड़ जाएंगे खराब ना होने, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस सिर्फ खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति और पानी रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। हमने कोरोना में ये सब देख लिया है कि पानी कितना जरूरी था, हमारा प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत ही खास तरीके से हमें अनिल जी ने बताया है कि हम कितनी इम्पोर्टेंट जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें यूं ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन हमारे पास होंगे ही नहीं, और फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज से ही हम इन्हें कंजर्व करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, वो ये याद कर लें कि अगर पानी नहीं होगा स्विमिंग पूल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बहुत किताएं बदल जाएंगी। बहुत पहले कबीर ने कह दिया था कि बिन पानी सा सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो न मोती रहेगा, न मानस रहेगा, और ना बर्गर और पिज्जा के लिए चून यानी आटा होगा, फ्लोर होगा, मुद्दा होगा। तो चाहे आप पिज्जा बनाएं या बर्गर या कुछ भी, एक रोटी बनाएं या चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको पानी चाहिए। और अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, आज के बाद भी जल प्रहरी, सेव वाटर एंड सेव वाटर बॉडीज आल्सो।
0: एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी और उन्हें मोटिवेट किया जल प्रहरी बनने के लिए।
1: थैंक यू भावना, और मैं आपसे भी प्लेस चाहूंगा कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हैं और एक्टिवली इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, हम साथ साथ मिलकर चलते रहे मानवता की राह पर।
0: वाकई दोस्तों, मैं तो बन गई हूँ जल प्रहरी, क्या आप बनेंगे मेरे साथ? और अगर हाँ किया है तो बस जुड़ जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, बट तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनते रहेंगे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। फील गुड, फील लव।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप? और मुझे आप बताइए कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुनते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? और नंबर हमारा 8010781078, अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इन्जॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इन्जॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनी रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियां कैसे लेकर के आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है, और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने, समझने, काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फ़र्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं, और आपका सपोर्ट मैसेज के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए, लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा, मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। और यकीन मानिए, पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है, हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है, इसकी आदत आप बनाइए। देखिए, लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी देर में। एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं, तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पे इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके ज़रे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है, आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और साथ ही मैं तो चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है, वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे

बड़े कहकर गए हैं, और आप लोग भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है। कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ़ आप जानते हैं। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए, और आप ही परेशान होंगे। इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के तकलीफ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है, होता है ना ऐसा। और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए। पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है। जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए। ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है। ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। ये तभी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं। इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है, वो तुलना करते हैं एक दूसरे से, और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी। वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके कैसे खुश रहना है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है लेकिन पता है क्या होता है हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहां हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में तो हम कंपेयर करने लगते हैं और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं ये वाली चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है तो ये आप नहीं कीजिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है राइट इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर इसको आज ही से छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है तो वो आप मत कीजिए अपनी आदत को आप समझिए आप समझ सकते हैं कि ख़ुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं तो देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है दूसरी चीज़

कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए। ऐसी ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी, और वो क्या है, किस बारे में है, ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में। चलिए एंजॉय करते हैं गाना। रेडियो माना कृष्णा 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना। पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है। मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरिजन लोग करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी इजी होने वाली है। तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए आगे, उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और पता है आज के टाइम पे ना हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी और अच्छी जगह पर हमें रहना है। हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे। कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078। होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर, मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि अपना का नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कविदेव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौण रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: चार गुलाब।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवे करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहू ओर, सुदेव घटा घिर की चहू दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उते बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नफरत

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई ते ही छिन देव, सु प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए।

आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी हैं, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात कर रहा हूं सीताफल के बारे में। देखिए, सीताफल की खेती के लिए सही समय और अनुकूल जलवायु का चयन बहुत जरूरी होता है। इसकी जो बुवाई है साल में दो बार की जा सकती है, पहला समय जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा फरवरी से मार्च के बीच सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये जो फल है ना किसान भाइयों, सीताफल, ये गर्म और हल्की शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड और पाला नहीं पड़ता, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहाँ तापमान संतुलित बना रहे। गर्म मौसम में पौधे तेजी से विकसित होते हैं और फलों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस मिट्टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं

मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करते समय 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और हर एक गड्ढे के बीच लगभग 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और जीवाणु नष्ट हो सकें। इसके बाद गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, खली और एनपीके उर्वरक मिलाकर भराई की जाती है। अब सवाल आता है कि इसकी बुवाई का समय क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो किसान भाइयों, सीताफल की बुवाई के बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीताफल की बुवाई के लिए पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन की जो थैली होती है, उन पॉलीथीन की थैलियों में मिट्टी भरकर उसमें बीज डालना चाहिए, और पौध तैयार होने के बाद इन्हें खेत में रोपित किया जाता है। इससे पौधों की जो वृद्धि है वो बेहतर होती है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है। गड्ढों में खाद और उर्वरक डालने के बाद 3 से 4 दिनों तक सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर शुरुआत में पौधों की सही देखभाल की जाए तो आगे चलकर उत्पादन काफी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आप जो भी फसल अपने खेत में बोएं उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो। तो चलिए कुछ और भी बातें हैं आपको बताऊंगा सीताफल के बारे में, कि इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में। सीताफल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रति पेड़ लगभग 20 से 22 किलोग्राम जैविक खाद या गोबर की खाद देना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 40 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश की मात्रा भी हर साल दी जानी चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर होता है। होता क्या है किसान भाइयों, जैविक खाद जो है ना, उसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अब सवाल आता है सिंचाई का, कि सिंचाई और इसकी देखभाल कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारी उपज और भी बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई और इसकी देखभाल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, देखिए सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। सीताफल की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ड्रिप सिंचाई और छिड़काव विधि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। गर्मियों के मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पौधों को हर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, पौधों की नियमित देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और समय समय पर छिड़काव करने से रोगों और कीटों से बचाव किया जा सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे से हर साल लगभग 100 फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 50 किलोग्राम उत्पादन के बराबर होता है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके आप लोग उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

बोले हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मारवाष्टा 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो बहुत खास है, कई मायनों में खास है। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, जैसे कि एक प्रोसेस के बारे में बात होती है, बट वो केवल इतना नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, कंपनीज के बारे में पता लगता है, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, लाइक फाउंडर्स कौन हैं, कंपनीज के बैकग्राउंड क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है। आपकी हेल्प ये होती है कि आपको ये जानने को मिलता है, जस्ट इन केस अगर आप उस इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं, सो यू हैव दिस अपर हैंड टू गो देयर। तो आज का शो हर बार की तरह बहुत खास होने वाला है, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, बट फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और मेरा सलाम कबूल करिए।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड UK। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड $100 बिलियन, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, $150 बिलियन तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात यानी कि वक्फा मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 यूपीआई ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली यूपीआई के थ्रू की है। यूपीआई जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, यूएई ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहाँ पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद

डिजिटल ट्रांजेक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टैग। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैग होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना?

0: उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे, शो पसंद आ रहा है, इंडस्ट्री को समझ पाए हैं बिना किसी देरी के। आज की कंपनी की बात करते हैं। नाम है इस कंपनी का नियो सॉल्यूशंस। एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जो डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियंस के लिए वो बनाती है। ब्लू कॉलर पेरोल बैंकिंग से लेकर के ग्लोबली जो यूजेबल ट्रेवल मनी सॉल्यूशंस हैं उनमें ये कंपनी डील करती है। और ये जो है ये इसका कोर बिजनेस मॉडल है। सिंपल अगर शब्दों में इसको समझा जाए तो नियो एक ऐसी कंपनी है जो लेवरेज करती है टेक को टू सिंप्लीफाई एवरीडे फाइनेंसेस एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ट्रेडिशनल बैंक्स क्रिएट। दैट इज अ थिंग। 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। एम एक ही लेकर के चली कि जिस तरीके से सैलरीड एम्प्लॉयज अपनी लाइफ जीते हैं, ट्रैवलर्स अपनी लाइफ जीते हैं, वेट करना पड़ता है, सैलरी नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है, उधार मांगना पड़ता है, एक लूप में फंसते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है स्टार्ट करी। रादर देन बिल्डिंग अ बैंक जहाँ पर डेफिनेटली लाइसेंसिंग जरूरत होती है, इन्होंने पार्टनरशिप की विद रेगुलेटेड बैंक्स और टेक को वहाँ पर लगाया। तो बैंक का भी फायदा हुआ कि उनका पैसा और ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, घूम पा रहा है। इस कंपनी को भी फायदा हुआ कि एज अ मीडिएटर ये भी ज्यादा पोल इन कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को और ज्यादा से ज्यादा नाम भी हो रहा है, एट द सेम टाइम लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं। सो एक तरीके से अफोर्डेबल बैंकिंग एक्सपीरियंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी अफोर्डेबल टर्म क्या है इसको आप खुद जाकर के चेक करेंगे तो आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कंपनी ने जो क्लेम किया है मैं वो शब्द आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आई एम नॉट वैलिडेटिंग दिस थिंग। द आइडिया बिहाइंड इट वॉज रियली रियली रियली सिंपल कि जो रियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए। ट्रेडिशनल बैंक में लोन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, पेपर वर्क है, फिजिकल प्रेजेंस है, ब्रांचेज में जाना है, चक्कर काटने हैं, लंच है, बाद में आना, सर्वर डाउन है, बाद में आना, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। टेक आ गया है, उनको सिंप्लीफाई करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया। दिस इज द कोर बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। नाउ उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक जितनी बात आपको बताई है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, आप समझ पाए हैं। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील अलाइव।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे, शो पसंद आ रहा है। कंपनी के बारे में ओवरव्यू आपको दे चुके हैं, आइए आगे लेकर चलते हैं बिना किसी देरी की। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है विनय बागरी, को फाउंडर हैं और सीईओ हैं कंपनी के। 18 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा बैंक और भी काफी सारे बैंक्स के साथ काम कर चुके हैं, तो बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं रिटेल बैंकिंग में, स्ट्रेटजी एंड सैलरी अकाउंट मैनेजमेंट में, ठीक है। मास्टर्स की डिग्री है इनके पास इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम IIM कैलकटा। सेकंड नेम इज वीरेंद्र, जिनका शॉर्ट फॉर्म वीरेन भी पुकारा जाता है, मिस्टर वीरेंद्र बिष्ट, अनदर को फाउंडर एंड CTO ऑफ दिस कंपनी। अच्छे खासे आप कह सकते हो एक प्रोमिनेंट फिगर है इन टेक वर्ल्ड, जाना जाता है इनको। डीप एक्सपीरियंस रखते हैं इन बिल्डिंग कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स, मेक माई ट्रिप, मोबीक्विक, इन जैसी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। तो बेसिकली एक इंसान बैंक को अच्छे से समझता है, फाइनेंस को समझता है, मनी फ्लो को समझता है, कस्टमर को समझता है, ट्रेडिशनल बैंक्स कैसे काम करते हैं उसको समझता है और वो क्या लूप होल्स थे वहाँ पे उनको समझता है। दूसरी तरफ है एक इंसान जो मेक माई ट्रिप, मोबीक्विक ऐसी कंपनीज जिसके साथ जिस इंसान ने काम किया है, जो टेक को समझता है, एक प्लेटफॉर्म को कैसे चलाना होता है, स्मूथ कैसे बनाना होता है, वो सब समझता है। तो दो चीजें जब मिलती हैं तब जाकर ऐसा करता है। और यहां पर क्योंकि हम लोग फिनटेक की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी, एक भाई साहब फाइनेंस लेकर के आ रहे हैं, दूसरे टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ही चीजें काम करती हैं। अब वीरेंद्र की अगर आप बात करेंगे तो कस्टमर प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत मजा आता है, वो उनका सबसे बड़ा USP है। ही वॉज बाय द वे वन ऑफ द अर्ली इंजीनियर्स जिसने बैक एंड बैंकिंग सिस्टम को जो है ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा स्मूथ बनाया था। वीरेन जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये दो लोगों ने मिलकर के प्लेटफॉर्म बनाया जिसको एक सिंपल थॉट के साथ शुरू किया गया कि ट्रेडिशनल बैंक्स में जो लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, उनको फिक्स किया जाए, और वो इन्होंने अच्छे से किया। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की जो हमारी कंपनी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है नियो सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी है जो काफी उम्दा काम कर रही है, 2015 में स्टार्ट हुई। इसकी यूएसपीज की बात करते हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी फर्स्ट बैंकिंग विदाउट बीइंग अ बैंक। मोबाइल एप्लीकेशन है जहां से आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, और बैंक भी नहीं है, मतलब खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। आपके एग्जिस्टिंग कुछ चीजें होंगी जिनके आधार पर प्रोसेस आप कर पाएंगे। जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो 4-5% तक पैसे अपने बचा सकते हैं ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। पेरोल एंड सैलरी अकाउंट्स डिजाइन फॉर ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनके बारे में बहुत कम सोचा गया है, तो यहाँ पर जीरो जो है वो इनका मिनिमम बैलेंस है। अमूमन ऐसा होता है बैंक्स में, अगर आप कोई बैंक की बात हो रही है, अगर आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं या कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट आपको रखना होता है। कहीं पर 10,000 होता है, 15,000 होता है, 5,000 होता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक एंड पोर्टल टू पोर्टल। यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जीरो मिनिमम बैलेंस, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, ईजी ऑन बोर्डिंग। ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर किया है, जिससे आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेंथ बनती है, और जिस एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये लोग यहाँ पर केटर कर रहे हैं उनको अच्छे से केटर कर पा रहे हैं। API ड्रिवन पार्टनरशिप विद बैंक्स, ठीक है, फुल बैंकिंग लाइसेंस जरूरत नहीं है, बट रेगुलेटरी कंप्लायंस सारे यहाँ पर इंटैक्ट आपको नजर आएंगे। तो ये है इस कंपनी की USP, जो इस कंपनी को बैंक ना होते हुए भी बैंक के जितना आप कह सकते हो कि पावर देता है, एट द सेम टाइम इतने सारी सहूलियत देता है और अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड इन 2015। तो मैं बस ये बताने की कोशिश करता हूँ हर बार शो में कि गैप्स हर जगह पर होते हैं, इवन इस मॉडल में भी गैप्स होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको अपना को स्टार्ट करना है, गो एंड चेक दिस आउट, चेक करिए कंपनी क्या कर रही है, और इस कंपनी के लूपहोल्स को ढूंढ के उनको फिक्स करने की अगर आप वहां पर एक पहल करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम द अर्ली इन्वेस्टर। सो या, दैट इज द थिंग। ऑन दिस नोट लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड, फील लाइव।
1: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: मेरा मेरा तेरा प्यार है।
1: वेलकम बैक, मैं सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की जो हमारी कंपनी है वो है नियो सॉल्यूशंस, फिनटेक में डील करती है। 2015 में स्टार्ट हुई और काफी कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है। दो ऐसे लोग जो अलग अलग डोमेन से आते थे लेकिन साथ में मिल गए तो एक नया डोमेन उन्होंने बना दिया, टेक और फाइनेंस, फिनटेक, और उसको अच्छा खासा ऑपरेट कर पा रहे हैं। ऐसे करके ब्रांड्स बिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर अपने शो को मैं आप कंक्लूड करना चाहूंगा। हालांकि की ड्राइवर्स भी हैं कुछ, जैसे कि कस्टमर सेंट्रिक टेक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सेगमेंट फोकस है, ब्लू कलर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ग्लोबल एक्सपेंशन माइंडसेट है, सीरीज सी फंडिंग जो है वो उठा रखी है इन लोगों ने, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे कि नियो भारत, नियो ग्लोबल, नियो बेनिफिट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। ऐसे करके जो उनका टारगेट ग्रुप है उसको अच्छे से समझ पाए हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट हो सकता है, अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो टीजी है, टारगेट ग्रुप है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी आपसे, उन प्रॉब्लम्स को समझना, उनके लिए काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का शो। अब इसी के साथ मैं अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगा। आपको शो कैसा लगा बताइए 8010781078 पे। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: Nalang and you're listening to Radio Manarachana 107.8.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hoon RJ Sagar, aaj hum lekar ke show Voice of Youth. Show bahut special hai, uski bahut sari wajahein bhi hai ki yahan par ye show bahut sari cheezein aapko sikhata hai. I mean, har baar hamare sath yahan par kuch experts hote hain jo apni life ke overall experience se kuch kuch skills hum logon tak pahunchate hain. आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं. यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ. बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता हैं, फोटोग्राफर हैं एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं. वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन. सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का. यतिन, स्वागत है हमारे शो में.
2: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ. ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैन भी, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ. और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है. मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ. और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सिनेरियोस बनाता था, मैं उनके शूट करता था. और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ. तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी. तो ये है यतिन यार.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है. एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर. एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने रन किया यहाँ पर. एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को ये करना चाहिए?
2: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था. तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था. मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की. तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा. मैं तब मजे में कर रहा था. बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया. फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी. तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना. मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा. फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज. और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में. इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पे बहुत अच्छा काम किया है. तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है. तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे. फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए. तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा. इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया और अब अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं. तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने
1: शुरू किया. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं. डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करेंगे, डोमेन के बारे में जाना है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: of this show, your alignment vibe of this musical break, and agar aapke paas koi feedback hai mere liye, yatin ke liye, koi bhi cheez hai jo aapke zehen mein hai aur hum tak pahunchani hai, do make sure 8010781078 is number tak aap pahuncha chuke ho. Phiral apne show ko aage badhayenge. Yatin, mera next question aapse rahega content creation ke bare mein. When you think about a content, a piece of content, to usko kaise aap sochte ho and what is the process, kya jata hai uske piche?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है. तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया, और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है, सबसे पहले आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं, जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी, लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है. धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ, 100 वीडियोस बनाओ,

0: और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
1: बहुत सुंदर,
0: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
1: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्वड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। दिस नॉट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवेम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है वाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है इन प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आपको स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: All right, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरुआत शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जो लेकर आता है उन हस्तियों को जो देश का परचम लहराते हैं विश्व पटल पर। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बियॉन्ड द गेम प्रोग्राम में है श्रेयसी सिंह, एक ऐसा नाम जो ट्रैप शूटिंग में काफी महारत हासिल कर चुका है। और सिर्फ शूटिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे देश की राजनीति की भी, क्योंकि एक ऐसी शूटर हैं जो देश की राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं और बिहार के जमुई से ये MLA भी हैं। और ट्रैप शूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेडल्स ही मेडल्स की बारिश है और अर्जुन अवार्डी भी रह चुकी हैं। सो श्रेयसी सिंह मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज की स्टूडेंट भी हैं। श्रेयसी के बारे में बहुत सारी बातें आज हम जानने वाले हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज समय निकालकर यहाँ पे आ पाई हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है और खिलाड़ी हो और आप पॉलिटिक्स में हो तो समय अपने आप ही नहीं बचता किसी से मिलने का। सो थैंक यू सो मच श्रेयसी सबसे पहले तो आने के लिए रेडियो मानव रचना।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बिकॉज कमिंग टू मानव रचना हमेशा ऐसे लगता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ आने से ऐसे लगता है कि अपने घर अपने मायके वापस आ गए।
0: क्या बात है,
1: तो नॉट दैट आई एम मैरिड बट स्टिल इट फील्स लाइक होम।
0: क्या बात है, मतलब मायके में वापस आ गई हैं। और अर्जुन अवार्डी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, सभी की झड़ी जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। सो श्रेयसी सबसे पहले तो मैं आपसे, बियॉन्ड द गेम हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें हम बहुत से खिलाड़ियों से बातचीत कर चुके हैं, आज आपका आना हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे आपने कहा घर वापसी जैसी फीलिंग आती है, हमारे लिए भी ऐसा है कि हमारे ही अपने जो बच्चे होते हैं ना मानव रचना के, जब वो आते हैं तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है। सो सबसे पहला सवाल आपसे यही, शूटिंग की शुरुआत कैसे हुई? आपकी फैमिली में शूटिंग थी ये तो मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि फैमिली वाली चीज जो है वो बच्चे एक्सेप्ट करें, खासतौर पर से आज के टाइम।
1: डेफिनेटली जिस तरह से आपने बोला, हमारे पिताजी नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनसे पहले हमारे ग्रैंडफादर कुमार सुरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे, तो निशानेबाजी से एक पुराना संबंध था, एक जुड़ाव था, क्योंकि बचपन से निशानेबाजों के साथ और उस खेल को देखते हुए बड़े हुए थे, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक लगाव भी था खेल के साथ। लेकिन हमेशा हमारे फैमिली ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया,

0: वो मुझे याद है जब राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 के ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतकर भारत वापस लौटे थे, तो जिस तरह का जुनून उनको देख के भारतवासियों के मन में दिल में था, उस जुनून को देखते हुए मेरा मन किया कि मैं भी निशानेबाजी करूं लेकिन एज एन एथलीट, नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन
1: साइड।
0: तो वहां से एक लंबी सफर की शुरुआत हुई।
1: और उस समय आप कितनी उम्र की थी, कब से शुरुआत करी?
0: 16 साल की
1: थी। यानी ऐसा नहीं है जैसे हम बाकी खेलों में देखते हैं कि 8-9 साल से 6 साल से बच्चों को प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं, शूटिंग आप लेटर एज में?
0: निशानेबाजी में लोग कहते हैं कि क्योंकि खासतौर से शॉटगन शूटिंग जिसमें ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट इवेंट्स आते हैं, तो सबका ये मानना है, कोचेस का और ऑफिशियल्स का, कि जब तक 12 वर्षीय नहीं होते तब तक वो मसल डेवलपमेंट नहीं होती जिसकी जरूरत होती है, बिकॉज शॉटगन इज हैवी, 12 बोर बंदूक से हम चलाते हैं और उसका रिकॉयल बहुत होता है, तो मसल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा और पहले शुरू कर लेती तो, क्योंकि इतना जुनून है निशानेबाजी के लिए आज भी दिल में कि उसको और लंबा मैं अपने करियर को चला सकती थी, बट मैं तो यही कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए।
1: बिल्कुल। और 2018-2014 कॉमनवेल्थ गेम्स कमाल के रहे, मेडल्स मिले, फिर उसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी मिला आपको। तो ये सब करने के बाद आप ओलंपिक्स भी खेली
0: जी,
1: तो इतना सब कुछ करने के साथ साथ ये राजनीति का टाइम कैसे मिला? क्योंकि राजनीति की बात अगर मैं करूं तो जो लोग राजनीति में जाते हैं वो बाकी किसी चीज के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगी। पहली बात, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास वो जुनून, वो पैशन है कुछ भी चीज परस्यू करने के लिए, और खास तौर से ऐसी चीज जिसमें आप बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस जज्बे के साथ आप करना चाहते हैं, तो आप रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भले ही रात में आप 4 घंटे की नींद लें, विच इज नॉट हेल्दी, बट भले ही आप 4 घंटे ज्यादा ट्रैवल कर लें, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन अगर वो जज्बा है तो रास्ता बन के निकल के आ जाता है। दूसरी बात, निशानेबाजी से राजनीति में आने का जो ये निर्णय लिया था मैंने, मतलब कोई शॉकिंग या कोई सरप्राइजिंग निर्णय नहीं था। मैं एक बहुत कम उम्र से ये जानती थी और ये समझती थी कि मुझे गंभीरता के साथ राजनीति में आना है, और इसकी चर्चा मैंने अपने पिताजी से भी एक बहुत कम उम्र में की थी। हालांकि उतनी समझदारी, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जुनून इसलिए था क्योंकि मैंने पिताजी को देखा था कि किस तरह से वो राजनीति करते थे और क्या उनकी फैन फॉलोइंग थी, और जो उनके आदर्श थे, जो उनके मोरल्स थे, जो उनकी लर्निंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स थी, उन सिद्धांतों पर मैं भी चलना चाहती थी। तो 2000, लेकिन हाँ, पापा ने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि शशि, राजनीति को एक प्रोफेशन समझ के कभी उसमें मत आना। राजनीति जब भी करना तो सेवा भाव से करना, तभी ईमानदारी से कर पाओगी। वरना राजनीति जब तुम्हें लगेगा कि राजनीति तुम्हारा जॉब है और तब तुम उस जॉब की तरह देखने लगोगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो सेटबैक्स आने लगेंगे और ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल।
0: ईमानदार सिर्फ मॉनेटरी वेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ईमानदार मतलब खुद से, एक ईमानदारी से, लगन से आदमी जो काम करता है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर रही हूँ। तो पापा ने हमेशा बोला था कि अपने जिंदगी में कुछ बन जाना, उसके बाद राजनीति में आना, ताकि वो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं कुछ अचीव करके राजनीति में सेवा भाव के साथ आ रही हूँ। 2018 में अर्जुना अवार्ड मिला, 2019 में कुछ नेताओं की मंशा थी कि मैं राजनीति में, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन मेरा उस वक्त का डिसीजन था कि मुझे तैयारी करके ओलंपिक गेम्स तक जाना है
1: जी।
0: तो अनफॉर्चुनेटली 2020 के ओलंपिक गेम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन भी हो गए, और उसी साल बिहार का विधानसभा का चुनाव भी था, कोविड भी आया। तो कोविड में हर किसी के तरह हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से ये बात बिहार के बच्चों से, बिहार के युवाओं से ये निकल के आया कि दीदी आप भी राजनीति में आइए, और तब कहीं ना कहीं लगा कि एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं निशानेबाजी के की करते करते, और अब शायद बिहार को मेरी जरूरत है कि एक अच्छा प्रतिनिधि बन के दिखाए, जन प्रतिनिधि बन के दिखाए। तो उस तौर से हम राजनीति में आए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इनकी भाषा से ही पता लग गया होगा कि हम बिहार की राजनीति में आए वाली जो ये भाषा होती है बहुत प्यारी भाषा होती है। जो लोग बिहार और यूपी से ताल्लुक रखते हैं वो इसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्रेयसी, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन जब आपने शूटिंग शुरू की तो शुरुआती दौर में कोई चैलेंजेस नजर आए, कोई दिक्कतें नजर आई? क्योंकि जब बच्चा स्कूल में होता है 16-17 साल का, अभी बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि यार ये शौकिया चीज ली थी, अब कहीं प्रेशर तो नहीं बन रहा है। ये होता है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ। तो ऐसा कोई प्रेशर के टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं, पढ़ना भी है, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, कॉलेज भी ढूंढना है, करना है आगे सारी चीजें?
0: आई थिंक एक खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को क्योंकि लेकर आगे बढ़ना था, मतलब हर दिन वो चुनौती लगता था। हर दिन ही एक नया संघर्ष होता था कि कहीं ट्रेनिंग भी, और एक तो शॉटगन ऐसा स्पोर्ट है जो आप रात को शाम को नहीं खेल सकते,
1: आपको
0: एग्जैक्टली आउटडोर स्पोर्ट है और रोशनी में खेलना है। तो और वही टाइम स्कूल और कॉलेजेस का भी होता है, तो वो चैलेंज हमेशा था। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम सो ग्रेटफुल to my school, to my college and to Manav Rachna, because everywhere that I went I found teachers, I found faculty members जो हमेशा उस मेरे उस संघर्ष का हिस्सा बन के मेरे संघर्ष को समझ पाते थे। और मुझे लगता है कि गुरु वही सही है जो, चाहे वो जिस भी फील्ड का गुरु हो। आज हम लोग किसी प्रोफेशनल सेटअप में भी जाते तो एक मेंटोर जरूर रहता है। तो कोई भी गुरु किसी भी फील्ड में हो, अगर वो अपने शिष्य का संघर्ष समझ पाए और उस संघर्ष में उसका साथ दे पाए तो सच्चा गुरु वही है।
1: बिल्कुल।
0: और वही गुरु मुझे डीपीएसआर के पुरम में भी मिले, मुझे हंसराज कॉलेज में भी मिले और मानव रचना में भी मिले। मेरे हर जिंदगी के पड़ाव में जब मेरी पढ़ाई को निशानेबाजी के साथ लेकर आगे बढ़ना था तो मेरे हर उस गुरु ने मेरा साथ दिया जो मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचा पाए है।
1: बिल्कुल। तो एक अच्छा मेंटर होना लाइफ में ना आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एकदम बदल देता है। सो ये जो प्रैक्टिस आप करती थी, फिर सुबह उठ के करती थी जल्दी जल्दी, या स्कूल से वापस आने के बाद जब बच्चा थक चुका होता है, टीवी देखना चाहता है?
0: स्कूल से आने के बाद कुछ दिन, स्कूल से आने के बाद एकदम हम लोग का स्कूल खत्म होता था अराउंड लंच आवर एंड बहुत कम टाइम होता है टू सन डाउन, व्हिच इज अराउंड 4 o'clock मान लीजिए। तो हम लोग सीधा
1: स्कूल से
0: रेंज पे जाते थे, वहीं पे फ्रॉम आर यूनिफॉर्म वाज लाइक टी शर्ट एंड स्कर्ट,
1: करनी सिंह शूटिंग रेंज पे,
0: हाँ, बट इन दिल्ली पब्लिक आर के पुरम। एंड वहाँ स्कूल से वो स्कर्ट और टी शर्ट में जाते थे लंच खाते हुए गाड़ी में, और शूटिंग रेंज करनी सिंह पे पहुँच के वी यूज्ड टू क्विकली चेंज इनटू आवर ट्रैक सूट और अपना इक्विपमेंट वगैरह तैयार करते थे एंड देन वी वुड ट्रेन। एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि बिकॉज लाइक यू सेड कि इतना धूप से फिर सीधे धूप में प्रेशर है सब कुछ है, आई ऑल्सो फेंटेड एट द रेंज विद द गन इन माई हैंड, सो दैट वॉज अ बिट स्केरी, बट लाइक आई सेड that I was living with that challenge every day. हर दिन एक चुनौती था, but आज अगर मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो लगता है कि शायद वही एक पागलपन सा था, जुनून सा था, कि हर दिन उस संघर्ष को मुझे बहुत मजा आता था। और कभी भी उस चैलेंज को अपने सामने देख के, आज भी जिंदगी में कोई भी चैलेंज होता है तो कभी भी मैं हदस्ती नहीं हूँ, निराश नहीं होती, लेकिन उस चैलेंज को देख के लगता है कि हाँ अब इससे कैसे पार हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और एक तरीके से जिंदगी का, और मुझे ये निशानेबाजी ने या मेरी खेल की स्पर्धा ने मुझे आज ये जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया है।
1: बिल्कुल।
0: कि जब सामने कोई चुनौती आए तो उससे हदसना या निराश नहीं होना, जीत और हार का फैसला बाद में होगा, लेकिन जब चुनौती आए तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, और किस तरह से उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसको अप्रोच करा जाए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये पॉसिबल हो पाता है कि आप अपने खेल में भी आगे रहें और राजनीति में भी आगे रहें और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलें, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें प्रेशर बहुत होता है।
0: जी।
1: आप खेल में जा रहे हैं, ओलंपिक्स 4 सालों में एक बार आता है, खेलों का महाकुंभ है, जब आप वहां जाते हैं तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, वो एक आम इंसान शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, हजारों जगहों से लोग आपको देख रहे हैं और अनगिनत कैमरास लगे हुए हैं आपके एक एक शॉट पर, सबकी नजर रहती है, और ऐसे में कितना प्रेशर फील होता है ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी बातें या आपकी बातों को जानकर लोग समझेंगे कि कितना प्रेशर होता है। आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में, क्योंकि वहां पर तो मेडल्स की बारिश हुई, लेकिन ओलंपिक्स में एक अलग प्रेशर के साथ जब आप पहुंची तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगी
0: जी।
1: तो कॉमनवेल्थ से शुरू करते हैं और फिर ओलंपिक्स पे आते हैं और फिर अगले ओलंपिक्स की भी बात करते हैं।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए मेरे लिए राष्ट्रमंडल खेलों पर विजय होना सिर्फ मेरा व्यक्तिगत सपना नहीं, लेकिन मेरे पिताजी से किया हुआ एक वादा था। और क्योंकि एक कम उम्र में मैंने उन्हें खोया था, और जो लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी वो भी राष्ट्रमंडल खेलों में एक अच्छे प्रदर्शन को लेकर हुई थी। तो निश्चित रूप से उस जीत को मैंने इमोशनली अपनी ज़िंदगी से जोड़ा हुआ था। और वो कहावत है ना कि हम तो अकेले चल पड़े थे, पलट के जब देखा तो पूरा का पूरा ज़माना साथ था। और उसी सफ़र को जब शुरू किया था निशानेबाजी में, अच्छा प्रदर्शन किया, तो लोगों के साथ साथ सबसे पहले एक्सपेक्टेशन उम्मीदें बढ़ती हैं अपने माता पिता की, तो हमारे पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, उनको भी लगा कि नहीं श्रेयसी अच्छा खेल रही है, आगे खेल के जीत सकती है, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जीत सकती है। तो उनसे मेरी आखिरी बात वही हुई थी, एंड 2010 में वो गुजर गए
1: जी।
0: और एक 8 साल का लंबा संघर्ष के बाद हमने स्वर्ण पदक जीता था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उस चीज़ को अगर मैं उस सफ़र की बात करती हूँ तो प्रेशर उतना महसूस नहीं हो रहा था जितना, या प्रेशर झेलने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अपने पिता को किए गए वादे का जो संकल्प लिया था वो उस प्रेशर से कहीं ज़्यादा ऊंचा था
1: बड़ा था।
0: और एक सफ़र जो एक बेटी और पिता के सपने से शुरू हुआ, उस 8 साल के सफ़र में बिहार के बहुत लोग, भारत के बहुत लोग उस सपने को से जुड़ चुके थे। तो जब इतने सारे लोग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकली, लेकिन जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो जितना भी प्रेशर हो वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाता है, वो बट जाता है सब।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओलंपिक गेम्स तक जब पहुंचे तो एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, लेकिन मेरा पहला ओलंपिक गेम्स था। और जैसा आपने कहा, शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि किस तरह का प्रेशर होता है। मुझे आज भी याद है, मैं शायद इस उदाहरण से लोगों को समझा पाऊँ कि कितना प्रेशर होता है। जब सुबह से उठते थे तो रात के 9-9:30 बजे तक का एकदम शेड्यूल बना रहता था,
1: टाइट शेड्यूल होता है,
0: टाइट शेड्यूल रहता था, और उसी में रिक्रिएशनल टाइम भी रहता था। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कमरे में ना, हम वैसे खिलाड़ी नहीं थे कि अपने आप को ही कमरे में बंद कर लें और किसी से बातचीत नहीं करें, तो रिक्रिएशनल टाइम हो, ट्रेनिंग टाइम हो, कोच के साथ कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो, वो सब चीज़ का प्लान बंधा हुआ था। सुबह से उठ के मतलब वार्म अप हो, शाम आके वर्कआउट करना है, रेंज कितनी बंदूक चलाने, कारतूस चलाने, क्या क्या करना, सबका बना हुआ था। अब 9:30 बजे था कि अब सोना है। अब नेचुरली आप एक पेन पेपर को डायरी पे लेके लिख सकते थे, दिस इज व्हेन योर नाइट टाइम और योर स्लीप टाइम स्टार्ट्स। लेकिन रात को जब आप 9:30 बजे उस बिस्तर पे लेटते थे, लाइट ऑफ कर देते थे, तो उस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ ख्याल के अलावा और कुछ नहीं आता।
1: बिल्कुल।
0: अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ खेल से जुड़े हुए, कुछ ओलंपिक से जुड़े हुए, कुछ माँ से जुड़े हुए, कुछ राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन वो ख्याल बहुत क्राउड कर देते थे। तो दिमाग एकदम जैसे टेबल टेनिस का कोई पिंग पोंग टेबल होता है ना, टक टक टक टक, टक, चल टक, टक और दिमाग वैसे चलता रहता था। और उसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया।
1: हाँ।
0: कि हाउ डू यू टीच योर सेल्फ टू स्लीप। नॉर्मली लोग इतना दिन भर थक जाते हैं, सो जाते हैं, किसी ने सिखाया ही नहीं कि भाई सोते कैसे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ी कठिनाई मेरे लिए उस दौरान वो थी कि शाम को जब, रात को जब कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, तब उस खाली दिमाग को शांत करके सोए कैसे,
1: क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है पूरे दिन में। और
0: पेरिस ओलंपिक गेम्स में आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं मीडिया की तरफ से कि खाने में कितनी प्रॉब्लम थी,
1: काफी
0: तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से लेके इतनी बड़ी बड़ी, जो एक सपना है हर खिलाड़ी का सपना होता है कि स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक गेम्स में, तो उस सपने से लेके इतनी छोटी छोटी चीजों तक ध्यान जाता था।
1: बिल्कुल।
0: और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता था मेरे लिए।
1: कोई फैमिली से गया था आपके साथ वहाँ पर?
0: हाँ, मेरे पूरे राजनीतिक और पूरे निशानेबाजी के करियर में हम माई मदर हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी. माई मदर, माई सिस्टर एंड माई मासी, ये तीन महिलाओं का साथ,
1: पूरी वुमेन आर्मी जो है इनके साथ लगी रहती है.
0: ये तीनों महिलाओं का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है, मेरे और खास तौर से मेरे निशानेबाजी के करियर में. और मुझे अगर आप समय अलाउ करते हैं तो मैं छोटा सा एक कहानी बताना चाहती हूँ. 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत रोमांचक मोड़ पे आकर गोल्ड मेडल डिसाइड होना था, मेरे और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहे थे गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी थी एमा कॉक्स उनका नाम था, उनके और मेरे बीच में गोल्ड मेडल का टाई शूट होना था, लाइक अ पेनल्टी शूट आउट और यू नो सडन डेथ जिसको बोलते हैं
1: जी,
0: और सिर्फ हम दोनों के बीच में था. तो पूरा स्टेडियम ऑजी ऑजी का नारा लगा रहा था, ताली बज रही थी, ऑफकोर्स होम ग्राउंड एडवांटेज उसी को कहते हैं. और उस वक्त मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े चक्कर में पड़ गए, क्योंकि एक तो फॉरेन लैंड, ऊपर से भारत में अभी तक किसी ने स्वर्ण पदक निशानेबाजी में, खासतौर से शॉटगन की स्पर्धा में नहीं जीता था, तो वो प्रेशर भी था. पिताजी का सपना पूरा करने वाली बात की, करोड़ों बिहारी और भारत के लोग हमारे साथ थे तो उनका भी सपना पूरा करना था. बट वहीं पर बड़ी धीमी बट बड़ी मजबूत आवाज तीन महिलाओं की आई. वो यही तीन महिलाएं थी, मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरी बड़ी बहन. इन तीनों ने बड़ी दमदार आवाज में बोला, भारत माता की, एंड ऑब्वियसली माय सिस्टर वाज लाइक इंडिया, एंड आई रिमेंबर लिसनिंग टू दैट थ्रू माय ईयर मफ्स एंड आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दिस, अब ये कर सकते हैं बिकॉज देयर आर माय पीपल इन द स्टैंड आल्सो. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल दैट यू लव, फॉर देम टू सपोर्ट यू. सबसे ज्यादा देखिए, हर कोई सपोर्ट कर सकता है आपको जिंदगी में किसी भी फील्ड में. सब लोग का सपोर्ट हो सकता है, बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, पीपल दैट यू लव, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता ना, तब तक वो बूस्ट
1: हौसला नहीं मिलता,
0: वो हौसला नहीं मिलता. तो मेरे लिए इन तीनों महिलाओं का मेरी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल रहा है.
1: So, लोगों की लाइफ में होता है, कई बार हमने ये सुना भी है, एक बिहारी सब पर भारी. यहाँ चार बिहारी थे जो सब पर भारी पड़ गए और गोल्ड मेडल आ गया भारत की झोली में. तो श्रेयसी, ये तो हो गई कॉमनवेल्थ की बात, ओलंपिक्स का भी आपने बता दिया, लेकिन क्या आपको वो याद है जब पहली बार आप किसी टूर्नामेंट में गई थी, जब आपने खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो पहला जो टूर्नामेंट होता है ना, वो अमिताभ बच्चन की बात है कि पहली बार सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद वो बार बार होती हैं चीज़ें, अलग हो जाती हैं, वो सेकेंड थर्ड टाइम होती है, लेकिन कोई भी चीज़ पहली बार होती है वो हमेशा आपके दिमाग में घर कर जाती है. वो डिपेंड करता है कि वो अच्छी बातें होती हैं या खराब बातें होती हैं. सो कोई पहला टूर्नामेंट जो आप बताना चाहें.
0: आई थिंक जो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल था, गोल्ड मेडल था, फिनलैंड में जीता था मैंने. और आई रिमेम्बर कि मैं वहाँ गोल्ड मेडल जीत गई, तब तक सब कुछ ठीक था जब तक मैं ऑन फील्ड थी. एकदम सारा प्रेशर, सारा इमोशन, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, ठीक है. और मैं अपना फाइनल शॉट लिया, स्वर्ण पदक जीता, सब लोगों ने हल्ला किया, मैंने बड़े कामली टर्न अराउंड करके सबको वेव किया, थैंक यू किया, अपने कोच से मिलने गए. वहाँ से आने के बाद जब हम लोग अपने रेस्ट एरिया में गए तो हमारे कोच ने हमको फ़ोन ला के दिया दैट इट इज़ योर पेरेंट्स, आपके मदर फादर फ़ोन पर हैं टू कंग्रेचुलेट. एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि मैं, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ अपने माता पिता को कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए. दैट वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एंड ऑल दैट. सो आई वाज सो हैप्पी ओवरवेल्म्ड कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और मेरे आंख से सिर्फ आंसू निकल रहे थे. आफ्टर 5 मिनट्स, 5 या 7 मिनट, जब मेरे पेरेंट्स मुझे कंग्रेचुलेट कर चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो फाइनली उन लोग ने पूछा, अच्छा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इंडिया वापस आ रही हो, क्या खाना पसंद करोगी.
1: माता पिता बस यही बातें पूछते हैं, मम्मी खास तौर पर.
0: आई वाज अ फूडी, सो एंड दे न्यू कि बाहर जाके कोई भी, और 17 अठारह साल के होंगे, तो उस वक्त घर का खाना बहुत याद आता है, स्पेशली ना हम लोग फिनलैंड में बहुत ही छोटे टाउन में थे, वी वर नॉट इन हेलसिंकी कि सब चीजें हैं आसपास, तो घर के खाने की याद आती थी फॉर श्योर, देयर इज नो डिनाइंग दैट. सो दे वर ऑल लाइक जस्ट टू काम माय डाउन, काम मी डाउन, दे वर लाइक अच्छा अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि खाना क्या खाओगी.
1: क्या बात है, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही चीज़ें सोचते हैं और मुझे लगता है छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना वो आपके दिमाग में आपके दिल में घर कर जाती हैं। बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अगर कोई बच्चा फरीदाबाद से दिल्ली भी जा रहा है ना तो माँ उसको फ़ोन करके पूछती है रात को खाने में क्या खाओगे। तो ये पेरेंट्स का बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे बच्चा पास हो चाहे फेल हो चाहे गोल्ड जीते या ना जीते, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहते हैं, तभी वो भगवान भी कहलाए जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: श्रेयसी, आपके फादर के जाने के बाद कहीं ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में वो एक छत जो आपको गाइड कर रही थी, आपको समझा रही थी, आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो कहीं छत चली गई है, कुछ ऐसी फीलिंग आई है आपको? क्योंकि शूटिंग उनका था,

0: आज भी जिंदगी में इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा कि एक 17-18 साल की वर्ष की बेटी का उनसे उनका पिता छीन लिया जाए। तो उस दुख को मुझे लगता है बहुत लोग बोलते थे कि विद टाइम
1: ठीक हो जाएगा,
0: हाँ ठीक हो जाएगा, कम महसूस होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कम महसूस होता है। मैं आज भी अपने पिताजी को उतना ही याद करती हूँ जितना जिस दिन वो गुजरे थे और उनकी याद आई। और लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सबसे बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई थी, उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खोया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फादर और एक मदर का रोल निभाया। और जहां भी अगर मेरी मदर कमजोर पड़ी तो मेरी बड़ी बहन ने वो रोल अदा किया। और इन दोनों के वजह से मुझे जो फादर की कमी बड़े होते हुए लेट टीन इयर्स में या प्रोफेशनल करियर्स में, क्योंकि मैं मात्र 29 साल की थी जब मैंने बिहार विधानसभा लड़ने का निर्णय लिया,
1: बिल्कुल
0: तो कम उम्र में जब ये कठिन फैसले लेने थे, उस वक्त इन दोनों का सपोर्ट भी रहा, इन दोनों की क्रिटिकल थिंकिंग भी रही, इन दोनों की रैशनल थिंकिंग भी रही, और इसलिए मुझे कभी वो कमी महसूस नहीं होने दी। कमी जरूर लगती थी कि पिता नहीं है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने में या कोई भी सफलता को पाने में या कोई भी असफलता को झेलने में कभी भी उनकी कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास दो ऐसे व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष में नहीं जाएंगे, लेकिन दो ऐसे लोग
1: हैं
0: जो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं और जो अपने विवेक के साथ मेरे लिए या मेरे साथ निर्णय लेने में हमेशा खड़े हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसीलिए आज मैं जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाई। मैं घर में छोटी थी तो माँ और बड़ी बहन का साथ जितना रहा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कितना कॉम्प्रोमाइज किया मेरे आगे बढ़ने के लिए, ये शायद इसकी चर्चा मैं खुद नहीं कर सकती, और उन्होंने कभी इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। लेकिन आज क्योंकि एक उम्र पर हम पहुंच गए हैं और देख सकते हैं चीजों को और अच्छे से, तो लगता है कि मेरे आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, उन लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लोग मुझे जानते हैं, चिन्हते हैं, लोग मेरे फैंस हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन को वो ख्याति नहीं मिलती। इसलिए आज आप रेडियो के माध्यम से जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनकी बात हमेशा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ी।
1: बिल्कुल।
0: उन दोनों का भी साथ था, उन दोनों का भी संघर्ष था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वुमेन पावर बहुत खास तौर पर से यहाँ पर दिखती है।
0: ओह एब्सोल्युटली, वी आर चैंपियंस ऑफ वुमेन्स वॉइस, बोथ मी एंड माय सिस्टर, थैंक्स टू आवर मदर। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने की सोच और समझ रखी है, और एक कम उम्र से हम लोग जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिला इस चीज को रखते आए हैं, बोलते आए हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और श्रेयसी शायद नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी मदर से मिली हूँ नेशनल चैंपियनशिप के दौरान, शूटिंग रेंज पे उनसे मुलाकात हुई थी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और मुस्कुराती रहती हैं, बहुत सिंपल छवि की महिला है, मुस्कुराती रहती हैं, और अपनी बेटी को उस दौरान भी मेडल जीतते हुए देख रही थी और तालियां बजा रही थी जब स्टैंड में सब खड़े हुए थे, बिकॉज आई वॉज होस्टिंग दैट सेरेमनी, सो इसलिए मैं उनसे मिली थी। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी कुछ यादें होती हैं, बहुत ताज़ा रहती हैं, तो मेरे जो जहन में आई वो मैंने आपसे शेयर करी। अब बात करते हैं वापस ट्रैप शूटिंग की। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। जब हम शूटिंग की बात करते हैं, जब आपने शुरुआत करी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते, या फिर बाकी खिलाड़ी जो थे वो धीरे धीरे, अभिनव बिंद्रा जीत चुके थे, बाकी खिलाड़ी आ रहे थे, तो ऐसे में आपने काफी जल्दी शुरुआत करी बाकियों के मुकाबले, अगर मैं कहूँ जो आजकल की जनरेशन है। पर अब शूटिंग में बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं
0: जी।
1: मतलब अब पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा 8-9 साल का हो तो फटाफट उसे शूटिंग की ओर भेज दें, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, मेडल्स बहुत आ रहे हैं आज की तारीख में। बट लोग बेसिक्स शायद नहीं जानते कि शूटिंग में जाने से पहले, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैप शूटिंग, जैसे आपने कहा 12 साल से पहले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके शोल्डर्स, आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होते, और उसमें झटका लगता है बहुत तेज, जो आपके पास जो गन होती है बहुत भारी होती है, उसका बैग ही बहुत भारी होता है जब आप लेके चलते हैं। सो क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या गाइड करना चाहेंगी पेरेंट्स और बच्चों दोनों को?
0: देखिए शूटिंग में जिसको, सबसे पहली बात तो जिस बच्चे को रुचि है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, उसी बच्चे को खेल में या निशानेबाजी में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद से रुचि और इंटरेस्ट नहीं होगा ना, माँ बाप के पुश कर

0: करने से नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: आपको टीवी पे लगता है कि बहुत आसान है मेडल जीतना, या बहुत सारे मेडल्स शूटिंग में आ रहे हैं, लेकिन किसी भी एक शूटर से पूछ के देखिए कि उस शूटर ने अपनी जिंदगी में कितना त्याग किया है उस एक पदक को जीतने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: तो सिर्फ हम जीत देखते हुए ये नहीं निर्णय ले सकते कि हम भी अपने बच्चे को चाहते, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन जब तक बच्चे के मन में खुद से नहीं आए तब तक उसको किसी भी फील्ड में पुश नहीं करना चाहिए, मेरे सबसे पहली राय है।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि शॉटगन एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें निश्चित रूप से हमें कभी भी जो मसल डेवलपमेंट जब तक पूरा नहीं होता है, जो 11-12 वर्षीय ही होता है, उससे पहले नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज एट द एक्सपेंस ऑफ योर फिजिकल हेल्थ।
1: बिल्कुल,
0: तो उस फिजियोलॉजी को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, उस साइंस को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, और जब डेवलप हो जाए बच्चा उस तरीके से, मसल उतना डेवलप हो जाए, तभी उस बच्चे को इस खेल में आना चाहिए। और मुझे लगता है तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्योंकि शॉटगन जो हम चलाते हैं वो 12 बोर होती है हिंदी में हम बोलते हैं, एंड इट्स अ वेरी इट्स अ डेंजरस वेपन, इट शुड नॉट बी टेकन ईजी। तो जिस भी निशानेबाज को निशानेबाजी में आनी है, सबसे पहली चीज एक बंदूक को कैसे हैंडल करो,
1: बिल्कुल
0: ये सीखना जरूरी है। बंदूक को चलाने से पहले बंदूक की सेफ्टी को सीखना ज्यादा जरूरी है। एंड दीज आर द थ्री सजेशंस दैट आई कैन गिव फ्रॉम माय साइड।
1: बिल्कुल, और श्रेयस की एक और चीज है, जो ये जो ट्रैप होता है, ये थोड़ा महंगा स्पोर्ट है। बहुत सारे लोग जब कभी बात करते हैं या हम रेडियो पे कभी किसी खिलाड़ी से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि ट्रेनिंग कैसे लें, गन्स कितने की होंगी, कितना खर्चा हो, क्योंकि शूटिंग अपने आप में एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो रहा है शुरू से। सो ये कैसे मैनेज करें, क्या इसमें जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो बहुत सोचता है जाने से पहले ऐसे खेलों के बारे में, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
0: बिल्कुल, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, महंगाई इस कारण भी है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं वो भारत में नहीं बनता है, चाहे हम क्ले टारगेट्स की बात करें, चाहे हम एम्यूनिशन की बात करें, या हमारी 12 बोर बंदूक के बारे में बात करें, तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो निश्चित रूप से उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और सेफ्टी मेजर्स होते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो नेशनल खेलता है, जो नेशनल रेनाउंड शूटर रहता है, वो साल में एक ही बंदूक इंपोर्ट कर सकता है, और उसके बाद भी वो अपने लाइसेंस पे दो ही बंदूक रख सकता है। तो इन सब चीज़ों के वजह से, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट, गन लॉज आर इम्पोर्टेंट इन आर कंट्री, और उस वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है, और ये अब आपको शायद लगेगा कि मेरे अंदर से एक पॉलिटिशियन बोल रहा है, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैंने इस व्यवस्था को अपने सामने सुधरते हुए और बेहतर होते हुए देखा है। आज की डेट में अगर हम सरकार की बात करें तो अनेकों स्कीम्स के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, बच्चों को खेल में प्रोत्साहन देने के लिए सोशल पॉलिसीज की को चेंज किया जा रहा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंट को इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है, और जब बच्चे एक लेवल पर आ जाते हैं, चाहे भले ही वो स्टेट लेवल हो जाते हैं या नेशनल लेवल हो जाते हैं, तो स्टेट लेवल पर आने पर भी बहुत सारे राज्य भारत में आ, जैसे और बिहार भी उसमें शामिल है, जबकि बच्चे उनको बच्चों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वेदर वो एक स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो, वेदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, काफ़ी जरियों से आज सरकार भी मदद कर रही है खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: और जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते तो उनको प्रोत्साहन राशि के, आज तो प्रोत्साहन राशि भी बढ़ गई है,
1: काफी बढ़ गई।
0: आपने देखा कि गोल्ड मेडल अब ओलंपिक्स में अप्लाई हो तो आपको 7 करोड़ तक केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, उसी तरीके से स्टेट्स
1: भी अपने आगे बढ़। बिल्कुल,
0: लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके सिर्फ वो एक राशि की बात नहीं है, उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है, और वो चाहे स्टेट लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, या मतलब एमएनसीज के साथ हो, स्पोर्ट्स सेक्टर्स में हो, आजकल वो जॉब अपॉर्चुनिटीज और सेक्टर्स भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब की जो मानसिकता है वो अब धीरे धीरे बदलते जा रही है, और इसमें सरकार और समाज दोनों का साथ है। समाज इसलिए भी मैं बोलूंगी क्योंकि आज जैसे हम मानव रचना की ही बात करते हैं, तो मानव रचना ने भी अपना एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाया।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें बच्चों को कम राशि पर खेलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है,
1: वो फैसिलिटीज मिलना बहुत
0: फैसिलिटी मिल रही है, जिससे कि बच्चे सिर्फ फिर स्कूल कॉलेज तक खेल के रुक नहीं रहे, वो भी आगे जाके स्टेट और नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। मैं खुद मानव रचना की एक शिष्य रही हूँ, निशानेबाजी का के अकेडमी से मैंने भी यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है, तो निश्चित रूप से जब समाज और सरकार आके किसी भी एक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रूप से सामने आता है, और आज भारत एक जीता जागता उदाहरण है खेल की स्पर्धा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ एक मेडल के लिए तरसता भारत, आज बहुत से मेडल आ रहे हैं और आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा मेडल आएंगे। आगे लॉस एंजलिस की क्या तैयारी चल रही है?
0: लॉस एंजलिस से पहले आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट, हमें बात कर लेनी चाहिए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव।
1: बिल्कुल, ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप बीजेपी से हैं
0: जी,
1: और बहुत छोटी उम्र में राजनीति को भी ज्वाइन कर लिया आपने, और क्या आपको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप खेलों से ताल्लुक रखती हैं तो खेल मंत्री भी बन सकती हैं?
0: देखिए, हमने बताया अपने फादर के बारे में, कभी भी हम राजनीति में किसी पद के लिए नहीं आए।
1: नहीं, पर एक खिलाड़ी को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो ग्राउंड लेवल से समझता है चीजें।
0: ये निर्णय मेरा और आपका नहीं हो सकता है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और ये निर्णय मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप जब मेरे विवेक का मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिस पद पर चाहेंगे, आप कर सकते हैं। मेरा राजनीति से सिर्फ इतना ताल्लुकात है कि मैं जिस विधानसभा या जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं वहां ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करके दिखा सकूं, वहां पर जात नहीं बल्कि जमात की राजनीति करके दिखा सकूं, ये मेरा संकल्प है और ये मेरे सिद्धांत है। मुझे विरासत में ना तो निशानेबाजी मिली, क्योंकि निशानेबाजी में भी पापा और बाबा साहब एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर थे, और मेरे फादर क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी थे, तो लोगों को लगता है कि मुझे विरासत में राजनीति और निशानेबाजी में। मैं आज आपके रेडियो चैनल के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहूंगी कि मुझे विरासत में सिर्फ और सिर्फ संस्कार मिले थे, इन संस्कार को लेकर मैं आगे कैसे बढ़ी, किस निर्णय का और किस संघर्ष का सामना मुझे करना पड़ा, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है।
1: बिल्कुल,
0: और सिद्धांतों और संस्कारों को लेकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आने वाले समय में किस पद पे मुझे बैठाया जाएगा, किस पद तक मैं पहुंच पाऊंगी, और ये जनता, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, जनता वोट करती है। आज के युग में आप किसी का हाथ उठाकर किसी बटन पे नहीं दबा सकते, उस 2x2 के कमरे में जाकर व्यक्ति कौन सा किस प्रतिनिधि को या किस पार्टी को बटन दबाता है ये आप कभी नहीं जान पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो निश्चित रूप से बिहार की जनता चाहेगी, उनका प्यार और आशीर्वाद रहेगा, तो बहुत से पद आएंगे जाएंगे जिंदगी में, लेकिन जिस सेवा और ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आज के समय में जम्मू और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है।
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया रहा जो बातचीत इन्होंने करी है, और एक महिला खेलों में भी है, राजनीति में भी है, और जी जान से सेवा कर रही है। इस छोटी उम्र में अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आगे जाके तो पता नहीं क्या ही होगा। सो ये तो बात हो गई राजनीति की, और कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में हमें बताना चाहेंगी, क्या खास रहा आपके कॉलेज के दौरान जब आप हंसराज कॉलेज में थी या जब आप मानव रचना में भी थी, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स वालों को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते हैं।
0: दोनों कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक अलग ही लाइफस्टाइल है।
1: बिल्कुल,
0: कॉलेज का लाइफस्टाइल तो सच मानिए तो मैं जी ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग जहाँ भी स्पोर्ट्स वाले मिल जाते थे तो वो स्पोर्ट्स की चर्चा होती थी, वो ऑन फील्ड प्रैक्टिसेस की बात होती थी, तो आई डोंट थिंक दैट एक कन्वेंशनल कॉलेज लाइफ हम जिए हैं, क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज, वो कैफेटेरिया में गप और वो चाय पे चर्चा नहीं कर पाए,
1: वो टाइम ही नहीं मिला।
0: और एक एथलीट होने के नाते हमारा भी कर्तव्य था कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी, तो जब बच्चे रात में स्नीक आउट करके अपने बार्स या क्लब्स जाते थे
1: या फिल्म देखने जाते थे
0: तो हम लोग, और एंड आई एम टॉकिंग फॉर मोस्ट एथलीट्स, हम लोग लिटरली ये बात करते थे कि नहीं यार, सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाएं या 5 बजे का अलार्म लगाएं ताकि सही टाइम पे फील्ड पहुंच पाए, तो वो ऑप्शन नहीं था अपने पास। लेकिन जब कॉलेज में, जो मैंने पहले भी बात कही उसी को मैं दोहराती हूँ कि कॉलेज में जब तक सही गुरु का साथ नहीं मिलेगा तब तक खिलाड़ी को खेल को आगे बढ़ाना और पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता
1: बिल्कुल,
0: है बिल्कुल। तो मुझे मानव रचना में उन प्रोफेसर्स का साथ पड़ा। हमारे कैंपस में एक अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के आगे बढ़ के एक नेस्कैफे का कैफे है। उस नेस्कैफे कैफे पर बहुत सारी यादें हैं। कॉम्पिटिशन खराब हुआ तो टीचर्स वहाँ कॉफी पिलाने ले गए, एग्जाम खराब हुआ तो टीचर्स वहाँ कॉफी पिलाने ले गए, थके हुए ट्रेनिंग करके कैंपस आए हैं पढ़ाई करने के लिए, बुक्स लेने के लिए, टीचर्स से कुछ डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ जाके कॉफी, कोल्ड कॉफी स्पेशली वहाँ जाके पी है। तो आई थिंक वो गोइंग टू दैट नेस्कैफे कैफे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ मानव रचना फॉर मी।
1: बिल्कुल, ऐसे प्रोफेसर सबको मिले जो बात बात पे कॉफी पिलाने ले जाए, पर उसके लिए आपको ऐसा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा।
0: आई थिंक सो, या
1: सो श्रेयसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें ऐसी जो आपने अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर करी और स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में हमसे शेयर करी, बहुत मज़ा आया बातचीत करके। और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले बिहार चुनावों के लिए भी, क्योंकि ये जो आप कोशिश कर रही हैं ये कोशिश एक नई जनरेशन ही कर सकती है। खेलों में तो आगे बढ़ गई हैं लेकिन उस धरातल पर जाकर काम करना, जीरो से उठकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जनता के सिलेक्शन के साथ आना ये बहुत कमाल की बात है। और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही प्रतिनिधित्व करेंगी, अपने परिवार की जो संस्कार आपने लिए हैं उनको आगे लेकर जाएंगी और सेवा भाव रखेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। आज वाकई में जो मैं हम लोग ने बात शुरुआत की थी कि ये मायके की तरह है मानव रचना हमारे लिए, वाकई में आज इतनी पुरानी यादें ताज़ा हुई है कि मानव रचना वापस ऐसा लग रहा है कि घर आ गए। एंड पूरा दिन कैंपस में गुजारे, लोगों से बात की, बच्चों से बात की, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, कुछ अपने जमुई वाले एक्सेंट में, कुछ भाषा में कुछ बोल के बता दीजिए। चलते
0: नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: जमुई
1: ऐसे
0: में भी ऐसे ही बोलते हैं।
1: So, बहुत लोग कनेक्ट करते होंगे आपसे, खासतौर पर से लड़कियां बहुत कनेक्ट कर पाती होंगी इजीली।
0: युवा युवतियों से एक वो कनेक्ट रहता है, महिलाओं से भी, क्योंकि युवा और महिला, और मैं सिर्फ ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात नहीं कर रही हूँ, युवा और महिला सिर्फ उनसे कनेक्ट कर सकता है जो उनके जैसा दिखे, जो उनके जैसी बात करे, जो उनके हक की, उनके हित की बात करे। तो मेरा युवा और महिलाओं से कनेक्ट अच्छा रहता है। एक बेटी है, क्योंकि उसी वही हमारा घर है, जमुई हमारा घर है, तो एक बेटी है तो उस अधिकार के साथ लोगों के घर में घुस भी सकते हैं, लोगों को से माफ़ी भी मांग सकते हैं, और वही वहाँ की जनता हमसे लड़ भी सकती है, क्योंकि एक बेटी के ऊपर अपना अधिकार सब लोग समझते हैं। इसलिए वो प्यार, और वो प्यार का संबंध है जो वोटों में कन्वर्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल, और आगे भी वो कन्वर्ट होता ही रहेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि मानव रचना का नाम आप जैसे विश्व पटल पर रोशन कर रही हैं, आप भारत की राजनीति में आगे बड़े लेवल पर लोकसभा में भी रिप्रेजेंट करें आगे आने वाले समय में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच श्रेयसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बियॉन्ड द गेम का हिस्सा बनने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो आज के इस बियॉन्ड द गेम में बहुत सी बातें हमने कर ली हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ राजनीति की और संस्कारों की भी। ये जो खास एपिसोड रहा है ये आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में ये सारी बातचीत जा सकती है, सारी जानकारियां जा सकती हैं। और मैं चाहूंगी कि आप भारत की इस बेटी से जुड़ी हुई ये जो सारी बातें हैं जरूर शेयर करें और जरूर सुने और देखें भी। फिलहाल बियॉन्ड द गेम में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dir tana na dir tana dir tana dir tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana na dir na dim tana na dir tana dir tana dir tana.
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
2: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है ये खास कार्यक्रम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं, और साथ के साथ ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो आपको ये बताते हैं कि अभी भी हमारे अंदर मानवता जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी ह्यूमंस हैं। अब इसमें बहुत सारे संग लेकिन ढेर सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। और इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करवाने वाले हैं वो एक बहुत ही डायनेमिक से प्रोफेशनल तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ ह्यूमैनिटी से ओतप्रोत प्रियांश श्रीवास्तव हैं। ये ट्रस्टी हैं PHE ट्रस्ट के, प्रिसिशन हाइड्रोलिक इंजीनियर्स ट्रस्ट। एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रस्ट है जो ढेर सारे मानवता के काम कर रही है। लेकिन इस ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई और प्रिसिशन हाइड्रोलिक इंजीनियर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के ये हेड ऑफ ऑपरेशंस भी हैं और एक ढेर सारे अच्छे कामों को एक सही मायना देने की इंडस्ट्री ये है। तो आज प्रियांश श्रीवास्तव से हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। अ हार्टी वेलकम टू यू प्रियांश।
3: थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रियांश, कार्यक्रम का नाम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, और हम आपके उन प्यारे कदमों की बात करने वाले हैं जो आप मानवता के लिए उठाते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। और इसको आप कर रहे हैं PHE ट्रस्ट के द्वारा, यानी प्रिसिशन हाइड्रोलिक इंजीनियर्स ट्रस्ट के द्वारा। तो मुझे बताइए ना कि ये PHE ट्रस्ट जो है ये एग्जैक्टली कब शुरू हुई, कैसे एग्जिस्टेंस में आई और इसके पीछे की कहानी क्या है?
3: बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे को यहाँ मौका मिला। सेकंड, सो बेसिकली PHE ट्रस्ट वाज स्टार्टेड बाय माय मदर। मेरे जो बाबा थे और जो मेरे नाना थे उनका विजन था और उनकी ब्लेसिंग से ही ये PHE ट्रस्ट चालू हुआ। एंड बेसिकली एक कमिटमेंट थी हमारी कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं सोसाइटी में, हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हाइड्रोलिक्स पर काम करते हैं, बट वी फील कि इतने सारे जगह है सोसाइटी में जहाँ पे हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होते रहा, हमें डिसाइड हुआ, हमें मतलब रियलाइज हुआ कि एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमने खोला था इन 2010, वी स्टार्टेड दैट। बट स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग लखनऊ से हेल करते हैं, हम लोग मतलब ओरिजिनली लखनऊ से है, लखनऊ के पास भी हमारा गाँव है सिधौली करके। तो वहाँ से जब हम धीरे धीरे बढ़े, आगे बढ़े और आज 25 साल हो गए बिजनेस को, और जब इतना ग्रोथ देखा तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी देखी हमने साथ में। तो इसीलिए हमने PHE ट्रस्ट बनाया एंड वो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अराउंड 2015 और 16 में, बट प्रॉपरली उसका काम स्टार्ट किया हमने 2017-18 में। या बस कमिटमेंट टू सोसाइटी हमारा मेन गोल था, जो भी हमारे वैल्यूज हमारे मेंटर्स ने हमको दिए थे, हमारे बाबा और नाना ने हमको दिए थे, उन्हीं को आगे ले जाने के लिए हमने ट्रस्ट खोला था।
2: अब प्रियांश मुझे बताइए कि PHE ट्रस्ट जो है किस प्रकार के इनिशिएटिव्स करती हैं?
3: हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी ग्रोथ में जितनी भी चीजें अपने आसपास देखी, जो भी चुनौतियां देखी, उसके हिसाब से हमने ट्रस्ट में चीजें करना चालू किया। तो वी फोकस ऑन 3 कोर एरियाज आई वुड लाइक टू से। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसे ट्रेनिंग हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गए फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पेरेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि एक यू नो फंड्स की वजह से काफ़ी लोग खुद को पीछे रोक लेते हैं, तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स हो गए। सेकंड फैक्टर जो है वो हेल्थ केयर और वेलनेस, जैसे ऑर्गेनाइजिंग फ्री हेल्थ चेकअप्स हो गया, ब्लड डोनेशन ड्राइव भी हमने ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। Third is community support, that is basically providing financial aid, food distribution, old age homes ko ho gaya, orphanages ko ho gaya. To wo ye teen main cheeze hain jis pe hum kaam karte hain.
2: Priyansh, aap mujhe bataiye ki agar hum baat karte hain scholarships ki, to aapne kaha ki engineers ko khas taur par matlab aap log support karte hain scholarships ke dwara. To ye kis prakar ke students hote hain jinhe aap scholarships ke liye madad karte hain?
3: Okay, to mostly jo students hote hain wo रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के वी आर ऑल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम लखनऊ एज़ आई सेड, और हम लोगों का वहाँ पे ही गांव में ही बहुत सारे लोग थे जो पढ़ना चाहते थे बट पढ़ नहीं चाहते थे. तो शुरुआत वहीं से हुई थी एंड धीरे धीरे पहले स्कूल में स्कॉलरशिप्स गई, फिर उसके बाद कॉलेज एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स गई एंड वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज जो होते हैं छोटे मोटे, जो इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो टेक्निकल डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करना स्टार्ट किया. तो दैट हम डायरेक्टली ही जैसे जो भी बच्चे हैं उनको हम उन कॉलेजेस में भेज सकें एंड उनको एक प्रॉपर डिग्री मिल पाती है, फिर वो आगे जो भी उनके फ्यूचर में हो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड वी यू नो वी मेक श्योर दैट स्कॉलरशिप्स आर नॉट ओनली प्रोवाइडेड जस्ट ऑन द बेस ऑफ मेरिट, मतलब और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई किसी को अगर कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कैसे हम बेस्ट स्कॉलरशिप किसी को किसी चीज़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं. उसके अलावा जैसे नॉट जस्ट स्कॉलरशिप्स फॉर एजुकेशन, वी ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर यू नो लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स हम लोग देते हैं लोगों को जो स्पेशली रूरल एरियाज के होते हैं. तो या दैट्स व्हाट वी डू.
2: प्रियांश, अब आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ और वेलनेस कैंप्स के बारे में. तो आपने बताया कि आपकी जो पीएचई ट्रस्ट है ये अलग अलग किस्म के हेल्थ और वेलनेस कैंप्स लगाती है, तो किस प्रकार करते हैं इसे आप?
3: ओके, तो हेल्थ एंड वेलनेस इज समथिंग जो मेरी मम्मा जी को बहुत प्यारा है because she has a master's in chemistry, biochemistry and psychology, aur unko matlab hamesha se doctor banna tha. So her first initiative was to you know get a tie up with a pharmacy. To humne wo pharmacy ke sath tie up karke medicine distribute karne ka drive kiya tha sabse pehle. Uske baad medical checkups bhi karwaye, eye camps bhi karwaye. So hamare jo aise office mein kafi sare log hain jo hamare factory mein log hain jinki age thodi zyada hai, उनका कैटरैक्ट का काम हो गया या फिर आई का चेकअप हो गया, वो सब भी करवाया एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट. फिर धीरे धीरे हमने ये रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और आई कैंप्स करवाने चालू किए आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में एंड फिर उसके बाद बिकॉज माय मदर नोज अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, वी स्टार्टेड टू वर्क विद डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मतलब ताकि हम लोग बेटर क्वालिटी इंश्योर कर पाए. और फार्मेसी की वजह से हमने जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के ड्राइव कराए थे दे ऑल्सो लोगों का बहुत ही अच्छा उससे रिस्पॉन्स आया एंड वी वर रियली हैप्पी विद दैट. तो या तो ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ लोगों के लिए हमने ये मल्टीपल चीजें करी एंड वी स्टिल डूइंग दैट.
2: भाई एक तरफ तो शिक्षा का दान, विद्या का दान, लेकिन साथ के साथ हेल्थ अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप उसे स्वस्थ करके न सिर्फ एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि वो जीवन खूबसूरती से जिए, लेकिन साथ के साथ इंश्योर कर रहे हैं कि उसका जीवन बिल्कुल सुरक्षित है. तो ये खूबसूरत सा काम किया जा रहा है पीएचई ट्रस्ट द्वारा.
4: सो दोस्तों, प्रियांश श्रीवास्तव एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी है. सो आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज का ये बड़ा प्यारा सा गाना और आप जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: प्रियांश जी, अब जानना चाहेंगे आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आपने बताया कि पीएचई ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया है, तो क्या है ये कहानी?
1: तो मेरे जो पापा जी हैं, उनका नाम है मिस्टर पंकज श्रीवास्तव। ही इज एन हाइड्रोलिक एक्सपर्ट। ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 35 इयर्स नाउ। और उन्होंने हमेशा से ये सोचा है कि जो भी उनकी नॉलेज है वो कैसे दूसरों को बांट सकें। यही आइडिया को लेके उन्होंने 2010 में पीएचई इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक्स स्टार्ट किया था। एंड वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 2000 इंजीनियर्स इन द लास्ट 15 इयर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये सब जो इंजीनियर्स होते हैं ये अलग अलग पार्ट ऑफ सोसाइटी से आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं। वी ऑल्सो गॉट ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो हमारे पास आए हैं और उसके बाद ट्रेनिंग करके दे हैव गॉटन मच बेटर जॉब। तो जो ये इंस्टीट्यूट था ये स्टार्ट इसी चीज से इसी थॉट से किया गया था कि यू नो हम लोग नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, नॉलेज आगे बढ़ा पाए, लोगों को बता सके कि जो भी हम काम करते हैं, जो हाइड्रोलिक्स है, जो टेक्निकल स्टफ है, जो लोगों को लगता है कि अरे इंजीनियर टेक्निकल कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल नहीं होता है। इट वॉज जस्ट टू एक्नॉलेज दैट एंड लेट पीपल नो दैट। एंड जैसे कि हम लोग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद क्योंकि हमारे इतने कनेक्शन हैं, वी ऑल्सो हेल्प पीपल गोइंग टू डिफरेंट कंपनीज, ट्राई टू फाइंड अ जॉब दैट सूट्स देम, जिससे उनकी लोकेशन अगर उनको रिलोकेट ना करना पड़े, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर करके हम उनकी हेल्प करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज की स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी हम काफी टाइम से दे रहे हैं।
0: नहीं देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही नेक काम है। तो एक तरफ मैं ये हमेशा कहती हूँ, जब आप किसी को विद्या देते हैं, साथ के साथ अगर आप उन्हें एम्पावरमेंट भी दे दें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक तरफ तो इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाए कि आने वाली पीढ़ी में ढेर सारे इंजीनियर्स हों और उन्हें ये मौका मिले कि वो अपना हुनर दिखा सके, लेकिन साथ के साथ अगर प्रतिभा के साथ साथ आपने उन्हें ये मौका भी दे दिया कि आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, या फिर कल को आने वाले समय में आप एक जॉब क्रिएटर हो सकते हैं, तो बताइए इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है। कुछ ऐसा ही नेक काम कर रही है PHE ट्रस्ट। प्रियांश, ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ क्योंकि हमारा जीवन ना बहुत प्रेशियस होता है और साथ के साथ हमारा टाइम अब 24 घंटे मिलते हैं, जिसमें कुछ समय तो हमारा मोबाइल फोन ले जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जो हमारी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। अगर हम अपने रोजगार से पैसा नहीं कमाएंगे तो हम धर्म का काम कैसे करेंगे? तो मुझे ये बताइए कि एट अ यंग एज, जब सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि हमें फ्री टाइम मिलते ही हम लोगों के कैचअप करें, अपने दोस्तों के साथ मिंगल करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसे में आप इतने सारे मानवता के काम कैसे कर पाते हैं, कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं आप इसमें?
1: तो जैसे कि आपने एक लाइन कही ना कि जब फ्री टाइम मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ बिताने का मन करता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो समझ जाते हैं चीज। बट अबाउट अगर जैसे बैलेंस करने की बात है, तो आई फील कोलैबोरेशन इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड जैसे पार्टनरशिप्स हो गई, बिकॉज आप हर जगह हर वक्त नहीं रह सकते हो, लेकिन काम कभी रुकना नहीं चाहिए। भले ही वो आपके जो भी ट्रस्ट का काम हो, भले वो आपके ऑफिस का काम हो, भले वो आपके घर का काम हो, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए यू नीड टू पार्टनर विद पीपल। एक ट्रस्ट आपको उनमें भी दिखाना चाहिए कि हाँ, जो अगर कोई काम आपके साथ कर रहा है तो वो करेगा, सही से करेगा। यू डोंट नीड टू गो एंड माइक्रो मैनेज इट। एंड डेलीगेशन, जैसे काम का डेलीगेशन करना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील आई एम वेरी लकी कि हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सब बहुत पैशनेट हैं टुवर्ड्स वॉट एवर दे डूइंग, बी इट इन आवर ऑफिस, बी इट मेंबर्स ऑफ आवर ट्रस्ट, एंड एवरीबॉडी जस्ट लव doing or work। तो बस यही सबको साथ लेके सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है।
0: तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम और डेडिकेटेड लोगों के साथ जुड़कर पीएचई ट्रस्ट आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रही है। प्रियांश, जब कभी भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे हम मैनेजमेंट में हो या फिर हम एम्प्लॉई हो, तो हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसमें हमें हमेशा ये बताना होता है कि हमारे फ्यूचर प्लान क्या है, यानी हमारा टारगेट क्या है, आने वाले समय में हम क्या करेंगे। लेकिन आपकी अगर ट्रस्ट के लिए मैं पूछूं, तो क्या लगता है आने वाले समय में मानवता की तरफ बढ़ाते हुए आप और कदमों में क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए?
1: तो इस चीज को लेके काफी डिस्कशन होता है हमारे घर पे, बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हमेशा एक ही चीज निकल के आती है कि हम लोग हमेशा टेक्निकल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड हमने ये डिसाइड किया है कि धीरे धीरे जाके हम लोग मेडिकल ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, स्पेशली नर्सिंग कोर्सेज हो गए या ऐसे मेडिकल कोर्सेज हो गए जिनके लिए यू डोंट नीड टू यू नो गो प्रॉपर, आपको MBBS करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यू कैन बी पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, लर्न बेसिक मेडिकल स्टाफ ना, तो वो उसमें हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ऑफर मोर स्कॉलरशिप्स टू पीपल। अभी हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्कॉलरशिप्स वी आर ऑफरिंग। वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, गो टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और फाइनली वी वॉन्ट टू सेट अप अ डेडिकेटेड हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर। तो एक विजन हमारा है कि धीरे धीरे ये एक ऐसा ट्रस्ट बन जाए जिसमें यू नो सेल्फ सस्टेन खुद को कर पाए, लोगों को सपोर्ट कर पाए, लोगों को स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए, तो धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड हो जाए और उसके थ्रू ये ट्रस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहे।
0: और भाई मैं तो यही चाहूंगी कि ये अपने ऐसे खूबसूरत कदम आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत सारे लोग फिलहाल सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के जरिए। अगर आपको लगता है कि इन सपनों को आप और आगे एम्पलीफाई कर सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा और इसी प्रकार के मानवता के कदम यूं ही उठाते रहिएगा। और अब प्रियांश आपसे बड़ा अहम सवाल, ढेर सारे सवाल आपने जवाब दिए लेकिन अब बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आप में अपनी कुछ छवि देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाते जाते उन सभी के लिए क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: ओके, तो बड़ा गुड क्वेश्चन है। तो मैसेज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये सीखा है कि कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप बेस्ट होती है। आप हर जगह मैंने बोला नहीं हो सकते, बट अगर आप किसी ऐसे इंसान जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ किसी चीज़ के लिए कोलैबोरेट करते हो या पार्टनरशिप करते हो, तो आपका काम बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड ऑब्वियसली पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बिजनेस लोग करते हैं इसी के लिए करते हैं, बट उसके साथ साथ आई फील इफ यू हैव द मींस टू सपोर्ट पीपल अराउंड यू, यू शुड ऑलवेज डू दैट। सो एट PHP वी ऑल्सो यू नो वी फील कि लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, सब कुछ, सारे जो बस ये एक जरिए हैं लोगों को एम्पावर करने के, एंड वी वॉन्ट टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू दिस। तो बस सबको हम मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी साधन है उससे लोगों को इंकरेज करिए, कंट्रीब्यूट करिए अपने अपने तरीके से, एंड लोगों के साथ कोलैबोरेट करिए, बड़ा सोचिए एंड आगे बढ़ते रहिए।
0: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल मैसेज। इनफैक्ट देखिए भाई, कोलैबोरेशन की बात पर तो मैं टोटली इत्तेफाक रखूंगी प्रियांश से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भगवान ने भी अपना कोलैबोरेशन किया है काम करवाने के लिए। जैसे भगवान ने हर जगह माँ छोड़ दी है, उन्हें पता था भाई हर जगह मैं तो नहीं हो सकता हूँ, तो एक माँ होनी चाहिए जो सारी चीजों का ख्याल रख सके। तो इसी प्रकार से आप भी उनके साथ कोलैबोरेट करें जो शायद आपकी जगह कहीं हो सकते हैं और आपकी मानवता के जितने भी काम है उन्हें एम्पलीफाई कर सकते हैं। जिस भी चीजों में आप महारत रखते हैं उसमें मदद करने की कोशिश करिए और जहां आपको लगता है आप किसी को बढ़ावा दे सकते हैं उस कदम को आगे जरूर बढ़ाइए, पीछे मत खींचिएगा। तहे दिल से धन्यवाद प्रियांश, वंडरफुल मैसेज, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और PHE ट्रस्ट के बारे में इतनी सारी बातें जानकर।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मजा आ गया आपसे बात करके।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। Feel good, feel nice.

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं अर्शी पाफना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। ये मुलाकात बहुत खास इसलिए होती है क्योंकि इस मुलाकात में हम उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं और उनकी सशक्तिकरण की जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं, उनके इस प्यारे से सफर को जानने की कोशिश करते हैं और साथ के साथ अपने लिए ढेर सारे मैसेजेस या अपने लिए बहुत सारी सीख भी डिराइव करते हैं। आज इस कड़ी में हम स्वागत करने वाले हैं डॉक्टर दिव्या कुमार का, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और साथ के साथ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। ये कॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हैं, लेकिन आज हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के कार्यक्रम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। हार्टी वेलकम टू यू मैम।
1: थैंक यू सो मच भावना, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू बी हियर टू बी विथ यू ऑन मानवरचना 107।
0: डॉक्टर दिव्या, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमेन हम सबकी जो डेफिनेशन है महिला सशक्तिकरण की या एम्पावरमेंट की, सबकी डिफरेंट होती है, बिकॉज हर किसी की जिंदगी अलग है और हर किसी की सोच अलग है। सो इफ आई मे आस्क यू, आप मुझे बताइए आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है विच इज डेफिनेटली वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि चाहे मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसे आपने इतना बड़ा मेरा परिचय दे दिया, एक ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, बट आई थिंक सबसे पहले मैं एक औरत हूँ
0: जी।
1: और एक औरत का सशक्त होना हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, इनफैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड इतना जरूरी है, ये मैं महिला होने के बाद ही मुझे ये बात समझ में आती है, ज्यादा समझ में आती है। तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करें तो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक अगर इफ अ वुमेन इज वर्किंग देन शी इज एम्पावर्ड, इफ शी इज सिटिंग एट होम लाइक आवर, जैसे हमारी मॉम या फिर हमारी ग्रैंड मॉम ये होती थी, तो वो एम्पावर्ड नहीं थी। तो एम्पावरमेंट सिर्फ एक्शन से नहीं, थॉट से भी आता है। एंड अगर वुमेन को अपनी एक निश है, उसका उस निश को कार्व करने में अगर सोसाइटी हेल्प कर रही है, बी इट अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग वुमेन, देन आई विल टेल, एंड द वुमेन इज फ्री टू वर्क लाइक दैट। If the woman wants to be a housewife, let her be that.
0: जी.
1: That is also like women empowerment, respecting her sentiments, her thought process, and what she really wants to be deep down in her heart. मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई एम एम्पावर्ड। आप RG हो, आप एम्पावर्ड हो, बट साथ में अगर कोई एक हाउस वाइफ एंड शी वॉन्ट्स टू बी ए फुल ऑन लाइक टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेज द होल नीड्स ऑफ एवरी वन, लाइक निटी एवरीथिंग, बच्चों को वो बड़ा करने में कॉन्ट्रीब्यूट करिए, तो शी इज ऑल्सो एम्पावर्ड। तो थिंग इज दैट कि हमें रिस्पेक्ट करना है उनके थॉट्स का, उनके नीड्स का, एंड वॉट एवर इज इन देयर हार्ट, सो दैट इज द ट्रू एम्पावरमेंट। बट डेफिनेटली एम्पावरमेंट के लिए मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, दैट इज एडुकेशन। सो एडुकेशन इज द टूल टू बिकम टू एम्पावर आवरसेल्फ, एंड उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो दैट इज वन टूल, वन बेसिक टूल इजिली अवेलेबल। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो वुमेन को पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स लाइक एडुकेशन एंड ऑल। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको एक थॉट प्रोसेस देता है, ऐसे वो चीजें नहीं आ पाती हैं विदाउट एडुकेशन। So that is definitely very important.
0: So भाई सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूँ तो सशक्तिकरण तब आता है जब आप अपनी जिंदगी के decisions खुद ले पाए। फिर वो decision क्या है ये आपका है, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बचपन से लेकर और अपने जीवन के अंत तक अगर आप अपने decisions को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, खुशी से उन्हें निभा पा रहे हैं, तो आप एक सशक्त महिला है। लेकिन परेशानी ये है कि इसके आड़े बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब कभी भी एक महिला कोई डिसीजन लेने की कोशिश करती है, उसके पीछे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। वो इन्फ्लुएंस परिवार हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस समाज हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीजें हो सकती है, हालात हो सकते हैं। सो क्या इन इन्फ्लुएंस से बचकर महिला सशक्त हो सकती है, बस यही इस कार्यक्रम का मेन जज्बा है। सो हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिले और वो अपनी जिंदगी खुशी से जी पाए। तो अगर हम देखें डॉक्टर दिव्या, आज की महिला को सब कहते हैं एम्पावर्ड भी है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास इंडिपेंडेंस है, आज की महिला काम भी करती है, बहुत सारे मुद्दों पर अगर हम देखें तो हम अपने डिसीजंस प्रैक्टिस कर पाते हैं। बट मुझे बताइए कि आज की महिला को भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप तो इतनी सारी महिलाओं से रोज मिलती हैं, कई बार तो एक डिसीजन मुझे ऐसा लगता है जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना या नहीं। कई बार तो ये अधिकार भी उसके पास नहीं होता है, जन्म देने वाली माँ के पास ही अधिकार नहीं है क्या वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि आज की महिला करंट सिनेरियो में देखे तो किस प्रकार के चैलेंजेस से जूझ रही है।
1: चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, एक तो जेंडर डिस्पैरिटी है
0: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी हर लेवल पे है, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, इफ अगर पे वाइज आप बोले जेंडर डिस्पैरिटी, इट्स ऑलवेज देयर एट आवर वर्क प्लेस, हम फील करते हैं ये चीज। दूसरा है कि वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे और भी जेंडर डिस्पैरिटी होता है, बिकॉज अ वुमन हैज टू अचीव मदरहुड ऑल्सो।
0: यस,
1: मदरहुड इज अ टाइम जो वुमेन के लिए तो इट्स बड़ा वेलकमिंग होता है, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज गोइंग टू बिकम अ मदर, बट देन द मोमेंट शी बिकम्स प्रेग्नेंट, ऑल हर कॉलीग्स एंड कॉलीग्स में आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन ऑल्सो, वुमेन टू वुमेन, आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन, सो दे ऑल्सो विल सी हर एज इफ नाउ somebody is not going to work at all and getting her salary like that. तो ये एक disparity definitely है. तो disparity इन चीजों में बहुत ज्यादा है. Gender disparity number one है. Then एक thought की भी disparity है. What I feel when I talk to so many women, like housewives and even working women, those who are teachers, they have also come to me. Like they have been trained, they have been raised in a way, इस तरह से उनको बड़ा किया गया है कि उनको हमेशा अपने आप को पीछे रखना सिखाया गया और उसको वो normal मानती है, उनके लिए वही नॉर्मल है। जैसे मुझे अपने बचपन की यादों में देखूंगी, मैं अपने चारों तरफ की सारी औरतों को देखती थी, तो अगर उन्होंने खाना बनाया सबसे पहले घर के ऑब्वियसली जो मेल्स होते थे उनको मिलता था, देन लास्ट में वो बहुत खुशी के साथ अपना प्लेट लेके बैठेंगे, और उसमें अगर खाना कम पड़ गया तो ये हमेशा एक थॉट आता था कि चलो इतना अच्छा मैंने खाना बना के खत्म हो गया, दे यूज टू फील वेरी हैप्पी, उनको ये नहीं लगता था कि ये चीज मेरे लिए नहीं बची। तो ये एक जो अपब्रिंगिंग है जिसमें जो हम सैक्रिफाइस को बहुत महिमा वंदन किया जाता है, इफ अगर एक औरत है उसने सैक्रिफाइस कर दिया तो वो सफल औरत बन गई, ये माइंडसेट हमें हटाना पड़ेगा, हमें औरत को ये बताना पड़ेगा कि आपको आगे रखना है अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने हैप्पीनेस को, यू हैव टू कीप इट बिफोर एनीवन, बिकॉज क्योंकि वही आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपनी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, रिश्तेदार, व्हाटएवर, उनका ध्यान भी तो आप ही रख रहे हो। आपने अगर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अपने हैप्पीनेस का ध्यान नहीं रखा, तो आप आगे उनका ध्यान नहीं रख पाओगे। तो दे हैव टू पुट देमसेल्फ फर्स्ट, नॉट फॉर ओनली फॉर देमसेल्फ, दैट इज अगेन, वो अगर हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तभी वो बाकी चीजों का ध्यान रख पाएंगे। तो एक माइंडसेट बदलना होगा, मतलब मैं इसको ऐसे पुट करना चाहती हूँ कि विदाउट गिल्ट दे हैव टू लव देमसेल्फ अनअपोलॉजिटिकली, मतलब उसमें कोई गिल्ट नहीं हो रही, मैंने पहले खाना बनाया और खा लिया तो कोई गलत काम नहीं कर लिया।
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये माइंडसेट भी है, ये और ये लेडीज को खुद ही बदलना है
0: जी।
1: जब तभी वो एम्पावर हो पाएंगी, बिकॉज इक्वल मीन्स इक्वल।
0: यस,
1: इट्स नॉट दैट कि आप किसी को आगे रख रहे हो और उससे आगे आपने कुछ कर लिया तो इट्स इट्स अ गिल्ट। उस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। जेंडर एजुकेशन की बात जैसे मैंने बोला कि अब वैसे ही मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी भावना, कि नाउ अडेज जो मैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिन लेडीज से, आई सी कि जेंडर डिस्पैरिटी बहुत हद तक कम हो गया
0: जी।
1: एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि जब बेटे और बेटी को बराबर तरीके से रेज किया जाता है, उनकी स्टडीज को, उनके एजुकेशन को भी उतना ही तवज्जो दी जाती है जितने एक घर में एक मेल चाइल्ड के एडुकेशन को। तो दिस इज समथिंग आई रियली फील गुड अबाउट, एंड आई हैव बीन रियली लकी टू बी बॉर्न इन दोज टाइम एंड रेज्ड अप बाय माय पेरेंट्स, बाय माय सिबलिंग्स, इन अ वे दैट आई नेवर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कुछ जेंडर डिस्पैरिटी कुछ होती है, वो मुझे बाद में पता चला। तो इट वॉज मे बी देवर अहेड ऑफ टाइम्स, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि ये चीज आ गई है, एंड इवन इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा ऑल्सो दे आर रियली लुकिंग फॉर एडुकेशन फॉर देयर गर्ल चाइल्ड ऑल्सो, सो दिस इज वन वेरी वेलकमिंग थिंग आई एम सीइंग। अदरवाइज माइंडसेट की बात है तो वो तो डेफिनेटली धीरे धीरे जाएगा। सो दीज आर द चैलेंजेस विच आई सी, इट इज वेरी कॉमन एंड बट आई डेफिनेटली थिंक विथ पीपल लाइक यू स्प्रेडिंग सो मच ऑफ अवेयरनेस विल डेफिनेटली ओवरकम इट।
0: सो वाकई

0: लोगों के जरिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत होगी। डॉक्टर दिव्या, अब जो एक अहम सवाल, हम हमेशा कहते हैं हम समाज को बदलना है, इस माइंडसेट को बदलना है, पर ये माइंडसेट कहाँ से शुरू होता है? घरों से, परिवारों से, और परिवारों से समाज में, और समाज से देश में, देश से पूरे विश्व में। अगर महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाएं, जिस प्रकार से वो अपना ही माइंडसेट बदल लें और वो ये सोचने लग जाएं कि हम बिल्कुल इक्वल हैं। मान लीजिए कि आप वर्किंग वुमेन हैं, आप घर पर लेट पहुंचती हैं क्योंकि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और आप घर पर खाना नहीं बना पाती हैं। अब आप इस बात का गिल्ट लें, चार लोगों की बात सुने और ये सोचें कि भाई तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या आप ये कहें प्लीज ऑर्डर फूड फॉर योरसेल्फ और मैनेज ऑन योर ओन एंड विदाउट गिल्ट आप आराम से जाएं सोएं। सो अगर ये सोच महिला में आ गई, एक दिन, दो दिन, चार दिन, वो परिवार उसे प्रैक्टिस करेगा और परिवार अगर इस चीज को सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है लोगों की सोच बदलने लग जाएगी। क्योंकि जब घर से बाहर निकलकर जब डिस्कशन होता है तो ऑब्वियसली वो समाज का एक पूरक बन जाता है। कहीं ना कहीं लोग ये महसूस करने लग जाते हैं कि अच्छा, हर घर में यही हो रहा है तो शायद ये जमाना बदल गया है। सो क्या कहती हैं आप कि अगर हम आज महिलाओं को कहें कि वो एक दूसरे की सपोर्ट करें तो क्या हम जमाने को बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं?
1: यस, दैट कैन बी वन बिग स्टेप, वन गुड स्टेप। महिलाओं को तो एक दूसरे का सबसे पहले, दिस इज माय लाइक यू नो फेवरेट टैगलाइन, एंड आई ऑलवेज से वुमेन फॉर वुमेन।
0: यस,
1: सो वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर, नॉट फॉर अ फाइट बट फॉर अ फ्लाइट।
0: यस,
1: सो अगर हम हाथ पकड़ के एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम सारे इकट्ठे उड़ेंगे और फिर हमारा समाज ऊपर जाएगा।
0: Exactly.
1: Like if you educate a girl child, you educate a whole society.
0: Yes.
1: So that should be there. तो हमें ये घर से ही definitely शुरू होता है। और मैं जैसे कहूँगी, जैसे एक नई बहू अपने in-laws के यहाँ जाती है तो पहला step वही होता है कि rather than pulling her down,
0: yes,
1: I think जो in-laws होते हैं उनको उसको उतना comfortable बनाना चाहिए कि वो उसको at home feel करे। So that is definitely to start with.
0: Yes.
1: वो फैमिली का जो सपोर्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली अ गर्ल इज मोर मच मोर कम्फर्टेबल व्हेन शी इज विथ हर पेरेंट्स। बट अगर यही चेंज उसको, यही सारा प्यार या यही कम्फर्ट उसको अपने इन लॉज के यहाँ मिलेगा तो शी विल बी मोर प्रोडक्टिव, शी विल बी मच मोर अ हैप्पियर इंडिविजुअल। और एक हैप्पी इंडिविजुअल ही हैप्पीनेस अपने अराउंड दे सकता है सबको। तो डेफिनेटली, और यही जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्क प्लेस में सेम इट अप्लाइज टू द वर्क प्लेस ऑल्सो। और ये मैंने सबसे ज्यादा देखा है जब बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पीजी स्टूडेंट, आई हैव सीन व्हेनेवर अ डॉक्टर और अ जूनियर रेजिडेंट और समबडी गेट्स मैरिड, देन एवरीवन विल से कि नाउ शी इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ लीव्स। तो उनका नजरिया बदल जाता है, वो नहीं समझते कि हाँ इसकी लाइफ थोड़ी बदल गई है, लेट्स एकोमोडेट विद हर। तो एक दूसरे को एकोमोडेट करना इमोशनली, वर्क वाइज ऑल्सो, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। और जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उड़ेंगे, बिकॉज ये एक किसी एक इंसान की जरूरत नहीं होती, किसी का सिक लीव है उसको कवर कर देना, या किसी के कुछ काम है उसको कवर कर देना, या द मोमेंट अ फीमेल एम्प्लॉय बिकम्स प्रेग्नेंट देन द होल सिचुएशन अराउंड चेंज, बिकॉज दे नाउ दे अंडरस्टैंड दैट शी इज लेस प्रोडक्टिव फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ वुमेन विल सी लाइक दैट, देन मेन विल डेफिनेटली सी लाइक दैट।
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये चीजें तो हमें खुद समझनी, बिकॉज एज अ वुमेन वी कैन अंडरस्टैंड मोर हाउ व्हेन शी इज गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी उसका माइंडसेट क्या है, या उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। बहुत सारे काम होते हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन बैठ के बहुत आराम से कर सकती है। शायद वो, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अपने फील्ड की बात करूँ, शायद शी माइट नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव इन ऑपरेशन थिएटर अ प्रेग्नेंट वुमेन, बट शी माइट बी वेरी मच प्रोडक्टिव इन ओपीडी फॉर ओपीडी वर्क। तो दैट वेज वी कैन लाइक एक्सचेंज एंड वी कैन होल्ड ईच अदर्स हैंड फॉर अ फ्लाइट, as I told you, and then we can fly all fly together. So that is something which I definitely see for women. तो ये तो एक छोटा सा example हो गया जो हमारे profession से related है, लेकिन ऐसे बहुत सारे example होते हैं। जब हम ही एक दूसरे को अगर pull down करेंगे तो फिर कोई दूसरा बंदा तो आके हमें नहीं उठाएगा। So this is definitely we'll have to learn. और once we learn to be strong, जब हमारा अपना bond strong होगा, हम एक दूसरे की स्थिति को, एक दूसरे की मजबूरियों को समझेंगे तो सारी दुनिया समझेगी।
0: तो देखिए, जब हम कहते हैं पुरुष हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं तो वो नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनके जेनेटिक्स अलग हैं। भाई देखिए, वो दूसरा जेंडर है तो उनके सोचने और समझने का नजरिया भी अलग होता है। लेकिन महिलाएं एक दूसरी महिला की बात को बहुत जल्दी समझ सकती है क्योंकि हम कहते हैं वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, और हमें एक दूसरे की बात समझ में आती है। लेकिन अगर महिला एक दूसरी महिला की सपोर्ट में आ जाए, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो घर है, या फिर ये समाज है, तो अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाएं, तो सशक्तिकरण काफी आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल होने की। अगर मैं बात करूं, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ डॉक्टर्स पर खास तौर पर एक अलग किस्म की जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को मोटिवेट करें, एनकरेज करें कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर हम घर के खाने की बात करें तो एक महिला सबसे आखिरी में अपने लिए प्लेट लगाती है, उसी प्रकार हेल्थ का भी काम

0: माता है तो वो सबसे आखिरी में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देती है, पहले उसके लिए उसके परिवार, उसके बच्चे और बाकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पूरे परिवार को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं, बट इस चीज को आज भी बहुत इग्नोर किया जाता है। आज भी ये जो सेंटेंस है बड़ा अंडरमाइंड है और महिलाएं आज भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती।
1: तो इसके लिए देखो हमारा जो ड्राइव है भावना, लाइक वी हैव वी स्टार्ट कहते हैं कैच देम यंग,
0: यस,
1: तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल्स
0: जी।
1: अकॉर्ड इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, एंड जो आपने अभी बताया ये सारी चीजों को ही ध्यान में रख के हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया, सो वी हैव टू कैच देम यंग। सो इन स्कूल्स में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ये टीच करते हैं उनको कि बिकॉज कि मेंस्ट्रुअल सिंपल चीज़ है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन से ही हमारा शुरू होता है या प्यूबर्टल चेंज, क्योंकि ये वो एक टाइम होता है विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल फॉर अ स्मॉल गर्ल टू एंटर लाइक विमेनहुड, जब उनके प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि उनके शरीर में वो सारे चेंजेस जा रहे हैं, मेंटली भी बहुत कुछ चेंज हो रहा होता है बिकॉज लॉट ऑफ हॉर्मोन्स उनका इंटरप्ले होता है और उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, एनर्जी उनमें भरपूर होती है, दे डोंट नो कहाँ उस एनर्जी को लगाए। तो ये हमारा ही दिस इज आवर थिंग वी हैव टू टीच देम कि वो जो एनर्जी है उसको आप सही जगह कैसे आप प्रॉपर अपने गोल को डिसाइड करो और तब उसमें लगाओ। एंड दूसरा है हेल्थ वाइज, बिकॉज फीमेल के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, तो हम स्कूल से ही बताते हैं उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, अबाउट सर्वाइकल HPV वैक्सीनेशन के बारे में, विच गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइक टेकिंग इट इन टू प्रोग्राम्स एंड ऑल, तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। एंड देन कमिंग टू लाइक वी आर गोइंग टू सोसाइटीज ऑल्सो, जहाँ पे हम यंग लेडीज को उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वी टेल देम द इम्पॉर्टेंस कि क्यों उनको अपना चेकअप कराना जरूरी है, बिकॉज फीमेल्स के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं है, एंड प्लस फीमेल फील वेरी शाई, हमारी सोसाइटी अभी उतनी ओपन नहीं हुई है, वी डोंट टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, थैंकफुली लाइक अब ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें खुल के हम बातें और चर्चा कर सकते हैं, बट वंस अपॉन ए टाइम आई रिमेम्बर ये सब सोशल टैबूज होते थे, लाइक ब्रेस्ट हेल्थ, लाइक जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया या इवन सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें लोग बात करने से भी कतराते थे और उसका रिजल्ट ये होता था कि एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा रूप ले लेती थी, जैसे मामूली एक प्री कैंसरस स्टेज में जिस भी चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं और पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं वो कई बार हमें स्टेज 4 में मिलती थी, बिकॉज वुमेन इतनी शाई होती है ना कि वो इन जनरल वो हस्बैंड से भी नहीं डिस्कस करती, दे फील सो शाई, और जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट है कि थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में उनको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, व्हाट इज नॉर्मल, जब ये जानेंगी तभी उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज एबनॉर्मल, अब वो नॉर्मल नहीं रहा, वो एबनॉर्मल में चला गया, दाउ एंड नाउ दे नीड हेल्प। तो ये जागरूकता फैलाना ही हमारा काम है और इसके लिए अकॉर्ड हॉस्पिटल से हम लोग जाते हैं, हमने गाँव में बहुत सारे कैंप्स किए हैं और हमारा एक फाउंडेशन भी है, अकॉर्ड फाउंडेशन भी है, जो दूर दूर तक, जैसे लेह लद्दाख में भी मैं गई, वहाँ पे पूरे एक गांव की औरतों का मैंने पैप बोर्ड जो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और आई थिंक उसी ग्राउंड लेवल पे जाके हमें ये सब करना होगा, क्योंकि ये फैलाना, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल अगेन आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल लिसन टू योर रेडियो एंड दे ऑल विल कम टू नो कि दीज आर द थिंग्स जो उनको ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि मेल्स को भी ये पता हो, बिकॉज कई बार अगर फीमेल शाई होती है तो मेल की भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनसे पूछे, एटलीस्ट एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप साल का जरूर कराएं, कुछ ऑर्गन्स जो हमें नहीं दिखते जिसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत होती है, जैसे ओवरीज हमें बाहर से नहीं दिख सकते, यूट्रस भी हमें नहीं पता चलता, यूट्रस का माउथ हम फिर भी देख सकते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देते हैं, विच यू कैन डू ऑन योर ओन, तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि इफ़ यू नो वॉट इज नॉर्मल देन यू विल बी योर फर्स्ट डॉक्टर, आपको पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल जोन में नहीं हो, अब नॉर्मल में चले गए हो, देन एटलीस्ट आप सबसे पहले डॉक्टर से तो मिलोगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जागरूकता ऑलरेडी हम फैला भी रहे हैं अबाउट हेल्थ हाइजीन, हैंड वॉशिंग, सिंपल चीजें कि कैसे वार्म हो सकता है, एनीमिया के लिए भी हम लोग काफी सजग है क्योंकि एनीमिया बहुत रैम्पेंट इंडिया में, बाहर हीमोग्लोबिन 12 नॉर्मल माना जाता है, हमने अपने आप उसको कट ऑफ 10 कर दिया क्योंकि यहाँ 10 भी नहीं मिलता हमें। तो दैट इज, दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग एंड आई थिंक वी ऑल शुड कॉन्ट्रीब्यूट आवर लिटिल ओन टू द सोसाइटी।
0: भाई देखिए वाकई, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ हम सबकी एक जिम्मेदारी है, बट द पॉइंट इज कि हम उस जिम्मेदारी को सोच भी नहीं रहे हैं, अगर हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले तो भी हमारा पूरा समाज सुधर सकता है। बट यस, जब कभी भी मैं महिलाओं की हेल्थ की बात करती हूँ वो प्राइमरी है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और अक्सर महिलाओं की हेल्थ को एड्रेस पता है कौन करते हैं? बड़ी उम्र में या फिर एडल्टहुड में आने के बाद उनके बच्चे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब हम बात करते हैं उसकी जो आज के जमाने की चर्चा है। अगर बात करें डॉक्टर दिव्या कुमार, तो आज के जमाने में महिलाएं अपने करियर को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रही हैं, और उसका एकमात्र कारण है बढ़ती महंगाई, और साथ के साथ जरूरत है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अब इस करियर की दौड़ में कहीं ना कहीं शादियां थोड़ी सी डिले हो रही है। दूसरा कारण शादियों को डिले करने का ये भी है कि वो अपनी एक चॉइस को भी रखना चाहती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं और जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो इम्बैलेंस पर आ रहा है। सो आप देखें, बहुत सारी महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं, और अगर हम आगे फर्दर जाएं तो ये देखेंगे कि लेट मैरिजेस के कारण लेट प्रेगनेंसीज। सो मुझे बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक महिला की सेहत पर।
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने बताया कि एडुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये आप उसका साइड इफेक्ट मानो या दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी, कि अब उनको, बिकॉज आपने पढ़ा दिया, आपने उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तो वो अपने हिसाब से जीना तो चाहेंगी
0: जी।
1: तो दैट इज वन थिंग, बट देन जैसे आपने खुद ही कहा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, दिस इज लाइक अ वेरी फेमस सेइंग बाय इंदिरा नोई, उनका मैं सुनती हूँ कई बार, तो उन्होंने बहुत सही कहा कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारा प्रोफेशनल क्लॉक दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी होता है।
0: yes.
1: कि जब आपको लगता है आप प्रोफेशन के पीक पे जा सकते हो, देन यू सी की योर बायोलॉजिकल, योर क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग और इट हैज टिक्ड। आप ऑलरेडी उस स्लॉट में पहुंच गए हो कि मदरहुड के लिए आप शायद ट्राई करोगे तो भी नहीं हो, आपको मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। दूसरी बात, ये तो एक बात होगी, दूसरी बात कि फीमेल्स के लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, बिकॉज फीमेल्स, हम वी आर बॉर्न विथ आवर ओन सेट ऑफ एग्स, हमारे एग्स बनते नहीं हैं, विथ टाइम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में वो ये कम हो जाता है, बिकॉज यू आर बॉर्न, सो यू आर, एग्स आर लिटरली एज ओल्ड एज यू आर।
0: यस,
1: तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक तो आपके नंबर ऑफ एग्स, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी उनमें कम हो जाती है, और दूसरा कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जिनको डेफिनेटली वी हैव अ बैटरी ऑफ टेस्ट, जिससे हम, मतलब प्रेगनेंसी होने के साथ ही ये सारी चीजें हम काफी कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें डेफिनेटली हैं। बट सिंस ये इन सारी चीजों को रख के ही, देख के ही, वी हैव अ लाइक सेपरेट ब्रांच इन ऑब्स एंड गायनी, जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, या जिसको लेमैन लैंग्वेज में IVF, बट डेफिनेटली IVF इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, वो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम नहीं है
0: जी।
1: तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अब एक थोड़ा चॉइस आ गया है, जिसमें जो वुमेन बाद में मदर बनना चाहती है बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, वो अपने एग फ्रीज करा सकती हैं, अगर एज अ कपल वो हैं तो वो अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं, और जब वो फाइनेंशियली या फिर प्रोफेशनली थोड़े स्टेबल हो जाए, देन वो मदरहुड या पेरेंटहुड को एम्ब्रेस कर सकते हैं विथ ऑल हैप्पीनेस एंड लाइक व्हेन दे आर फुल ऑन माइंड, जब माइंडसेट वैसा हो जाए तो करा सकते हैं, बट क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा टिक होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगी कि एज वी आर इंडियंस, हमारी जो वुमेन होती है उनकी ओवेरियन एजिंग 6 ईयर्स पहले हो जाती है इन कंपैरिजन टू आर लाइक स्पैनिश एंड अदर कंट्रीज उनके काउंटर पार्ट के, तो हमें ये भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो हमारे लिए जो पीक फर्टिलिटी आपकी होती है वो mid 20s से लेके mid 30s तक, उसके बाद डिक्लाइन आ जाता है फर्टिलिटी में, और वो तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो एनी मोडालिटी, एनी ट्रीटमेंट जो हम एक यंग वुमेन को देते हैं और जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो मच बेटर आते हैं, बिकॉज इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके किसी भी, कुछ भी हम ट्रीटमेंट कर ले उसका रिजल्ट 100% नहीं होता। सम थिंग्स आर स्टिल अ मिस्ट्री टू मेडिकल साइंस, एंड वी हैव टू, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, इवन वी हैव टू लुक ऑन गॉड कि अब ये काम कर जाए। सो ये चीज़ है कि ये, बट ये ऑब्वियसली जब ये सोशल एग फ्रीजिंग, बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करवाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस सो दैट पीपल आर एनकरेज्ड टू डू दैट। तो आप दोनों चीज़ें आप पा सकते हैं।
0: सो भाई देखिए, ये तो एक तरीका है जो कि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी आगे प्रगति कर ली है कि इन तरीकों से आप मातृत्व भी पा सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने करियर को भी पा सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोर्स की बात करें, तो आज के जमाने में अगर आप देखें, एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो हमेशा से महिलाओं के लिए चैलेंज आता है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी या फिर आपकी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी डगमगाती हैं, और इसी कारण महिलाएं या तो आज के जमाने में शादियां करना नहीं चाहती हैं, और करना चाहती हैं तो जैसा कि डॉक्टर कुमार ने कहा, लेट प्रेगनेंसीज एक इश्यू आता है। और डॉक्टर दिव्या कुमार, अब बात करते हैं कि आज के जमाने में नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल ही नहीं रही है। मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था, प्रेगनेंसी वॉज वेरी ओके, बट क्योंकि जिस प्रकार से परिवेश बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है और हमारे जीवन जीने का तरीका और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ गई हैं, सो नॉर्मल प्रेगनेंसीज नहीं है और बहुत सारे कपल्स को IVF का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या इसके पीछे भी कोई खास कारण है?
1: जैसे मैंने आप अभी हमने डिस्कस किया, एज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है
0: जी,
1: एज एंड प्लस लाइफस्टाइल, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें IVF का सहारा लेना पड़ता है। प्लस पीपल आर नाउ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि पीक फर्टिलिटी जो टाइम होता है, यूजुअली वो टाइम आप अपने प्रोफेशनल अपने करियर में झोंक देते हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन पे आ जाती है। प्लस जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा खत्म हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम वी ट्राई टेंड टू कैरी आवर वर्क बैक टू आवर होम, तो एक स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। स्ट्रेस डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी को कम करता है। प्लस जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है, ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली इनफर्टिलिटी की तरफ ही ले जा रही हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा ना। एंड आई ऑलवेज फील दैट आफ्टर अ सर्टन एज योर लाइफ गोज, सो मेनी थिंग्स गोज इन पैरेलल एंड यू हैव टू लर्न टू, जैसे मल्टीटास्क हमें करना पड़ता है, तो एज करियर वुमेन आपको एक स्टेज के बाद यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, सी मतलब योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ, बिकॉज वो बायोलॉजिकल क्लॉक अगर टिक हो गया एक बार तो फिर डेफिनेटली आपके साथ प्रॉब्लम बढ़ेंगी और आपको फिर हमारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के डिफरेंट मोडालिटीज का सहारा लेना भी पड़ सकता है। तो अगर आप बैलेंस कर सकते हो योर प्रोफेशनल, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि यू आर पुटिंग समथिंग इन लाइक लीविंग समथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ।
0: यस,
1: देयर इज वन टाइम जब आपके लिए सिर्फ एजुकेशन होता है, एक टाइम होता है जब आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन होता है, एक टाइम होता है जब आपको प्रोफेशन को नंबर टू पे रखना होता है और आपको फैमिली, इफ यू इंटेंड टू, लाइक दिस इज अगेन लाइक दिस कैन वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
0: यस,
1: इफ यू वॉन्ट अ मैरिज, इफ यू वॉन्ट अ फैमिली, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू गो वेन योर फर्टिलिटी इज ऑन पीक, दैट मीन्स वेन यू आर यंग, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आप बहुत इजीली विदाउट एनी एफर्ट आल्सो यू कैन जस्ट अचीव अ मदरहुड और अ पेरेंटहुड। तो ये आपको प्रायोरिटाइज डेफिनेटली करना होगा। अगर आपने तब नहीं किया तो दूसरा रास्ता जैसे मैंने बताया है, एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का होता है, व्हेन यू टेक हेल्प ऑफ ART टेक्निक्स, एंड उसके बाद डेफिनेटली देयर सो मेनी मोडालिटीज आर देयर, बट व्हेन यू आर यंग व्हाटएवर वी डू दैट गिव्स अ मच बेटर रिजल्ट। तो इसको तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए, और स्पेशली मैं ये वुमेन को बता, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट से है, मदरहुड ऑल्सो एम्पावर्स हर, व्हेन मदरहुड इज लाइक इनसाइड योर हेड, आई हैव सीन पेशेंट्स लाइक दे विल कम, एक बच्चा है बट अगर दूसरा बच्चा उनके दिमाग में आ गया तो फिर वो उनको तब तक वो शांति नहीं मिलनी जब तक सेकेंड प्रेगनेंसी ना हो जाती
0: जी।
1: तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट ओनली, बिकॉज वी एज वुमेन वी आर बॉर्न बाई नेचर ओनली टू एम्ब्रेस मदरहुड, नेचर हैज सेलेक्टेड अस टू यू नो टू हमारे प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर फीमेल जेंडर को सेलेक्ट किया गया तो ये भी हमें एम्पावर ही करता है।
0: बिल्कुल,
1: इसको लाइक वी शुड नॉट लुक लाइक डाउन फॉर दिस, इसको हमें वैसे नहीं देखना चाहिए कि हम क्यों, वी शुड फील प्राउड कि हमें इतना इतना रिस्पॉन्सिबल और इतना ऐसा नेचर ने हमें सेलेक्ट किया कि वी कैन गो, वी कैन कैरी फॉरवर्ड आवर जीन्स। तो बट देन डेफिनेटली आई से कि दीज आर द थिंग्स यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड, एंड देयर इज नो हार्म इन प्रायोरिटाइजिंग योर फैमिली फॉर अ व्हाइल, एंड वंस यू अचीव, एंड वो टाइम ज्यादा नहीं होता, वो 5-6 साल का टाइम होता है जब आप फैमिली अपने कंप्लीट करके और फिर अपने प्रोफेशनल करियर में आगे जा सकते हो। सो आजकल तो व्हाट आई कैन सी सो मेनी सेलिब्रिटीज लाइक इन द पीक ऑफ द करियर दे आर एम्ब्रेसिंग मदरहुड, लाइक दीपिका पादुकोण और आलिया, बट दे आर गुड एग्जांपल्स। सी उनका जो बिजनेस है दैट इज ऑल लाइक फिजिकल, दे हैव टू लुक गुड, दे हैव टू हैव अ सर्टेन बॉडी टाइप, मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दैट कंपल्शन एट लीस्ट, सो दे आर डूइंग, वी कैन ऑल्सो डू इट, एंड मदरहुड इज अ ब्यूटिफुल थिंग, यू शुड एम्ब्रेस इट, थिंक अबाउट इट।
0: वाकई दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही कहा, और रादर आज के जमाने का ये जो शिफ्ट है, आज की वर्किंग वुमेन या फिर मुझे कहना चाहिए इंडिपेंडेंट वुमेन, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी परेशानी आती है। और ऐसे में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं परिवारों में जो ड्रिफ्ट आता है वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि या तो हम किसी एक चीज को चूज कर लें या दूसरी चीज को, लेकिन ये बैलेंस बनाया जा सकता है। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, महिलाओं को मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से आता है, दे आर बॉर्न विद दिस क्वालिटी कि वो मल्टीटास्क कर पाती हैं, सो ये भी किया जा सकता है। चलिए, अब वक्त हो गया है तहे दिल से धन्यवाद कहने का डॉक्टर दिव्या कुमार का कि वो

0: हमारे वैष्णवनम 7.8 एफएम के स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर से इतनी बेहतरीन बातचीत की और उन्हें इतनी सारी अच्छी बातें बताई। लेकिन डॉक्टर साहब, जाने से पहले क्या खास मैसेज आप उन सभी को देना चाहेंगी जो आज आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए?
1: मैं थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू वंस अगेन। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाहूंगी कि लव योरसेल्फ अनअपोलॉजेटिकली। आपको बिल्कुल गिल्ट नहीं होना चाहिए, आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो। सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू कैन मल्टीटास्क। जैसे भावना ने कहा है, तो इट्स नॉट दैट कि आप प्रोफेशनली अगर हाई पे हो तो फैमिली नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ योर माइंडसेट। गो अहेड, गेट इट, गो फॉर इट, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट, एंड इट्स ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑल देयर। यू कैन जस्ट, यू हैव टू गैदर करेज, लिटिल बिट ऑफ करेज, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट आप सब कर सकते हो। आप प्रोफेशनली भी बहुत ऊंचे जा सकते हो, एक मदर भी बन सकते हो, घर भी अच्छे से चला सकते हो, तो इट्स ऑल देयर इन योर हैंड्स। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक बी हेल्दी, बी हैप्पी।
0: जी,
1: हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: सो दोस्तों, शुरुआत जहाँ से होती अंत भी वहीं पर हो गया है कि महिलाओं का खुश रहना बहुत जरूरी है। और जब तक आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुश हैं, सो आप न सिर्फ अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ एक समाज को, परिवार को और देश को खुश रख सकते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्दी समाज रहे, सो उसके लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सो इस सशक्तिकरण के साथ आज हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर दिव्या कुमार को कि आज वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 7.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और मैं आप लोगों के पास रहने वाली पूरे 2 घंटे यानी 3 बजे तक का ये सफर है जो कि खूबसूरत बनाने चली आती हूँ बातों के साथ में और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपको सुनाती हूँ। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज है या कोई गाना आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8010781078। और चलिए आज हमारे साथ में एक गेस्ट जुड़ने वाली हैं और इनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। कौन है, क्या बातें हमने की इनसे, तो चलिए ये सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्योंकि अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गाना। तो आइए एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर इस गाने को आपने सुना। मैं हूँ प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अच्छा करें तो क्या करें, कैसे करें और क्या करना चाहिए इसके लिए, है ना। तो कई सारे सवाल जो है हमारे दिमाग में अक्सर ये आते हैं जब हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोच के साथ साथ कुछ करने का हौसला अपने अंदर रखते हैं, और वही आज की जो हमारी गेस्ट है उन्होंने कर दिखाया। नाम है इनका सविता दत्त, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाशदीप स्कूल। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं या आप कभी आ गए हैं तो आपको पता होगा 21B में प्रकाशदीप ट्रस्ट है, जो कि बड़े ही गजब तरीके से के काम कर रहे हैं, और इनको चलाने का काम करती हैं सविता दत्त जी। तो ये हमारे साथ में है। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में।
1: धन्यवाद, आपने इस काबिल समझा और आप आए, इट इज एन ऑनर फॉर अस।
0: सविता जी, हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है, जो ट्रस्ट है, ये इसकी स्थापना कब हुई और क्या उद्देश्य था इसके पीछे। जैसे होता ना कि सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, तो आपकी क्या सोच थी इस स्थापना के पीछे, मतलब आप क्या कहेंगी।
1: स्कूल तो 2003 में मई के महीने में मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के 5 बच्चों के साथ ये स्कूल की स्थापना, उसको स्कूल नहीं कह सकते, 5 बच्चे, 4-5 बच्चे थे जिनके मदर फादर की डेथ हो गई थी, और 2-3 बच्चे सड़क पर घूमते हुए मिले। मैंने उनको सबको पेड़ के नीचे बिठाया और मैंने सोचा कि ये ऐसे ही घूमते हैं, इनको पढ़ाना है। वो 4 लड़कियाँ जो थीं वो मेरी हेल्पर की बेटियाँ थीं, दोनों की माँ बाप की डेथ हो गई थी, तो दे वर ऑन द स्ट्रीट, तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना है। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल फॉर मी। मैं उसको स्कूल नहीं बोल सकती थी, एक पेड़ था और उसके ऊपर एक चार्ट टांग दिया हमने अल्फ़ाबेट्स का, और हम लोग बैठ गए वहाँ पर, एक टूटा हुआ बेंच था, उसकी एक तस्वीर मेरे बच्चों ने बनाई है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हमारा पहला दिन कैसा था। उस पहले दिन में एक पार्क था जो डिलैपिडेटेड से था, अभी इसमें तस्वीर में अच्छा दिखाया उन्होंने, पर पिग्स थे, डॉग्स थे, गन था, बहुत कुछ कचरा था, पर हमने पेड़ के नीचे जगह साफ की और बैठ गए वहाँ पे। ये नहीं पता था कि ये स्कूल बढ़ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, पर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी, सड़क के किनारे हम बैठे थे, लोग आते जाते देख रहे थे कि कुछ काम हो रहा है। शुरू में वो हंसे, फिर उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पे सीरियस काम हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने बारी बारी करके जुड़ना शुरू कर दिया। जो रेजिडेंट्स थे 21A के, ये 21A में एक पार्क, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये तो इतना अच्छा काम हो रहा है, किसी ने ला के वाटर जग्स दे दिए हमको, किसी ने कोई बनानास ले आया, कोई स्टेशनरी दे गया, कोई किताबों के लिए पूछ गया, फिर पीछे धीरे धीरे करके किसी ने कहा आपको कुछ ज़रूरत है, तो हमने कहा यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कपड़े थे ही नहीं बच्चों के पास, फटे पुराने पहन के आते थे, प्रॉब्ली दे डिडंट इवन हैव अ चेंज, तो वो यूनिफॉर्म आ गई, उससे उनको एक आइडेंटिटी मिली, खाने के लिए कुछ मिलना शुरू हो गया। फिर रेजिडेंट्स जो थे ना, वेरी लार्ज हार्टेड पीपल हेयर, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे बच्चे का आज ही जन्मदिन है, हम इन बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सेलिब्रेशंस हुई, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, और बच्चों के लिए चारों तरफ से सुविधाएं हमको मिलने लगी, और बच्चे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। मैं ये इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इनमें इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है और इतनी प्रतिभा है जो डॉर्मेंट पड़ी थी, और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो प्रकाशदीप एक प्लेटफॉर्म की तरह उभरा और बच्चों ने अपने आप आना शुरू किया। माँ बाप जो काम पे जाते थे, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही थी उन दिनों में, दैट वाज इन 2003, तो इतनी कंस्ट्रक्शन, ये फ्लैट्स जो 21D के हैं वो बन रहे थे, तो लोग बहुत, उनके जो मजदूर थे उनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे, और सड़कों पर डर था कि कहीं दब दुब ना जाए, माँ बाप तो काम पर लगे हैं, तो मैंने उन सबको इकट्ठा कर लिया और उन बच्चों को हम पार्क में ले आए पेड़ों के नीचे। इतना अच्छा लगता था, ज़रा भी हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा, जैसे टैगोर का स्टाइल था, शांति निकेतन का, इट इज़ लाइक दैट। तो स्कूल वहाँ से शुरू हुआ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ में है सविताता जी, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाश दीप स्कूल। मैम आपसे बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और अच्छा लगा ये जानकर जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से आपने बच्चों को देखा और फिर एक पेड़ के नीचे क्लास शुरू की।

0: लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी ये हौसला नहीं टूटा कि इतने कम बच्चे हैं, क्या कभी कुछ हो पाएगा? ये जो शुरुआत मैंने की है, अभी सिर्फ 7 बच्चे हैं, लेकिन क्या कभी बच्चे मेरे साथ में जुड़ पाएंगे या कभी मैं कुछ इनके लिए कर पाऊंगी? और भी बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं ना कि शुरुआत तो हो गई है लेकिन अब ये कहाँ तक जाएगा? क्या कभी आपके जहन में ये चीज़ आई और क्या कभी नेगेटिव थॉट्स आए इस चीज़ को लेकर के?
1: नेगेटिविटी तो बिल्कुल आई ही नहीं। बच्चों के साथ आप रहेंगे तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स ही आते हैं। ये बच्चे इतने प्रतिभाशाली थे और इतने रिसेप्टिव थे कि मुझे उनको मिलकर बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मैं ठीक राह पे जा रही हूँ, क्योंकि इनको ज़रूरत है। जो इनका अधिकार था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे वातावरण में आ गए, जैसे झुर्गियों से आते थे, ये जो स्लम्स हैं, सारे बच्चे हमारे स्लम्स से आते थे और माँ बाप उनको भेज नहीं पाते थे और कूड़ा बीनने जाते थे और बाल्टियाँ ले लेकर लड़कियाँ पानी ढूंढने के लिए इधर से उधर जा रही होती थी। तो उन सबको ज़रूरत थी कि कोई उनको संभाल ले, और संभालने के लिए ये जो बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, माँ बाप उनको कहते थे कि आप अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखो, आप घर में ही रहो और पानी जब आएगा तो पानी भर देना, खाना बना देना, कपड़े धो देना, लड़कियों के लिए ये सब चोर्स होती थी। तो मुझे ये लगा कि ये इन बच्चों का कौन है। सो उनको जब हमने इकट्ठा किया और पार्क में बिठा लिया तो क्वेश्चन था कि छोटे बच्चों का क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि आप अपने सिबलिंग्स को लेकर आए। तो उन्होंने सिबलिंग्स को लाना शुरू किया तो एक एक जो चैलेंज था सबसे बड़ा वो हट गया। जब सिबलिंग्स आ गए तो हमारे लिए सिर्फ ये था कि एक हेल्पर हमको और रखना पड़ा। जो हेल्पर हमने रख ली वो उन बच्चों को ख्याल कर लेती थी, और वो बच्चे ना वहाँ बैठ कर वो खुश थे, उनको हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो भी ABCD सीखना शुरू हो गए, टेबल्स सीखना शुरू हो गए अपने आप में। तो इट जस्ट वर्कड, ऑल द थिंग्स केम इनटू द राइट प्लेस। जिसको मुझे लगता है कि मैं एक समय में एक ज़रूरत थी उसके लिए मुझे वहाँ पे बिठा दिया और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया अपने आप, और उसमें वो अपनी स्टीम पर आगे बढ़ता गया। बहुत बच्चे आए, अपने आप चल के आए, पेरेंट्स छोड़ गए उनको, फिर कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई, कम्युनिटी ने उनको खाना देना शुरू कर दिया, किसी ने फ्रूट दिया, किसी ने किताबें दी, किसी ने और वॉलंटियर्स वॉज द बेस्ट पार्ट। अब जैसे किसी के पास गाने की प्रतिभा है, उसने कहा मैं इनको गाना सिखा दूँ, किसी ने कहा कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ, कोई ड्राइंग सिखा गया, कोई उनको जो जो उनकी उनकी टैलेंट्स थी वो उन्होंने उनके साथ शेयर की। सो इट वर्क्ड, यू नो, मैं मुझे कोई जाकर किसी को बुलाना नहीं पड़ा, अपने आप ही ये लोग जो हैं आपस में जुड़ते गए, एक एक करके सब आते गए, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो भी आती गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी? एक दो चार्ट्स और कुछ नहीं।
0: यहाँ आपकी बात से ना मुझे यही समझ में आता है कि अगर आपने वो चीज़ मन में ठान ली है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो आपने कर दिखा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन उसी के साथ आइए हम एक गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रागा आपके साथ में। और आज हमारे साथ में सविता जी हैं जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं प्रकाश देव स्कूल की। और किस तरह से इन्होंने स्कूल की शुरुआत की, और जैसा कि मैम ने बताया कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कुछ नहीं थी, एक चार्ट पेपर था, 6-7 बच्चे थे और सविता जी थी जिन्होंने इस ट्रस्ट की शुरुआत की, और इस तरह से ये सफर जो है शुरू हुआ। तो मैम कब ऐसा लगा कि अब इसे एक नाम मिलना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए अब बड़ा, तो कब आपको रियलाइज हुआ और इसके लिए फिर क्या कदम उठाए गए?
1: आपने ठीक कहा कि इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं थी, सिर्फ ये था कि मेरा एक इंटरेस्ट था, टाइम की इन्वेस्टमेंट थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं। मैं एक्चुअली एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं और IDSA दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ और एनालिसिस में मैं रिसर्च करती थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे। तो वो मैं वहाँ से मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा कि मैंने बहुत कर लिया, पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, वॉर को हम वॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंड वॉर, यू नो, तो उसको तो चलता रहेगा, कभी पीस कभी वॉर, तो दैट वॉज माई सब्जेक्ट। तो मैंने छोड़ दिया और मैं चार बच्चों को लेकर, जो मैंने आपको बताया कि मेरी हेल्पर थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उसकी भी हो गई, तो वो लड़कियाँ स्कूल से बाहर आ गईं, तो उनके साथ मैंने बच्चों के साथ शुरू किया, तो और बच्चे अपने आप ऐड होते गए क्योंकि एक सोसाइटी में एक ज़रूरत थी। तो वो बच्चे जब मेरे साथ जुड़ गए धीरे धीरे और आना शुरू हो गए, तो लोगों ने भी मदद करनी शुरू कर दी, तो स्कूल आगे बढ़ता गया। पहले जो 4 या 5 बच्चे थे हमारे पास, धीरे धीरे 10, 20, 25, 30, 50 तक बच्चे हो गए और लोगों ने खाना भी देना शुरू किया। फिर रोज़ खाना देना मुश्किल लगता था, तो मुझे लगता था कि कोई सिस्टम होना चाहिए कि इनको मिड डे मील मिल सके और भी इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब 1st, 2nd, 3rd तक तो पढ़ाना ठीक है, फिर उसके बाद यू नो साइंसेस हैं और सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरत महसूस हुई कि टीचर्स होने चाहिए। वैसे तो वॉलंटियर्स जुड़ते गए हमारे साथ और दे वर हाईली क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि ये सेक्टर जो है काफ़ी वेल टू डू सेक्टर है और सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ज्वाइन होते गए और आगे तो स्कूल बढ़ता गया। मैं किसी को कहने नहीं गई, मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी, ये विजन, इसकी विजिबिलिटी जो थी स्कूल की, उससे सब लोग अट्रैक्ट हुए और उनको लगा कि ऑनेस्ट काम हो रहा है और इसलिए हमको मदद मिलनी शुरू हो गई। तो मुझे किसी चीज़ के लिए कमी कभी महसूस नहीं हुई, एक लगा नहीं कि ये चैलेंज है, उल्टा मुझे लगा कि एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम इस समय मिल गया है। मैं IDSA में पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही थी, पीस हैज़ टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू होता है? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी दैट दीज चिल्ड्रन फेस, द कॉन्फ्लिक्ट एंड द चैलेंजेस दे फेस इन देयर लाइफ्स, यू नो, तो ये जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ बेटर वे, यू नो, पीस एंड सिक्योरिटी कैन कम ओनली थ्रू प्रॉस्पैरिटी, एजुकेशन, और उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुझे लगा कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग कभी भी नहीं आई, मुझे राधा ये लगा कि पॉजिटिव फीलिंग्स आई और लाइफ फेल्ट मोर एनरिच्ड, आई फेल्ट मोर सेटिस्फाइड एंड मोर एट पीस विद माई सेल्फ।
0: आपकी बातों में मैंने एक भी % घबराहट नहीं अभी तक सुनी, और ना ही आपने ये बोला कि हाँ मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुई या घबराई। आप हर बात में यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं कभी घबराई नहीं और कभी ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं थे। ये दिखाता है कि अगर आप एक सही राह पे हो और अच्छी सोच है, तो कभी भी ना ही आपको अंदर से नेगेटिविटी आएगी और ना ही कभी आप इस तरह की चीज़ें सोचोगे। बहुत बढ़िया।
1: अगर आपके मन में आप ये सेटिस्फेक्शन है कि आप जो काम कर रहे हैं, ये विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर क्यों नेगेटिविटी आएगी? आपको तो लगेगा ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और फिर आपको रिजल्ट सामने नज़र आता है। मुझे तो देखकर हैरानी हुई कि ये बच्चे जो स्ट्रीट के ऊपर भाग रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं पागलों की तरह, इनमें इतनी प्रतिभा है, ये ऐसे ही छूट जाती। अब क्या है कि दे वुड बिकम अ मेनेस टू द सोसाइटी, ग्रो अप करेंगे तो फिर चोरियाँ करेंगे। था भी सही, ये जो शॉपकीपर्स यहाँ पे हमारे सेक्टर में थे, उन्होंने कई बार मुझे शिकायत करी कि मैं उस तरफ देख रहा था मैम, तो बच्चा ब्रेड उठा के भाग गया। यू कांट कंप्लेन। अब इन बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, दे आर हंग्री, दे हंग्री चिल्ड्रन, पॉवर्टी इज देयर, सो इट वॉजंट देयर फॉल्ट. यू नो, तो मुझे लगा कि इनको कहीं संभालने की ज़रूरत है और ये अच्छा काम. तो मैं, मुझे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि मैं इस काम में लगी. इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था मुझे इस एज में. दैट वॉज एट दैट टाइम, यू सी, इट वॉज आई वॉज इन 60s, क्योंकि अब ये 21 साल हो गए हैं मेरे को इस काम को करते हुए. 2003 में शुरू किया था मैंने.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और हमारे साथ में हैं सविता दत्त, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाश दीप स्कूल। मैम, एक व्यक्ति कमाई के नए नए जरिए ढूंढता है ना, बस चाहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी कमाई हो जाए जिससे सैलरी, एक पैसा, इनकम आती रहे, है ना। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा, आपकी बातें अभी तक जितनी भी मैंने सुनी हैं उससे यही समझ में आता है कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। आपने जहाँ सब लोग कमाने के बारे में सोचते थे, तो वहाँ आपने उसके उलट सोचा। आपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, उनको शिक्षित करने का तरीका निकाला। सारी सेविंग जितनी भी आपके पास में थी वो आपने इन पर लगा दी। ऐसे में अपनों का सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा और किस तरीके से वो आगे आए आपके लिए?
1: मुझे तो पूरा सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड रिटायर्ड मेजर जनरल थे आर्मी में, उनका पूरा सपोर्ट था मुझे। कहीं पे भी कभी ज़रूरत हुई तो ही वॉज देयर फॉर मी। बाकी मैंने ये देखा, सपोर्ट तो अपने आप आया मेरे पास। लोग अपने आप जुड़े, उनको लगा कि ये काम ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी रिटायर्ड लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग घर बैठे हैं, मतलब हाउसवाइफ्स हैं, ग्रैंड मदर्स, मदर्स, एवरीबडी इज़ देयर। तो उनको लगा कि ये लुक एट दिस, एक पेड़ के नीचे बैठने में हमको क्या एतराज़ है। टैगोर ने भी तो शांति निकेतन शुरू किया था, और ओपन एयर में बहुत अच्छी एनवायरनमेंट होती है, इसलिए यू सो क्लोज टू नेचर, बच्चों को भी खुला लगता है। जो वॉल्स जब बन जाती है ना तो लिमिटेशन आती है। सो दिस वाज राइट ओपन स्पेस, यू नो, एंड दे वर हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी। सो मुझे ये लगा कि ये तो मेरे लिए भगवान ने कृपा की है जो मुझे इस जगह पर बिठा दिया। मेरे को कभी भी एक बारी भी नहीं ऐसा लगा कि ये कोई करियर का सवाल है। करियर से बढ़कर तो ये था कि मैं एक ऐसा काम कर रही थी जिससे देयर बी सम चेंज इन सोसाइटी। यू सी, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू चेंज व्हाट इज़ रॉन्ग।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और आज हमारे साथ में इस प्रोग्राम में है सविता दत्त, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाश दीप स्कूल। और आपसे बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, खुशी हो रही है। इसी के साथ ही मैम, जब भी एक सोच होती है ना, तो उसकी जो कहें कि जो एक बीज होता है ना, वो बचपन से ही पनपा हुआ होता है ना, यानी बचपन से ही वो सोच होती है कि हमें कुछ करना है। तो मैं ज़रा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, और आपका बचपन कैसा था, किस तरह की आप सोच जो है रखते थे, और आज जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आज इतने बच्चे और इतने वॉलंटियर्स आपके साथ में जुड़े हैं। तो मैम ये तो मैं जान ही रही हूँ, लेकिन मुझे आपके बचपन के बारे में जानना है, उसके बारे में बताइए।
1: अब मैं आपको एक बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आई। मुझे याद है, मतलब आई मस्ट बी 3 years old, 4 साल के होंगे। बॉम्बे में हम लोग हमारी फैमिली विज़िट करने गई, तो वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, तो ऊपर के फ्लैट में हम थे, तो वहाँ पे टेरेस से जो मैंने नीचे देखा, तो एक ढेर गंद का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, और उस पर कुछ बच्चे बैठे हुए कुछ खाने के लिए ढूँढ रहे थे। सो दैट पिक्चर इज etched इन माई माइंड, आई स्टिल कांट गेट ओवर इट। और मैं मुझे लगा कि ये इनका कोई भी नहीं है, इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इनका क्या होगा। सो दैट इज़ द टाइम प्रॉबली यू सी आई फेल्ट कि समथिंग हैड टू बी डन, बट आई वॉज टू स्मॉल फॉर दैट, बट आई हैव रिटन इट इन माई बुक ऑल्सो। यू सी कि इट क्रिएटेड सच एन इम्प्रेशन, मुझे लगा कि ये सोसाइटी में जो ये पावर्टी है और जो ये अशिक्षा है, पावर्टी दूर करने का एक ही तरीका है, उनको शिक्षित करना। तो मुझे लगा कि ये हमको करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, यू नो। मैं वो भूल नहीं सकती अभी, मतलब 4 साल के बच्चे के लिए याद रखना मुश्किल होता है, पर दैट इज़ etched इन माई माइंड, यू नो। सो आई हैव सीन, यू नो, अगेन व्हेन आई ग्रू अप, आई सॉ, जब मैं दिल्ली से फरीदाबाद आती थी ड्राइव करके, IDSS में जब काम कर रही थी, तो रास्ते में सड़कों के ऊपर, क्रॉसिंग्स के ऊपर बच्चे वो एक्रोबैटिक्स कर रहे होते थे, रेड लाइट होती थी तो वो आ जाते थे मांगने के लिए, विमेन आ जाती थी, उनके पास अपने को पूरा ढकने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे, बच्चों को उन्होंने अपने लगाया होता था, बट बेचारे भूखे थे बच्चे वो। तो वो तस्वीरें मेरे माइंड में फिर से आई, और मैं उनको देख कर बहुत परेशान होती थी। तो आइडिया ऐसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लगा कि मैं कोई पीस एस्टेब्लिश नहीं कर सकती वर्ल्ड में, ना मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकती हूँ। दोज आर थिंग्स, यू नो, फॉर अदर्स टू डू, यू नो, वो मेरे बस की नहीं है एज अ सिंगल पर्सन। मतलब मैं राइट कर सकती हूँ, आई कैन राइट आर्टिकल्स, यू नो, आई कैन, एंड आई डिडंट राइट आर्टिकल्स एंड ऑल, तो उसमें कोई प्रैक्टिकल योगदान नहीं हो सकता मेरा। सो देन आई लेफ्ट दैट एंड आई सैट डाउन अंडर द ट्री। मुझे लगा कि इनको शिक्षित करना है, तो चाहे जितना भी है, क्या हुआ, छोटे स्केल पे हो या कम है बच्चे, तो क्या हुआ। यू सी, यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप, यू नो, यू गो स्टेप बाय स्टेप। और ना मैंने कोशिश की कि मैं एफर्ट करूँगी लोगों को पकड़ के लाऊँ, नहीं, अपने आप ही आए, सब लोग अपने आप आए, सब अपने आप ही जो

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और आज हमारे साथ में इस प्रोग्राम में है सविता दत्त, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाश दीप स्कूल।
1: मैम, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनके साथ में जरी सी भी प्रॉब्लम परेशानी होती है ना, तो उनको लगता है कि बस लाइफ में तो अब कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो गया। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके अंदर ये चीज़ डालना, जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं।
2: हाँ, घबरा जाते हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे, पर मैं ये देखती हूँ कि हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे जो इस तबके के बच्चे हैं, वो ये बहुत रेजिलिएंट हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में से आते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जब आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, आप ये सोचिए कि अगर आपका स्कूल फ्री है या जैसा भी है और इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, आप ये सोचिए कि आप किसी से कम नहीं हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप बिल्कुल किसी से कम नहीं हैं। कोई एंजल स्कूल का है या गोल्ड फील्ड स्कूल का है, और कंपेरिजन भी हमने किया कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं उनसे। अब कंप्यूटर्स में हमारा बच्चा जो है इज़ सो मच बेटर देन अदर चिल्ड्रन यू नो फिर ओन एज। हम उनको हर बच्चे को हम लैपटॉप देते हैं, उसके ऊपर एक्सेस देते हैं। मेरा एम्फेसिस था कि इनको बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए जो और बच्चों को भी मिलती है। सो कुछ ऐसा माहौल बनता गया कि अगर हमको कंप्यूटर्स चाहिए थे तो हमको कंप्यूटर्स को ही दान कर गया, कुछ हमने खुद खरीद लिए, कुछ हमको डोनेशंस मिली तो हमने ये प्रोजेक्टर्स ऐड कर लिए। तो उस तरह से हमारा टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो वी स्टार्टेड टू ग्रो। तो सब चीज़ उनको जो और बच्चों को मिलती थी वो उनको मिली। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड सम टाइम प्राउडली दिल शो दिल राइज एंड मेक नेम फॉर द स्कूल एंड द फैमिलीज। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कुछ करके दिखाएंगे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं प्रियंका के साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ इस वक्त हैं सविता दत्त और मैम जब आपने स्कूल को शुरू किया तो साथ

0: बच्चे थे लेकिन आज काफ़ी बच्चे हैं, तो मैम जानना चाहती हूँ कि इस वक्त एग्जैक्ट कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ पर ये स्कूल्स हैं और किस तरीके से ये स्कूल जो है पूरा अब काम कर रहा है।
1: ये स्कूल जब शुरू हुआ था पेड़ के नीचे तब 7 बच्चे थे पहले दिन, मतलब 7 बच्चे थे हमारे पास, और उसके बाद ये अपने आप बढ़ता गया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब हमारे पास वो 7 बच्चे बढ़ के अब हमारे पास एक समय ऐसा आया कोविड से पहले हमारे पास 750 बच्चे थे, और इसमें ये सारे बच्चे जो बिलोंग करते हैं ना ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। वैसे हमने हज़ारों बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया होगा पर वो आए चले गए, कोई वापस लौट कर आए, और कोविड के बाद बहुत सेटबैक ये हुआ कि जो गांव चले गए थे वो वापस लौट कर भी नहीं आए। पर फिर भी अब हमारे पास करेंटली हमारे पास जो हैं वो 550-600 बच्चे हैं। तो स्कूल तो चल रहा है और 5 जगहों पे हमने ये देखा कि हम एक सेंट्रल लोकेशन में बच्चों को नहीं ला सकते क्योंकि ये बच्चों के पास कोई कन्वेंस नहीं है, माँ बाप उनको छोड़ने नहीं आ सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने तो बेबीज़ को भी एक्सेप्ट किया। तो मेरे दिमाग में ये आया है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो स्कूल बच्चे के पास जा सकता है। तो फिर हम लोग स्लम्स में गए, स्लम्स के बाहर हमने जगह साफ की पेड़ों के नीचे और वहाँ पर दरियाँ बिछा कर हमने क्लास शुरू कर दी। तो इस तरह से हमारे पास 5 सेंटर्स और हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्डिंग। ये 5 सेंटर्स में हमारे स्कूल चलने शुरू हो गए, दे बिकेम द फीडर स्कूल्स। अब क्या हुआ कि 1st, 2nd में वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं पेड़ों के नीचे, फिर 3rd में वो हमारा एक 21A में एक बड़ा पार्क है, सेंट्रल है सारे सब जगह से, तो सेंट्रल है तो उसमें आ जाते हैं 3rd में। तो उसके बाद 3rd के बाद 3rd, 4th, 5th वहाँ करके 6th में यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास साइंस है और हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास, तो और फैसिलिटीज़ हमने उनको दिए हैं, प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल नाउ। सो मैं ये चाहती थी कि इनको ये सारी सुविधाएं मिलें, तो 5th के बाद इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, 6th में हम कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं इनकी, और बहुत बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी में, बिल्डिंग में 6th से लेकर 12th तक, और हम इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12th करा देते हैं, विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाई ऑल द इन द एंटायर कंट्री, यू नो वैलिड है। उसके बाद भी उनको कॉलेज में एडमिशन मिलती है उसके बेसिस पे। तो जब अब ये सीता जो है जो ऑफिस चला रही है, ये मेरी पहली स्टूडेंट थी, इसकी 3 बहनें और हैं, ये 4 बहनें थी रह गई, माँ बाप चले गए तो कोई भी नहीं था इनका सहारा। मुझको वो सीन नहीं भूलता जब सीता की मदर की अर्थी जा रही थी तो सीता उसको कंधा दे रही थी। तो मतलब इस तरह के कितने बच्चे मतलब हमारी जान पहचान में आए जिनको माँ बाप का सुख नहीं था, और मतलब यही इनका दुख देखकर ही मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई कि हमको कुछ करना है, तभी ऐसा हुआ। तो ये मैंने देखा कि किसी के माँ बाप नहीं है, किसी का घर नहीं है, मैं इनके घर भी जाकर देख कर आई। हम लोग फिर स्लम में गए, ये जो बतकल के नीचे एक बहुत बड़ा स्लम है ना, तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पे हमने देखा लोग इतने प्यार करने वाले थे। वहाँ पे एक मोहम्मदन फैमिली थी, तो वो छोटा सा बच्चा उनका, यू नो ही वाज सो क्यूट, आज भी मुझे उसकी शक्ल याद है। वो कहने मेरी उंगली पकड़ के मुझे उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। तो उनका एक छोटा सा, उन्होंने एक गोल सा गुंबद जैसा होता है ना उस तरह का घर बनाया हुआ था, मड हट, तो उसमें वो मुझे ले गया और इतना नीट एंड क्लीन था, मैं देखकर बहुत हैरान हुई। वो मुझे नहीं भूलता कि देखो अगर उनको मौका मिलता है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, दिस नथिंग दैट दे कैन नॉट डू। मुझे ये लगा कि एक जहाँ चाह है वहाँ पर राह है और बहुत आगे पढ़ सकते हैं।
0: बहुत अच्छा लग रहा है जानकर के किस तरह से वॉलंटियर्स आगे आए, लोग आगे आए और आपकी जो सोच थी उसमें कितने सारे लोग जुड़ के आज बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चों की मेडिकल का ध्यान रखा जाता है, उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके खान पान का ध्यान रखा जाता है, उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है, हर एक वो चीज़ जो कि बड़े बड़े स्कूलों में मिलती है वो यहाँ हर एक एक बच्चे को मिल रही है। यहाँ तक कि बहुत सारी सुविधाएँ जो आप इस स्कूल के ज़रिए से बच्चों को देती हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम जो कि प्रकाश दीप ट्रस्ट करता है। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब चलते चलते क्योंकि चलने का वक्त भी हो गया है, तो आपकी तरफ से सभी लिसनर्स के लिए एक मैसेज।
1: सीखने के तो मैं सीखने के लिए हरदम तैयार हूँ। मुझे ये लगता है कि ये इन्हीं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इन बच्चों से, इनके इतने बड़े दिल हैं यू नो, और इतना रिस्पेक्टफुल हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं ये लोग, फिर भी इतने हम्बल हैं
2: जी,
1: बहुत मतलब इतनी ह्यूमिलिटी है इनमें। मैं ये देखती हूँ कि किसी को कुछ थोड़ा सा भी हुनर होता है तो उसको बड़ा ये होता है कि हम शेयर नहीं करें, लेकिन शेयर एवरीथिंग विद यू
2: जी,
1: बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं।
0: मैम चलते चलते मैं स्कूल की जो टीचर्स हैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगी, मैम उनके बारे में बताइए कुछ।
1: हाँ, शुरू शुरू में क्या हुआ कि जब हम शुरू ही कर रहे थे तो हमारी एक दो टीचर्स हैं, अब टीचर्स ही कहें उनको, एक तो उसकी तो शिक्षा 5वीं क्लास तक थी, दूसरी की 12th तक थी, तो वो लोग ना एक ये जो शमशान है ना 21 मतलब सेक्टर से बाहर निकलते हैं तो मार्केट की तरफ जब जाते हैं, बहुत बड़ा शमशान है, शमशान के सामने दीवार के साथ लगी हुई बहुत सारी झुग्गियाँ होती थी वहाँ, तो वो उनके घर गए, उसमें एक रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था डर्ट फिल्ड विद मक, तो उस नाले के ऊपर से क्रॉस करके जाना पड़ता था टू गेट टू द हट। मुझे वो भी याद है कि कैसे मैं उसके ऊपर से डरते डरते गई कि मैं गिर गई तो नाले में पहुँच जाऊँगी, मतलब बहुत ही प्रिकेरियस था। तो उस नाले में जाकर, उस झुग्गी में जाकर हमारी दो टीचर्स जो थी उन झुग्गियों में जाकर उनको उन्होंने बताया कि आपके बच्चे हैं तो आप इनको भेजिए, हम इनको पढ़ाएंगे फ्री में। सो दैट इज़ हाउ इट बिगैन। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ खाने को भी मिल जाता है, कुछ ठीक है, फूड वॉज अ बिग इंसेंटिव। तो फिर उन्होंने भेजना शुरू किया, थोड़े थोड़े करके इस तरह से बच्चे बढ़ गए। पर वो मुझे भूलता नहीं है कि वो नाले के ऊपर से गुजर के जाना, वो बैम्बूज कुछ लगा के रखते थे, इधर से उधर चले जाते थे बच्चे, तो भाग के निकल जाते थे। पर बड़ों के लिए ज़रा मुझे लगता था कि मैं तो इतनी इनस्टेबल हूँ गिर जाऊँगी। पर देखिए आप तो वहाँ पे काम झुग्गियाँ हट गई वहाँ से, और बच्चे अब देयर मच बेटर ऑफ, उनका हेल्थ, डॉक्टर्स गुजरते गुजरते हमसे पूछ लेते थे कि ये कुछ चाहिए, तो हम कहते थे उनका इम्यूनाइजेशन करा दीजिए, सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन हुआ और सबको जो जो चीज़ की ज़रूरत है, विटामिंस की ज़रूरत है, डीवर्मिंग की ज़रूरत है, वो रेगुलरली होती रहती है। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए, एक डॉक्टर अभी भी हैं हमारे पास जो रेगुलरली उनको देख लेते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग भी कर देते हैं बच्चों की, गर्ल्स की बॉयज़ की। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिस चीज़ की मैं कहूँ हमें कमी होगी, दिस फीलिंग ऑफ प्लेंटी है।
0: थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी बातें आपने हमसे की, थैंक यू।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और वक्त जो है वो चलने का हो गया है क्योंकि अब आप घड़ी की तरफ देखिए तो ये वक्त होता है जब प्रियंका यहाँ से जाती है. तो आज का सफ़र यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में सभी दादा जुड़ी जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं प्रकाश दीप स्कूल की. और उसी के साथ ही देखिए जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और अगर आपके नेक इरादे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ भी जो आप करना चाहते हो वो हो ही जाता है. तो अगर आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सोचिए नहीं, उस पर काम कीजिए. देखिए बच्चों का भविष्य बदल सकता है और जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो कितना बढ़िया आएगा. लेकिन आप उसमें आइए, राइट, आप काम कीजिए उस पर. चलिए आज का सफर यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर है 8010781078. चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए. और मेरा जो मैसेज है ज़रूर याद रखिएगा, मैसेज ये है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM. और प्रियंका से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं, जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कवि देव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौढ़ रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सृजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।
2: पल भर

प्यार गुलाब। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहूं ओर, सुदेव घटा घिर की चहूं दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई तेही छिन देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसान भाइयों से बहुत सारी बातें होती हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा देश भारत अधिकतर गांव में बसता है। और जब आप गांव में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि दूर दूर तक खेती की जाती है, और खेती करने वाले किसान अपने पूरे परिवार के साथ फसल को उगा रहे होते हैं। धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, अगर फसल को देखना है तो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। और हमारे देश से बहुत सारा अनाज दूसरे मुल्कों में जाता है, लेकिन दोस्तों समय समय पर अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो तरक्की या विकास नहीं हो पाएगा। खेतीबाड़ी की बात करें तो खेती में भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत होती है, और ऐसे बदलाव हुए भी हैं। उन बदलावों के बारे में आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले कबूल कीजिए अपने दोस्त फहीम का सलाम। राम राम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो खेती से संबंधित कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर उनका ख्याल रखा जाए तो हमारी खेती और भी बेहतर हो सकती है। जैसे तकनीक क्रांति से बदलती खेतों की पहचान, जैविक खेती की बात करें तो उसके बारे में जागरूकता, जलवायु संकट में टिकाऊ समाधान, युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और भविष्य की ओर एक मजबूत वाला कदम। देखिए दोस्तों, भारत की कृषि परंपरा न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की आत्मा भी रही है। आज जब जलवायु संकट, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों की घटती उपलब्धता जैसे विषय हमारे सामने हैं, लेकिन कृषि जगत में बदलाव और नए नए विचारों की लहर तेजी से फैल रही है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाएंगे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा समय होता है उसके हिसाब से आपको चलना होता है। बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं, उनको सीखना होता है। अगर हम बात करें तकनीकी क्रांति की, तकनीकी क्रांति से बदल सकती है खेतों की पहचान। ये सच है दोस्तों, अब किसान केवल पारंपरिक औजारों तक सीमित नहीं है, वो आधुनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, ड्रोन और सैटेलाइट जैसी तकनीकों का बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। जल उर्वरक और कीटनाशकों का मापित इस्तेमाल संभव हुआ है, जिससे उत्पादन लागत कम और पैदावार ज्यादा हो रही है, जो वाकई में बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह के थोड़े थोड़े से बदलाव होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी तकनीक की जो चीज़ें होती हैं वो हम जानेंगे तो हमारी जो खेती है और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस तरह की जागरूकता के साथ साथ एक जागरूकता और भी ज़रूरी है, वो है जैविक खेती की। उसके बारे में भी आपसे बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। पीछे मैंने आपसे बात की थी तकनीकी क्रांति के बारे में, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे किसान आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उससे अलग हट के थोड़ा सा अपने आप को बदल के अपनी खेती को और भी बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आजकल किसान पुराने ज़माने की जो चीज़ें थीं उनको छोड़कर आज के समय के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, ड्रोन, सैटेलाइट जैसी तकनीकों का बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी खेती को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन अगर हम जागरूकता की बात करें तो जैविक खेती की ओर जागरूकता बढ़ी तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति सजग है। हर इंसान जानता है कि आपको कैसा खाना खा के आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, और अच्छा स्वास्थ्य सभी का होना जरूरी भी है। देखिए, कहते हैं कि वो देश हमेशा तरक्की करता है कि जिस देश के रहने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जो भी है अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग है, जागरूक है, और इसी के चलते जैविक खेती का विस्तार हो रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है, और उत्तराखंड, केरल और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और किसान भाइयों, एक बात आपको और बताऊं, जैविक उत्पादों की जो मांग है ना, वो हमारे घरेलू तौर पर तो बढ़ी रही है, लेकिन इसकी मांग वैश्विक बाजारों में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जैविक खेती की ओर भी आप ध्यान देंगे तो हमारे देश की जो फसल है वो दूसरे देशों में और भी ज्यादा पसंद की जाएगी, क्योंकि यह बात स्वास्थ्य की है, सेहत की है। देश कोई भी हो, हर देश का इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। बात हो रही है खेती के बारे में, जागरूकता के बारे में। पीछे आपसे बात कर रहा था जैविक खेती के बारे में, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी खेती हो सकती है। बहुत सारे किसान जागरूक हुए हैं और जैविक खेती की ओर उनका रुख हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जैविक खेती को वो कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम हो उसमें कुछ दुश्वारियां भी आती हैं, कुछ दिक्कतें और संकट भी आते हैं। जलवायु संकट में टिकाऊ समाधान, ये बात जब जहन में आती है तो अक्सर किसान भाई जलवायु संकट से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं हर समस्या का समाधान होता है। अब वो क्या है? बदलते पर्यावरण ने किसानों को नई रणनीतियों को अपनाने पर एक तरह से मजबूर किया है। कम पानी में उगने वाले मोटे अनाज जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और मृदा परीक्षण कार्ड जैसी सरकारी योजनाएं स्थायी कृषि को बढ़ावा दे रही है। तो इस योजना के लिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक मांग ये भी करते हैं कि किसान भाइयों की जितनी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को समझा जाए और उनका समाधान भी किया जाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता। पीछे आपसे बात हो रही थी जलवायु संकट के बारे में, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं जिससे कि इस समस्या का समाधान हो चुका है काफी हद तक। एक सवाल और है, युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। देखिए दोस्तों, जब हम परिवार में होते हैं और कोई भी काम कर रहे होते हैं तो परिवार की हल्की सी भी मदद हमारे लिए बड़ी मदद बन जाती है। अब खेती सिर्फ बुजुर्गों का काम नहीं रहा, गांव की महिलाएं और युवा वर्ग खेती को एक कह सकते हैं कि बिजनेस के रूप में देखते हैं। जैसे किसान उत्पादक संगठन FPOS के जरिए महिलाएं सामूहिक खेती कर रही हैं और जैविक उत्पादों को ऑनलाइन बेच भी रही हैं। युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग नई तकनीकों के साथ कृषि व्यवसाय में अपनी पहचान बना रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कहते हैं कि जिस देश के युवा वर्ग अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, अपने काम को मेहनत से करते हैं और जागरूक होकर करते हैं, तो वो देश कभी भी तरक्की या विकास की ओर जाने से कभी रुक ही नहीं सकता। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। देखिए दोस्तों, बातें तो मैंने आपसे बहुत सारी कर ली हैं, लेकिन जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो कृषि है उसका आने वाला भविष्य क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के किसान जागरूक नहीं हुए हैं, काफी हद तक जागरूक हुए हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी पूरी तरह से योगदान दे रही हैं कृषि क्षेत्र में। और अगर भविष्य की बात करें तो आज भारतीय कृषि एक ऐसे मोड़ पर है जहां परंपरा और नए नए विचार मिलकर नई नई राह बनाते चले जा रहे हैं। आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील खेती की ओर बढ़ते हुए इस सफर में तकनीकी संसाधनों, बाजार तक पहुंच और किसान प्रशिक्षण की अहम भूमिका होगी। यही भविष्य की हरित क्रांति का आधार बनेगा। अब इसी बात के साथ सभी किसान भाइयों से आपका दोस्त फहीम आज्ञा चाहता है, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाए और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। भी देखिए, ये शो अगर आप रेगुलर सुनते हैं तो आपको पता होगा अच्छे से कि यहाँ पर हम बहुत सारी स्पेशल बातें करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक मेहमान होते हैं जिनके साथ हम कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ उनके एक्सपर्टीज से निकाल करके कुछ स्किल्स आप लोगों तक हम कन्वे कर पाएं। आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है और मैं कहूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब होता है ये टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट राइटिंग। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इशप्रीत सिंह। इशप्रीत फरीदाबाद से एक आर्टिस्ट हैं। इशप्रीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आपको ये जानना है कि इशप्रीत कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको दो चीज़ें रेकमेंड करूंगा। एक साल गाना है, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, आप साल डालेंगे इशप्रीत सिंह करके, वो गाना आपको ज़रूर सुनाई देगा। आई एम श्योर आपने इसे कुछ लोगों ने ज़रूर उसको सुना होगा, बहुत खूबसूरत गाना है। दूसरा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए सो यू शुड वॉच HR 51, जो कि स्टेज के ऊपर मौजूद है, एक मूवी जो फरीदाबाद की भाषा को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद की कहानी को कहती है और फरीदाबाद में रियल जो इश्यूज हैं चलता है जो उन्होंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है वहाँ पर। यू शुड चेक इट आउट। आज हम इशप्रीत से बात करेंगे अबाउट राइटिंग। इसके दो तीन सेगमेंट्स में जरूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज एग्जैक्टली होता क्या, किसको हम राइटिंग बोलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स को लिखा कैसे जाता है। सेकेंड, अगर आप खुद राइटर बनना चाहते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना होगा। थर्ड, अगर आपको काम ढूंढना है राइटिंग में, हाउ यू शुड अप्रोच पीपल, हाउ यू शुड पिच योर स्क्रिप्ट्स टू समवन, अगर आप किसी को काम पिच करना चाहते हो तो। बट ये सब बातें होंगी, पहले लेकिन इशप्रीत का स्वागत करेंगे। सो हाई इशप्रीत, वेलकम टू आवर शो।
3: हाई सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर।
2: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव एन आर्टिस्ट हेयर इन दिस स्टूडियो, एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं।
3: शुक्रिया भाई, बिल्कुल।
2: सबसे पहले मैं आपके मुँह आपकी जुबानी जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप बताइए कि आप क्या करते हो, क्या डोमेन है आपका?
3: भाई मेरा डोमेन एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा स्ट्रेंजली लॉ का है। और उसकी कहानी ये है कि मैं 12th स्टैंडर्ड में था, बोर्ड की परीक्षाएं अभी ख़त्म हुई थी, एंड एक बार मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके गया उनको बताने कि मैं इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना चाहता हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ। और फिर वो मेरे इंग्लिश टीचर से मिले और मेरे इंग्लिश टीचर ने आयरॉनिकली खुद ही बोल दिया कि ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, मेरी तरह बनना है क्या, ज्यादा से ज्यादा 30,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे इंग्लिश टीचर ने ही मुझे एक तरीके से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा डिलेमा में डाल दिया कि ये फीजेबल ऑप्शन नहीं है, मतलब एज करियर वाइज ल्यूक्रेटिव नहीं है लिटरेचर को परस्यू करना। तो मेरे पेरेंट्स भी कहते कि लिटरेचर तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसे भी लिटरेचर को कभी इतना एज अ सब्जेक्ट तवज्जो नहीं दी गई, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी, सम काइंड ऑफ अ टर्शरी थिंग, कि आप ये साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ये कोई मेन स्ट्रीम काम नहीं होता, नौकरी ढूंढो पहले। तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही टारगेट था कि लिटरेचर पढ़ूंगा और लिटरेचर पढ़ाऊंगा, बस कोई मेरे आर्टिस्टिक एम्बिशंस भी नहीं थे उस समय स्कूल में। तो फिर मेरे दो दोस्त लॉ परस्यू करने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि अब तू कुछ समझ तो आ नहीं रहा तुझे, तुझे करना क्या लाइफ में, तो तुम्हारे साथ कोचिंग ले ले और सिलेक्शन हो गया तो लॉ स्कूल चला जाइए। एंड समहाउ उन दोनों का उस समय नहीं हुआ और मैं लॉ स्कूल चला गया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया।
2: ओह वाओ।
3: हाँ, और सिम्बायसिस लॉ स्कूल में चला गया फिर 5 साल के लिए नोएडा, पुणे भी हो गया था, बट पुणे एक तो काफ़ी दूर था घर से, और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि नोएडा में रहूँगा तो दिल्ली आना जाना लगा रहेगा और मैं नाटकों की दुनिया और उससे जुड़ा रहूँगा समहाउ, क्योंकि मेरे को मैंने बताया कि पढ़ना बहुत पसंद था और पढ़ने में नाटक भी आते हैं, वो भी लिटरेचर का एक पार्ट है। तो मैं 5 साल लॉ स्कूल में बिताए और मैं 5 साल मंडी हाउस आता जाता रहता था, वर्कशॉप्स करता था, नाटक देखता था, तो एक तरीके से आप ये कह लो मैं डबल लाइफ जी रहा था, एक साथ मैं लॉ कर रहा था और एक साथ मैं अपना लिटरेचर की पढ़ाई जो मैं नहीं कर पाया प्रोफेशनली या फिर ये कह लो अकेडमिकली, वो मैंने सिंसियरली खुद से की अलग से। और फिर करते करते लॉ की पढ़ाई चलती रही, साथ साथ मैं लिखता गया, यूजुअली मेरे मेरा परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड है, मैं परफॉर्म करता था। और फिर अचानक एक दिन मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तू लिखता तो है ही, पहले मैं कविताएं लिखता था, तो उसने कहा कि कविताएं गाने भी तो बन सकती हैं, और मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था अनलेस एंड अनटिल उसने बोला कि कविताएं क्या है, म्यूजिक तो कविताओं में भी होता है, तो एक बार ट्राई कर कि इसको कंपोज करवा। तो मैंने किसी से कंपोज करवाने की बजाय खुद ही कोशिश की गुनगुनाने की, और एक धुन मिली, मैंने ही धुन सोची, और मैंने एक हमारी शहर का लड़का है रोहित निगम, वेरी टैलेंटेड सिंगर. मैंने उसको इंस्टा पे अप्रोच किया, मैंने बोला भाई मैं लिखता हूँ, जबकि मेरा पहला गाना था वो, बट मैंने पोर्ट्रे ऐसे किया कि मैं राइटर हूँ लिखता हूँ. तो मैंने वो उसको घर पे बुलाया, मैंने वो धुन सुनाई, मैंने वो कविता गा के सुनाई, और वो मैंने गाने की तरह कभी ट्रीट नहीं की थी. हम स्टूडियो दोनों फर्स्ट टाइम गए, वो रिकॉर्ड हुआ लगभग 15 से 20 मिनट में, और वो गाना पहचान म्यूजिक करके एक लेबल है उन्होंने पिक किया, और वो मेरा पहला ही गाना था. एंड ओवर अ वीक ही उसके मतलब मिलियंस स्ट्रीम चले गए, और मेरी लाइफ मतलब वहाँ से कम्प्लीटली चेंज

0: मैं ऑनेस्टली किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, पर ऑनेस्ट ट्रूथ, गॉड्स ट्रूथ जिसे बोलते हैं, वो यही है कि गुरबत का काम है राइटिंग इनिशियल डेज में, और ख़ासकर हमारे देश में। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग यूजुअली क्या बोल के फिल्म देखने जाते हैं, कि सलमान की फिल्म आ रही है, शाहरुख की फिल्म आ रही है, एज इफ उन्होंने ही वो डायरेक्ट किया और उन्होंने ही वो लिखी है। इन कंपेरिजन टू वेस्ट, वेस्ट जब वेस्ट में लोग क्या बोलते हैं कि नोलन की फिल्म आ रही है, स्कॉर्सेज़ी की फिल्म आ रही है, इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई फेस को ज़्यादा तवज्जो देता है और कोई फेस के पीछे जिसने वो पूरा काम किया उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री थोड़ी स्टार ऑब्सेस्ड कंट्री है, जो स्क्रीन पे आता है हमें, मतलब ग्लैमर से ऑब्सेस्ड है हम। मे बी यहाँ तो हमारी रियल लाइफ बहुत डल है और बोरिंग है, हम फंसे रहते हैं, तो हमें ये देखने लोग बहुत पसंद है। लेकिन जो असली काम जाता है बिहाइंड द स्क्रीन, उसको हमारा कंट्री अप्रिशिएट नहीं करता। आज भी आप किसी भी को पूछोगे कि किसी ने ये फिल्म लिखी, किसने डायरेक्ट की, तो हमें नाम नहीं पता होंगे। तो ये सैड रियलिटी है। तो आपको राइटिंग वाकई ही पसंद होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसमें एक्टिंग जैसा आरओआई नहीं है। इसमें आपको फेस करना पड़ेगा ये रियलिटी कि मैं करता रहूंगा एंड मे बी मैं पूरी लाइफ रिकॉग्नाइज ना हूं। तो अगर आप रेडी हो उस चीज के लिए, गुर्बत के लिए, और ख्याति आपको नहीं मिलेगी, तो आप जाओ इसमें। फिर आप अच्छे राइटर भी बनोगे, क्योंकि आप किसी के लिए नहीं लिख रहे फिर।
1: बहुत सुंदर। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि डोंट चेज द फेम। आपको मिले ना मिले वो सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, मिल भी सकता नहीं मिल सकता। पॉइंट ये है कि आपको राइटिंग से अगर प्यार है और आप इस चीज के लिए तैयार हो कि बस मैं दाल चावल का जुगाड़ अपना कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, तो इशप्रीत कह रहे हैं कि शायद एक सही विकल्प हो सकता है। पर अगर आप सिंगल इस थॉट के साथ जा रहे हो कि दौलत शौहरत कमाऊंगा तो राइटर बन जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि वो एक गलत अप्रोच हो जाती है। ना आपकी राइटिंग में निखर के आएगा वो, ना वो चीज वैसे मिल।
0: और मैं रेफरेंस भी आपको देता हूँ। आप देखो, चेखव था, एंटन चेखव, रशियन राइटर। काफ्का था, ठीक है, काफ्का बैरिस्टर था, लॉ पढ़ी हुई थी काफ्का ने। चेखव मेडिसिन का स्टूडेंट था, तो चेखव डॉक्टर था, काफ्का बैरिस्टर था, तो सबने अपना दिन का काम पकड़ रखा था और रात को राइटिंग छोड़ रखी थी। तो आप अपने दिन के लिए वही दाल चावल ढूंढो और रात के लिए आप अपनी कलम पकड़ो।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेकिंग म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो कंटिन्यू करेंगे। स्प्रीत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। आगे फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ पाएं कि एक फिल्म लिखना, एक वेब सीरीज लिखना, एक गाना लिखना, एक कविता लिखना, कोई स्केच लिखना, इनकी अप्रोचेज क्या होती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक अगेन। आई एम सेइंग अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो स्पीड से आपको कहनी है या मुझसे कहनी है, कोई फीडबैक हो सकता है, हमारे लिए कोई प्यारा सा मैसेज हो सकता है, तो 8010781078 इस नंबर पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को कंटिन्यू करेंगे। शो का नाम वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान है इशप्रीत सिंह। इशप्रीत, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग को थोड़ा समझना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में। बहुत सारे लोग उस पार जो हमारी आवाज सुन रहे हैं उनको नहीं पता है टेक्निकल चीजें राइटिंग की। पहले तो मुझे बताइए कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक राइटर जो है लिखता है। सब्जेक्टिव हो सकता है, उसमें आप अपना बता सकते हैं प्लीज।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये जानने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कॉलिंग कहाँ से आती है, कि आप राइटर हो भी या नहीं हो।
0: हाँ,
1: मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि राइटर शायद वो लोग बनते हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हैं और हर दिन खत्म होते ही उन्हें लगता है कि ये दिन सही से नहीं जी पाए, तो वो उस दिन को दोबारा जीना चाहते हैं। अब वो कैसे जिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो निकल चुका है, तो मे बी आप लिखकर उस चीज को रिक्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है टेक्निक राइटिंग की कोई नहीं है, आप चाहे जितनी वर्कशॉप्स कर लो या कोर्सेज ले लो, वो आपको कभी राइटर नहीं बना पाएंगे। मुझे दो चीजें लगती हैं, एक तो रीडिंग और एक लिविंग। मतलब कि आप हर तरीके की चीजें पढ़ो, साहित्य से लेके जो घटिया मैगजीन्स होती हैं, इरोटिका भी पढ़ो और रशियन लिटरेचर भी पढ़ो। मतलब सबसे ऊंचे स्तर का लिटरेचर पढ़ो और सबसे निचले स्तर का लिटरेचर पढ़ो, उससे आपको हर तरीके की चीज़ पता चलेगी। जो दुनिया आपने नहीं भी जी है, आप वो दुनिया भी जी लोगे कि अच्छा 18वीं शताब्दी में रूस ऐसा था, लैटिन अमेरिका ऐसा था, चे गुवारा पॉलिटिक्स में क्यों गया जबकि वो तो मेडिसिन का स्टूडेंट था, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल डायरीज पढ़नी पड़ेगी। तो आप समझोगे कि लोग कैसे बदलते हैं, जगहें कैसे बदलती हैं, हिस्ट्री आप समझोगे, ज्योग्राफी आप समझोगे। तो राइटिंग सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमारे लॉ की फील्ड में भी बोलते हैं, नेवर स्टडी अ थिंग इन साइलोस, वैक्यूम में मत पढ़ो किसी चीज़ को। तो आप पढ़ो इतना कि आपको पूरा परिवेश समझ आए हर चीज़ का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और दूसरा, आधा दिन आप पढ़ो और आधा दिन आप बाहर निकल के दुनिया के साथ इंटरेक्ट करो, क्योंकि सिर्फ किताबी बातें कभी आपकी राइटिंग में ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक आप ज़मीन पर उतर के ज़मीनी लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे। जिसे हम कहते हैं ना कैबिन आर्म चेयर राइटिंग, एसी में बैठ के कभी अच्छी राइटिंग नहीं होगी। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि एसी में लिखना ख़राब है, आपको बाहर धूल धक्कड़ खाओ फिर बेशक आके एसी में लिखो, लेकिन आप बाहर निकलो। तो आप, मेरे लिए तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, रीडिंग, ट्रैवलिंग और टॉकिंग विद पीपल। ये तीन चीज़ें कोई भी इंसान पूरे शिद्दत के साथ अगर कर रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली लिखने का मन करेगा, क्योंकि जब आप इतनी दुनिया देख लेते हो, जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर आ जाती है कि मुझे अब अपनी वर्ल्ड के बारे में भी दुनिया को बताना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैंने क्या सीखा इस जीवन में। और जैसे विनोद कुमार शुक्ल नहीं बोलते कि इतिहास की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान अपना इतिहास लिखने लग जाए, तो हर इंसान को अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग प्रोफेशनली किसी को सीख नहीं भी नहीं करनी चाहिए, तो बेटर पर्सन बनने के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपने बारे में।
0: सो मिसिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ, अपने पसंदीदा गाने की बात करना चाहूँगा मैं, साल की,
1: जी
0: क्या थॉट था, कैसे कैसे उस गाने को लिखा,
1: साल
0: प्रोसेस क्या था उस गाने का?
1: साल का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। साल गाना जो है, मैं उस समय लॉ स्कूल में था, अपने ग्रेजुएशन कर रहा था LLB, और उस समय मुझे एक लड़की पसंद थी, और समहाउ लास्ट ईयर्स रह गए थे लॉ स्कूल के, और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और शाय इंसान हूँ इन जनरल भी अपनी लाइफ में, तो मैं कभी एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और तब तक ट्रेन निकल जाती है और फिर बाद में ये गाने रह जाते हैं। तो वो था कि कैसे, जो उसका कोरस है गाने का, कि पहले दिन देखा तो दिल हार गए, दूसरे दिन देखा, कि आप दो दिन किसी से प्यार में पड़ते हो और उसमें आपके कितने साल चले जाते हैं, वो उसका कंसेप्ट था। कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पसंद आया, आपको कोई पसंद आता है, एक या दो दिन में ही आ जाता है पहली नज़र में, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट कितना लंबा जाता है वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता भी नहीं है और फिर भी आप सालों साल उसकी इमेज लेके चलते हो। तो इस थॉट पर लिखा था वो गाना।
0: वाओ यार।
1: हाँ, कि मतलब इट इज अ मैटर ऑफ वन और टू डेज बट इट परसिस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स अपनी इमेजिनेशन में, और आप होते भी नहीं हो उस पर्सन के साथ। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग लगता है वो इस थॉट से।
0: आई थिंक अगर इस पॉइंट से अगर आप देखते हो ना चीजों को, तो मेरे को ऐसा लगता है राइटिंग इज अ ब्लेसिंग।
1: हाँ,
0: या फिर क्या को क्या बना देते हो, हाउ यू एक्सप्रेस। जैसे अभी आपने ये चीज बताई तो होता हम सबके साथ है कि एक इंसान को कभी देखा और शायद अपने आखिरी के 70-80 की एज में भी हम उस चेहरे को याद कर रहे होंगे, धुंधला सा वो कहीं याद होगा, ठीक है, सबके पास थॉट होता है, बट ये शब्द नहीं होते हमारे पास कि कितने साल निकाल दिए उन दो दिनों के चक्कर।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और HR 51 का प्रोसेस मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट तो ठीक है, आपको लगा कि फरीदाबाद की आवाज़ बनना चाहिए, फरीदाबाद की कोई कहानी है जो आई नहीं उसको कहना चाहिए, बट एक फिल्म लिखना बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लिखा, ड्राफ्ट कैसे होते हैं, स्टोरी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, थोड़ा मुझे टेक्निकल वे में अगर आप समझा सकें इसको।
1: टेक्निकल वे में सिंपल है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्टोरी स्क्रीन प्ले सेम चीज है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। और मोस्टली आपने क्रेडिट्स में देखा भी होगा कि डायलॉग का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, स्क्रीन प्ले का किसी और को दिया जाता है और स्टोरी का किसी और को दिया जाता है। जैसे इस केस में HR 51 में तीनों चीजें मेरी थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो स्क्रीन प्ले ये है कि व्हाट इज प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या क्या प्ले हो रहा है, मतलब छोटे से छोटा एक्शन भी कि ईशप्रीत अब पानी का ग्लास पीने वाला है, तो इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन प्ले में जाती है कि ईशप्रीत इज गोइंग टू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक स्क्रीन राइटर को ये भी लिखना होगा। डायलॉग इज अ डिफरेंट थिंग, डायलॉग है वार्तालाप, बस शब्दों का आदान प्रदान कि दो लोगों में क्या वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तू मेरे पास बैठा है, हाँ मैं तेरे पास बैठा हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ, ये डायलॉग हो गया। उसके अलावा डायलॉग राइटर कभी भी स्क्रीन पे क्या चल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता कि अब ये गाड़ी ऑन करेगा, अब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगी। तो डायलॉग ये हो गया, स्क्रीन प्ले अलग हो गया, स्टोरी हो गया ओवरऑल कहानी। अब जो कमर्शियल सीन में जो स्ट्रक्चर चलता है स्क्रीन प्लेस का, वो यूजुअली अमेरिकन स्टाइल का होता है, विच इज द 3-act स्ट्रक्चर, Act 1, Act 2, Act 3, क्योंकि लोग यूजुअली उसी से ग्रिप होते हैं। एक्ट वन में आप अपना प्रेमाइस सेट करते हो कि क्या दुनिया है, और एक्ट वन खत्म होते होते आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन डालनी होती है कि अब यहाँ से कहानी पलटने वाली है, कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है। एक्ट टू में आप आते हो, अब वो सब कुछ दिखता है जो उसके साथ बुरा होने वाला है। एक्ट थ्री में आप क्लाइमैक्स लिखते हो कि अब ये बचेगा या ये डूबेगा। तो इस तरीके से मोस्टली कहानियां जो कमर्शियल सीन में लिखी जाती हैं वो इस 3-act स्ट्रक्चर पे लिखी जाती हैं। और HR 51 के लिए भी मैंने यही फॉलो किया था, क्योंकि एक कमर्शियल OTT प्लेटफॉर्म है, इंडी प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। तो यही है कि आप 3 हिस्सों में बांटो कहानी को, आप अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाओ, वर्ल्ड में होता क्या है वो एक्ट टू में दिखाओ, और थर्ड में ये वर्ल्ड बचेगा या नहीं। सिंपल।
0: तो क्या उसको बोल सकते हैं बिगनिंग मिडल एंड?
1: Yes, beginning, middle, end.
0: तो act one, act two, act three, same चीज़।
1: जी, जी।
0: Beginning, middle, end।
1: हाँ जी।
0: तो अपनी कहानी को establish करो, problem establish करो।
1: Yes।
0: Beginning में।
1: हाँ।
0: Middle में उसको जितना आप peak पे ले जा सकते हो उसको ले जाओ, क्या चल रहा है।
1: हाँ।
0: और end में आप उसको conclude करते हो।
1: जी।
0: कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अधूरा हुआ, जो हुआ। So amazing, so amazing।
1: Screen writing की किताबें भी हैं बहुत सारी, जैसे एक Save the Cat बहुत popular किताब है, वो लोग पढ़ सकते हैं, तो वो brilliant किताब है, Save the Cat।
0: ठीक है, ठीक है। और अगर मैं गाने की बात करूं, गाने का तरीका क्या होता है, गाने कैसे लिखे जाते हैं?
1: गाना इंटायरली डिफरेंट है एक फिल्म से, एक कहानी से और एक नाटक से, क्योंकि गाने का स्ट्रक्चर भी होता है, मुखड़ा, अंतरा, ये सब, वर्स, कोरस जिसे बोलते हैं। लेकिन गाना, जैसे फिल्मों के लिए क्या है कि आप और फिल्में देख सकते हो, उनसे सीख के आप अपना प्लॉट लिख सकते हो, गाना इंटायरली फीलिंग के बेस पे वर्क करता है। म्यूजिक को लेके मेरा ये टेक है कि म्यूजिक अगर आप रेफरेंस पे बना रहे हो कि आज ये गाना हिट हुआ, अब हम इस सैंपल पे एक और गाना बनाते हैं, मुझे नहीं लगता वो वर्क करता है, या मेरे लिए तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। म्यूजिक उसी का अच्छा होगा जो चीज़ें दिल से फील करता है, जिसकी मेलेडी दिल से निकलती है और जो सारी चीज़ें पर्सनली फील करता है, वो अच्छा म्यूजिक बनता है। और म्यूजिक में कभी भी मैंने आज तक की अपनी डिस्कोग्राफी में किसी भी गाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं सुने कि मैं लिरिक्स के लिए या कॉम्पोजिशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर रिलाय करूं। म्यूजिक के लिए मैं इंटायरली अपनी फीलिंग्स पे और इंट्यूशन पे डिपेंड करता हूं, और जो मुझे आता है वो मैं लिखता हूं, और यूजुअली मैं मेलेडी के साथ ही लिखता हूं। एक धुन होती है, मैं उस पर हम करता हूं, और उस हमिंग पे मैं शब्द डालता हूं।
0: आपने गाना लिखा, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी धुन में ठीक है जा भी रहा है, बट अगर मीटर फिट नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, ये राइम नहीं हो पा रहा है, राइम का तो खैर चलो गुलजार साहब ने वो खत्म ही कर दिया कि जरूरी नहीं है, लेकिन मीटर फिर भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सुर आप कैसे अलाइन करते हो।
1: तो सागर भाई, इसमें दो चीजें हैं, एक जो मेरा पर्सनल काम है उसमें कभी मुझे आज तक मीटर या इन सब टेक्निकल चीज़ों की दिक्कत नहीं आई। उसका कारण यह है कि पहले मैं अपना काम कविता की तरह लिखता हूँ, फिर स्टूडियो में हम जाते हैं, लैरी होता है मोस्टली, और लैरी इतना क्रिएटिव स्पेस रखता है कि हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि या तो वो इस तरीके की मेलोडी या इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन कर देगा कि वो फिट आ जाए, नहीं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि शब्दों को घुसाना है या फिर टेक्निकली उसको साउंड करवाना है, फीलिंग्स पे चलते हैं मेरे पर्सनल काम। लेकिन क्योंकि मैं साथ साथ घोस्ट राइटिंग भी करता हूँ, घोस्ट राइटिंग भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देते हैं, घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो काम करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडियो आप जाते हो, प्रोड्यूसर आपके सामने ऑन द स्पॉट बीट प्ले करता है और आपको वहीं पर गाना लिखना होता है, तो उतना आपको अपना कान पक्का करना होता है कि आप बीट का टेम्पो और बीपीएम समझ सको बीट पर मिनट कि अच्छा टक टक टक इसमें 4 शब्द आएंगे, टक टक टक टक टक इसमें 6 शब्द आएंगे, उस हिसाब से वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो पैसों वाला काम जब होता है कि मुझे किसी ने हायर किया है तो वहाँ पर मैं फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए कॉर्नर कर देता हूँ, वहाँ पर टेक्निक पर चलते हैं, लेकिन जो पर्सनल काम जितने भी होते हैं वो इंटायरली फीलिंग्स और इंट्यूशन पर ही होते हैं।
0: ओके, नाटक कैसे लिखे जाते हैं?
1: नाटक का भी बिल्कुल फिल्म, और क्योंकि आप देखो हर राइटिंग लगता है कि लिखना कितनी सिंपल क्रिया है, नहीं है आसान क्रिया लगती है लिखना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर फॉर्मेट अलग अलग चीज एक्सपेक्ट करता है। नाटक जो है, नाटक थोड़े से सिमिलर है इस मामले में कहानियों, प्रोज और फिल्म से। नाटक के लिए आपको बड़े बड़े आप प्ले राइट्स को पढ़ो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर समझो। बहुत सारे प्लेज ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, सोलिलोक्वीज होती हैं, स्टेज पे कैरेक्टर जा रहा है और बस अपने से बात कर रहा है और कोई नहीं है स्टेज पे और ऑडियंस से बात कर रहा है, मोनोलॉग्स हैं। कुछ प्ले होते हैं जिसमें कास्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे शेक्सपियर के नाटक आप देख लो, कॉमेडी ऑफ एरर्स या फिर जूलियस सीजर, इतनी ज़्यादा कास्ट है, कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है नाटक अगर किसी को लिखने हैं ना तो वो हैवी लिटरेचर पढ़े, जैसे महाभारत सबको रेफर करनी चाहिए, चाहे वो फिल्म का राइटर बनना चाहता है या नाटक के लिए तो मैं खासकर बोल रहा हूँ। महाभारत एक ऐसी चीज़ है कि महाभारत में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसे कोई भी लिटरेचर लिखा गया जो महाभारत से ग्रेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर्क, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नेचर, सारी चीज़ें जितनी भी एक ह्यूमन नेचर में होती हैं वो सारी महाभारत में है। महाभारत एक सिंगल बाइबल जैसे बोलते हैं ना, राइटर की बाइबल हो सकती है महाभारत। तो नाटक के लिए अब यही है कि आप हर कैरेक्टर की आर्क को समझो कि हर कहानी के अंत तक जितने किरदार आपके नाटक में है, खासकर मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट या जो साइड सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो जर्नी जब तक नाटक की खत्म हो रही है तो एंड तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने उनमें परिवर्तन आया है। अगर आपके नाटक में या किसी भी कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखी है तो इसका मतलब वो कहानी कहने लायक थी ही नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है।
0: नहीं, दैट सो अमेजिंग क्योंकि कोई पॉइंट भी नहीं है उसका कि कुछ जियोगे नहीं आप।
1: बिल्कुल,
0: जीने के लिए यात्रा जरूरी होती है और यात्रा यही होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट वो पहुंचे और फॉर्मेट वही काम करता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में मोटा मोटे तो कुछ 8-10 ही कहानियां हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, उन्हीं पे पूरी दुनिया का सिनेमा टिका हुआ है कि लड़का लड़की मिलते हैं, या तो उन्हें घर वाले मानते हैं या तो नहीं मानते हैं, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तो ग्रीड होगा कुछ बीच में, बस उसी में क्या नया आप ट्रीट कर सकते हो, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क।
1: क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है सागर भाई कि इमोशंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री सेम ही रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो नहीं कही जा चुकी, बस आप उसको हर नए समकालीन परिवेश में कैसे दोबारा से कह सकते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि इमोशंस वही रहने वाले
0: हैं। मैंने एक प्ले पढ़ा था आषाढ़ का एक दिन,
1: बहुत सुंदर नाटक है, मोहन राकेश का।
0: मैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स कंसीडर करता हूँ अगर मुझे कोई नाटकों के बारे में पूछेगा तो। मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, ये दो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। एंड आषाढ़ का एक दिन में जब वो आप विरह वाला वो सीन देखते हो, मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि शायद पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ,
1: कालिदास का
0: और वो जब कालिदास आके अपना पूरा किस्सा बता रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता था पर मैं क्यों नहीं आ सका, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से टप टप टप टप आंसू गिर रहे हैं और मैं उस पूरे प्रसंग को पढ़ रहा हूँ। वो इतना सुंदर लम्हा था मेरे लिए कि ये क्या जी रहा हूँ यार मैं जिंदगी। तो विरह तो वहां से चला आ रहा है,
1: बिल्कुल,
0: कालिदास के टाइम से,
1: बिल्कुल,
0: और आज तक भी वो विरह है, आज तक भी उस पर ही कहानियां कहीं जा रही है, तो वो सेम रहेगा, वही प्रेम, वही विरह, वही जुदाई, वही मिलन, ये चलता रहता है। बहरहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। और अब ये थोड़ा सा धंधे वंदे की बात करेंगे, कहीं से आप लोगों ने लिख लिया है, इश्प्रीत की बात सुनकर आपने एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री लिखना शुरू कर भी दिया है, तो उसको पिच कैसे करोगे, काम कैसे लाना होता है, ये डिस्कस करेंगे अभी। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: Once again, welcome back. I'm RJ Sagar, show voice of youth. हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर इशप्रीत सिंह और यहाँ पर हम लोग राइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मोटा मोटी इशप्रीत को समझाया है वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, हमने तमाम चीज़ें जानी है, हमने जानने की कोशिश करी है एट द सेम टाइम कि अलग अलग फॉर्मेट्स को कैसे अप्रोच करना होता है, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी को फिल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कविता को गाना कैसे बनाया जाता है, नाटक कैसे लिखा जाता है, इंस्पिरेशन कहां से ली जाती है, राइटर किसको बनना चाहिए, रियलिटी चेक क्या होता है, ये तमाम सवाल अभी तक हम डीकोड कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं आपके काम धाम की कि अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है या आपने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख ली है उसको आप अप्रोच कैसे करोगे। इशप्रीत, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। एक राइटर ने एक कहानी लिख ली है
1: जी,
0: उसको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स अभी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी यात्रा शुरू होती है एक दूसरी कि उसको बेचना है, सही लोगों तक पहुंचाना है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे अपनी कहानी को पिच करना होता है, क्या प्लेटफॉर्म है कोई या कैसे होता है?
1: इसका अगर आपको वाकई प्रैक्टिकल आंसर चाहिए किसी बिगिनिंग राइटर के लिए तो उसका सिंपल सा आंसर है बेशर्मी। पिचिंग में, पिच करने के लिए कि आपने आप अपनी नाटक, फिल्म, कविता, गाने, जो भी आपका फॉर्मेट है उसको बिल्कुल सभ्यता के साथ लिखो और पिच करो बेशर्मी के साथ। बेशर्मी से मेरा मतलब ये है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपके पास क्या बचता है कि आप जितने ऑफिसेस, जितने प्रोडक्शन हाउसेस, जितने म्यूजिक लेबल्स, उन सबकी आप लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, अब आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं, ठीक है, एक सेम सैम्पल मैसेज तैयार करो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए और वो धड़ाधड़ आप भेजते रहो। ना जाने कौन सा ऑफिस आपके लिए या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कल डोर खुल जाए। तो वही एक ट्रिक है, क्योंकि मेरा कोई भी, मेरी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंजीनियर्स का है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, और मैं एक ब्लैक शीप हूँ जिसने ये प्रोफेशन चूज किया है, तो मेरे लिए तो कोई कनेक्शन या कोई रेफरेंसेस थे नहीं। तो मेरी अभी तक तो यही अप्रोच चली है कि मैंने यही प्रिंट आउट्स या फिर ये कह लो लिस्ट निकाली और मैंने सबको अपना काम भेजा। और मोस्टली अगर आपने काम अच्छा किया है ना सागर भाई, तो अगर आप 100 जगह भेज रहे हो तो कोई ना कोई एक आपको पिक कर लेगा। ऐसा मुझे प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि अभी भी इतनी खराब दुनिया नहीं हुई है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और 100 में से एक डोर भी ना खुले आपके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने काम पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मे बी माई वर्क इज सो बैड। तो एक तो आप आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी रखो अपने साथ, अपने साथ ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आप इसमें पेशेंस रखो। पेशेंस दूसरा नंबर सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका 2-3 साल तक भी कुछ नहीं बन रहा है, आप अपनी राइटिंग मत स्टॉप करो। आप एटलीस्ट 10-12 स्क्रिप्ट्स अपने पास लिख कर रखो या फिर 10-12 कविताएं, गाने, आपके पास अपना एक स्टॉक हो कि जब कभी मुझे मंडी में जाना पड़े तो मैं इसको बेच पाऊं। अगर आप खाली हो, आपका स्टॉक ही खाली है, एक स्क्रिप्ट आपकी कभी चली भी गई, आपके पास बाद में ऑफर करने के लिए कुछ हो ही ना, तो राइटर्स के लिए यही एक एडवाइस है कि आप मटेरियल अबंडेंस में रखो कि कोई भी सोर्स आए वो आपको उठा ले और उसके लायक आपके पास काम हो। तो एक तो पिचिंग अपनी कोल्ड रखो, सबको काम भेजो और शर्म मत करो काम मांगने में, या और नए लोगों से मिलो। और सिर्फ राइटर्स राइटर्स से ना मिले, राइटर्स राइटर्स को छोड़ के सबसे मिले।
0: हाँ, क्योंकि वो भी इवेंचुअली काम ढूंढ रहा होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पहले अपनी दुकान के बारे में सोचेगा।
1: बिल्कुल, बिजनेसमैन से मिलो।
0: हाँ,
1: आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आर्ट्स के शौकीन होते हैं। मतलब बड़े वकील हो गए, बड़े जजेस हो गए।
0: हाँ,
1: जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, आपको पता है रोमन एम्पायर के टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स और आर्टिस्ट सबसे लो दर्जे के माने जाते थे कि ये तो सर्कस है ना, इसको तो एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, और थ्रोन पे बैठ के या फिर ऊपर बालकनीज पे बैठ के देखते थे राजा या उनके जो आपके ये सब फेलो मैन होते हैं। तो आज भी वही है, देखते आर्टिस्ट को आज भी वैसे ही है। तो इसीलिए आप बड़े लोगों के साथ उठो बैठो आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली जब आर्टिस्ट के साथ ही बैठने लग जाते हैं ना तो वो एक बबल में चले जाते हैं, प्योरिस्ट बन जाते हैं कि हम सारे तो बहुत कुछ एक नेक काम कर रहे हैं और हमें तवज्जो, फिर वो एक पिटी होल है, सेल्फ पिटी में जाते हैं फिर आर्टिस्ट। जब 4 आर्टिस्ट एक साथ बैठ के अपना करियर डिस्कस करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को आइसोलेशन में रहना चाहिए और आर्टिस्ट को छोड़ के सबसे इंटरेक्ट करना चाहिए। आर्टिस्ट के साथ तब मिलो जब आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो। वरना सिर्फ आप आर्ट की बातें करोगे, आपके पास बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, वर्ल्ड कैसे रन करता है, यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट।
0: हाँ, इधर देश और फिर रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स को बहुत माना जाता था, तो उनको थोड़ी तवज्जो दी जाती थी। या तो एक आर्टिस्ट ऐसा ग्लैडिएटर बन के दिखा दे
1: हाँ।
0: कि मैं कुछ ऐसा लेके आ रहा हूँ,
1: बिल्कुल,
0: तो शायद वो हो सकता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बोली ग्लैडिएटर्स वाली, क्योंकि मैं और मेरा एक और फेलो फ्रेंड है अंकुर हुड्डा, तो हम दोनों राइटर्स हैं, तो हम दोनों अक्सर ये बात करते हैं मजाक में कि पुराने राइटर्स को देख लो, चाहे वो हिंदी के हो, वेस्ट के हो, या हमेशा इतने ऐसे स्किनी से और इतने मतलब कमजोर से क्यों, फीबल से क्यों दिखते हैं कि गुर्बत में। और ये एक तो इमेज भी राइटर्स की ऐसी है कि ये वैसे ही होगा, तो थोड़ा बदलना चाहिए राइटर्स को भी। आप फिजिकली फिट रहो, जिसे कहते हैं ना वॉरियर राइटर बनो तो बेहतर है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे मेरे थिएटर कोच थे तुषार भैया, उन्होंने बात बोली थी कि हमारा माइंडसेट भी वही था कि थिएटर करेंगे यार, ऐसे जिंदगी कटेगी। मंडी हाउस जाते थे, अच्छा लगता था, वो रोमांटिसाइज करते ना चीजों को। सो ही सेड कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाला किसने?
1: Exactly.
0: कि एक राइटर बैठ के 10 रुपए के कुल्लड़ में चाय पिएगा, हाँ, कुर्ता पहने, हाँ, एक राइटर अच्छा लुई विटोन के कपड़े पहन के स्टारबक्स में बैठ के क्यों नहीं लिख सकता?
1: बिल्कुल।
0: या एक एक्टर स्टारबक्स में क्यों नहीं बैठ सकता? दैट शुड बी द क्वेश्चन,
1: राइट?
0: कि तुम थिएटर वालों को इतना रोमांटिसाइज, गरीबी को रोमांटिसाइज काहे कर रहे हो?
1: एग्जैक्टली।
0: क्योंकि तुम जो एग्जांपल सेट करोगे आगे उन्हीं को वही मिलेगा ना।
1: बिल्कुल।
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मुझे किस्सा भी याद आ रहा है सलीम जावेद साहब का। पहले राइटर्स को क्रेडिट मिलता ही नहीं था।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है। तो उन्होंने, आपको याद होगा वो किस्सा, उन्होंने जा जाके मूवीज के जो पोस्टर लगते थे सबके ऊपर पेंट कर
1: दिया और नाम लिख दिया,
0: नाम लिख दिया सलीम जावेद। तो वहां से एक बगावत शुरू हुई।
1: हाँ, तो राइटर्स इनहेरेंटली रेवोल्यूशनरी राइटर्स को होना चाहिए। भगत सिंह लिखते थे।
0: हाँ, भगत सिंह बहुत अच्छे राइटर थे।
1: भगत सिंह लिखते भी थे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब भी फोड़ा, लेनिन के फॉलोअर थे, जेल में भी लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो देख रहे जो मैं वॉरियर राइटर वाली बात कह रहा था, कि दोनों चीजें पॉसिबल है। और एक वो प्योरिटनिज्म छोड़ना पड़ेगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये परस्यू करूंगा।
0: हाँ, रिजिड नहीं हो सकता। चलिए, ओके, लेट्स टेक इट दिस वे। आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन हाउसेस के मुझे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे, मुझे फिर राइटिंग वहाँ पे पिच करनी है। मानकर चलो मेरी एक स्क्रिप्ट है जो मैं 100 पेज में लिखी है मैंने, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, 100 पेज पड़ेगा। मैं कैसे वो स्क्रिप्ट, वो इमोशन कन्वे करूँगा, मतलब व्हाट्स द प्रोसेस?
1: तो वेब सीरीज अगर आप लिख रहे हो, अगर आपका वेब सीरीज पिच करने का मन है, तो एक शो बाइबल टर्म है, शो बाइबल, विच इज लाइक 1 पेजर या 2 पेजर आप अपना एक बना लेते हो कि क्या प्लॉट है, मेजर चीजें क्या आपकी उसमें है, जिस्ट बता दे जो आपकी वेब सीरीज की। तो शो बाइबल आप प्रिपेयर करते हो वेब सीरीज के लिए। फिल्म्स के लिए हो गया सिनॉप्सिस, ठीक है, जिसे हम कहानियों के लिए समरी बोलते हैं। फिल्म के लिए हम यूजुअली बोलते हैं समरी, सिनॉप्सिस। और लॉग लाइन एक टर्म है, लॉग लाइन बहुत जरूरी होती है। बेशक आपने 100 पेज लिख लिए हैं, लेकिन अगर आपकी लॉग लाइन इज बेसिकली 1 लाइन दैट डिस्क्राइब्स द इंटायर फिल्म, कि सुरेश अ 24-year-old टेक्स अ कैब लेट एट नाइट एंड ट्रबल इंस्यूज, तो आपने एक्साइट भी कर दिया, आपने बता भी दिया कि सुबह 4 बजे सुरेश ने गाड़ी पकड़ी और अब पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो लोग एक लाइन पढ़कर फिल्म देखने आ जाते हैं। तो मैं ये राइटर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि नो मैटर आपकी 100-150 की स्क्रिप्ट, कितनी पेजेस की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका सिनॉप्सिस पावरफुल नहीं है, अगर आपका लॉग लाइन पावरफुल नहीं है, तो मे बी प्रोडक्शन हाउसेस देखे भी ना आपका फोल्डर खोल के।
0: स्क्रिप्ट अगर अच्छी है और सिनॉप्सिस उसको लिखने नहीं आते हैं, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या एलिमेंट्स डालने होते हैं, क्या ध्यान में रखना होता है?
1: रेफरेंसेस, आप जितनी आपको फिल्में पसंद है जो आपने अब तक देखी है, वो सबकी लिस्ट बनाओ, IMDB पे जाओ, और उसका जब आप IMDB वो फिल्म का नाम लिखोगे तो वो लॉग लाइन खुद ब खुद नीचे लिखी आती है। आप कम से कम 100 फिल्मों की लॉग लाइन्स पढ़ डालो, गॉडफादर की पढ़ डालो, टैक्सी ड्राइवर की पढ़ डालो, रेजिंग बुल की देख लो कि ऐसा क्या था इन्होंने जो लिखा हुआ था, और आपको कुछ ना कुछ कैप्टिवेटिंग मिल जाएगा। तो जिसको नहीं भी आती वो बाकी फिल्मों का सहारा ले, बाकी फिल्मों से सीखे कि इन्होंने अपनी समरी कैसे लिखी, सिनॉप्सिस कैसे लिखा, लॉग लाइन कैसे लिखा, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया। और आप जिस नेचर की फिल्म लिख रहे हैं उसकी आपको 10 फिल्में वैसी और मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग। तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि राइटिंग को कैसे पिच करना होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि आपने कुछ लिखा, आपने काम कहीं पर भेजा, आपने लेकिन कहीं पर कॉपीराइट रजिस्टर नहीं कराया, किसी ने उसको उठा लिया, आपने जहाँ आइडिया भेजा, ये भी डर होता है ना कि वो एग्जैक्ट उस थॉट को उठा के लिखने लगे, भेजने लगे, कोई और राइटर उस पर काम करने लगे, शूट होने लगे। इस केस में राइटर क्या कुछ कर सकता है?
1: राइट, इसमें देखिए दो चीजें हैं कॉपीराइट लॉ में, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडिया और एक्सप्रेशन। आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो लीगल सिस्टम में आइडियाज की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज अभी यहाँ बैठकर मुझे कोई आइडिया सुनाया कि मैं इस फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं उस आइडिया की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और मैं आगे किसी को भेज देता हूँ और उस पर वो फिल्म बना देता है, आप इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुझे अपना आइडिया सुनाया था और आइडिया लीगली कवर्ड नहीं होता। एक्सप्रेशन कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक्सप्रेशन को तवज्जो देता है कि अगर यही आपने मेरे को लिख कर, आइडिया मतलब जो दिमाग में है, कागजी घोड़ा जो हवा में है, अभी घोड़ा दिख नहीं रहा है, और एक्सप्रेशन मतलब घोड़ा जब दिखने लग जाए, तो जब आप मुझे पेपर पे लिखकर अगर आपने मुझे कुछ हैंडओवर किया है या मुझे कोई ईमेल भेजी है कि ये मेरा ड्राफ्ट है और ये मैं कहीं आगे भेज देता हूँ, तो अगर ये चीज़ मैंने कॉपीराइट नहीं भी करवाई हुई, ये फिर भी कॉपीराइट वायलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उसी पर आप क्लेम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अब तो मैं क्लेम नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं कि मेरा लीगल वायलेशन हुआ है क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवा रखा था। अगर आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में किसी को सेंड किया है, एक्सप्रेशन से मेरा मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आप लीगली उसका डिफेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉपीराइट सिर्फ रजिस्टर्ड चीज़ों का ही होता है, बट बेटर ये है कि आप रजिस्टर कॉपीराइट करवा लें क्योंकि उससे आपको एक लीगल टेनेसिटी मिलती है कि देखो ये मेरे कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाकर मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और ये हर तरीके से मतलब परिपक्व है लीगली। इससे आपको, आपका एडवोकेट भी बेटर पोजीशन में खुद को पाएगा डिफेंड करने के लिए आपको।
0: ऑलराइट,
1: क्योंकि जब आपको कॉपीराइट ऑफिस से ही आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो फिर तो वो विक्ट्री है ना, क्लियर लीगल विक्ट्री है फिर।
0: हाँ, फिर तो आप उसको चैलेंज कर सकते।
1: दूसरी चीज में थोड़ा सा चीजें डाइसी हो जाती हैं जब आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से, अब तो AI भी आ गया है, राइटर्स के लिए तो आफत आने वाली है क्योंकि किसी भी तरीके से आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेटर है कि आप कॉपीराइट करवा ही लें।
0: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। पांच ऐसी किताबें बताइए जो हर एक इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर किसी को राइटर बनना है तो।
1: क्योंकि हम अपनी ऑडियंस इंडिया में हैं तो हिंदी की किताबें कवर करना तो जरूरी है।
0: हाँ,
1: तो मेरे फेवरेट ऑथर हैं निर्मल वर्मा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है और उनकी कोई ऐसी एक भी किताब नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो और इवन बार बार पढ़ी है। तो एक तो अभी एक ही उपन्यास बताऊंगा उनका, अंतिमारण्य, वो सबको पढ़ना चाहिए, सबको, अंतिमारण्य, ये एक उपन्यास हो गया। उसके अलावा वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय है, बहुत भारी किताब है, बहुत हैवी किताब है, और लेकिन पढ़नी सबको चाहिए। मतलब रूस की एक तरीके से सबसे अकम्प्लिश्ड वर्क है, कैरेक्टर आर्क से लेके प्लॉट ट्विस्ट से लेके फैमिली फ्लो चार्ट सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग का आपका कोर्स है वॉर एंड पीस, तो अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस। फिर आपको पढ़नी चाहिए जॉन पॉल सार्त्र को पढ़ना चाहिए आपको। जॉन पॉल सार्त्र की एक किताब है द एज ऑफ रीजन, वो पढ़नी चाहिए। तीन किताबें हो गई, चौथा दोस्तोवस्की पढ़ना चाहिए, फिर से रशियन लिटरेचर। क्राइम एंड पनिशमेंट आपकी बाइबल बन सकती है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किताब है। और चार किताबें, और पांचवा ऑथर मेरा फेवरेट ऑथर है हरमन हेस।
0: ओके,
1: ये एक जर्मन स्विस ऑथर है जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, वर्ल्ड वॉर वन और टू, और उनसे परेशान होकर मेंटली हर तरीके से स्विट्जरलैंड चले गए थे छोड़कर। और इनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है सिद्धार्थ, सिद्धार्था।
0: हाँ, I've heard about this book.
1: मैं इनकी सारी, इनकी तीन किताबें पढ़ चुका हूँ, सिद्धार्था, स्टेपन वुल्फ और डेमियन। हरमन हेस कमाल के ऑथर हैं। तो पांच किताबें हो गई, अंतिमारण्य, वॉर एंड पीस, क्राइम एंड पनिशमेंट, एज ऑफ रीजन और सिद्धार्था।
0: सिद्धार्था का टेक अवे क्या है?
1: सिद्धार्था का टेक अवे राइटर्स के लिए बेस्ट है। सिद्धार्था का टेक अवे है कि सिद्धार्था जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल में, वो गौतम बुद्ध से मिल लेता है लेकिन उनका फॉलोअर नहीं बनता।
0: ओके,
1: और वो चुनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। तो वो कुछ समय के लिए उनके सानिध्य में रहता है और छोड़ देता है। सिद्धार्था एक वो किताब है कि जिसमें सिद्धार्था नाम का लड़का
0: गौतम बुद्ध से मिलता है
1: लेकिन उनका भक्त नहीं बनता,
0: और नाम सिद्धार्थ है,
1: और नाम सिद्धार्थ है, और वो जीवन में सारी फॉलीज और वाइसेस परस्यू करता है, सारे पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है, ये समझने के लिए कि मुझे किस तरीके की जिंदगी चाहिए अपने लिए।
0: सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस सुप्रीत। हालांकि टॉपिक एक ऐसा है और क्योंकि मैं पर्सनल बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इस टॉपिक में, तो कई घंटों तक भी ये शो चल सकता है, बट क्योंकि समय के हमारे पास एक सीमा है तो मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: नहीं सागर भाई, यू आर अ वंडरफुल होस्ट और बहुत ही अच्छा लगा दिल से आपसे बात करके, एंड आई वुड लाइक टू कम अगेन।
0: श्योर मैन, डेफिनेटली वी विल डू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों जितना जॉय मुझे यहाँ मिला स्टूडियो में बैठ करके, जितना मजा मुझे आया अश्प्रीत के सामने बैठ करके, उतना आप तक हम कन्वे कर पाए होंगे क्योंकि एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। तो बहुत बहुत ही सुंदर इंसान है अश्प्रीत, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत सुंदर गाने कविताएं और फिल्में लिखते हैं, इसके अलावा बहुत ही सुंदर सभ्य और हम्बल एक पर्सन जिसको हम बोलेंगे वो हैं। कि मैंने सिंपली इनको बोला कि यार आओगे आपके साथ एक शो करना है रेडियो पर, इससे ठीक है भाई मैं आऊँगा, और वो आज यहाँ पर आ भी गए जब उन्हें टाइम मिला और बहुत इत्मीनान से इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपने नहीं देखा है, HR 51 स्टेज के ऊपर मौजूद है, जाकर के प्लीज चेक करिए, अश्प्रीत का काम है। इसके अलावा मैं पर्सनल रेकमेंड करूंगा आपको साल नाम का गाना, अभी जाकर के स्पॉटिफाई यूट्यूब जहां आपका मन करे अश्प्रीत सिंह का वो जरूर सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज जैसा मौसम है आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर आएगी। सो थैंक यू सो मच अश्प्रीत फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट।
1: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच।
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: पर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: बोले हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आरजे सागर, आज को हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो बहुत खास है, कई मायनों में खास है। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, जैसे कि एक प्रोसेस के बारे में बात होती है, बट वो केवल इतना नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, कंपनीज के बारे में पता लगता है, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, लाइक फाउंडर्स कौन हैं, कंपनीज के बैकग्राउंड क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है। आपकी हेल्प ये होती है कि आपको ये जानने को मिलता है, जस्ट इन केस अगर आप उस इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं, सो यू हैव दिस अपर हैंड टू गो देयर। तो आज का शो हर बार की तरह बहुत खास होने वाला है, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, बट फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और मेरा सलाम कबूल करिए।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे, पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मालवा 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजेक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है, इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है, इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टैग। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

की उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैग होते हैं जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज।

जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है, तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में आमा

0: वापस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

0: उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे, शो पसंद आ रहा है, इंडस्ट्री को समझ पाए हैं बिना किसी देरी के। आज की कंपनी की बात करते हैं। नाम है इस कंपनी का नियो सॉल्यूशंस। एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जो डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियंस के लिए वो बनाती है। ब्लू कॉलर पेरोल बैंकिंग से लेकर के ग्लोबली जो यूजेबल ट्रेवल मनी सॉल्यूशंस हैं उनमें ये कंपनी डील करती है। और ये जो है ये इसका कोर बिजनेस मॉडल है। सिंपल अगर शब्दों में इसको समझा जाए तो नियो एक ऐसी कंपनी है जो लेवरेज करती है टेक को टू सिंप्लीफाई एवरीडे फाइनेंसेस एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ट्रेडिशनल बैंक्स क्रिएट। दैट इज अ थिंग। 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। एम एक ही लेकर के चली कि जिस तरीके से सैलरीड एम्प्लॉयज अपनी लाइफ जीते हैं या ट्रैवलर्स अपनी लाइफ जीते हैं, वेट करना पड़ता है, सैलरी नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है, उधार मांगना पड़ता है, एक लूप में फंसते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए इन्होंने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है स्टार्ट करी। रादर देन बिल्डिंग अ बैंक जहाँ पर डेफिनेटली लाइसेंसिंग जरूरत होती है, इन्होंने पार्टनरशिप की विद रेगुलेटेड बैंक्स और टेक को वहाँ पर लगाया। तो बैंक का भी फायदा हुआ कि उनका पैसा और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है, घूम पा रहा है। इस कंपनी को भी फायदा हुआ कि एज अ मीडिएटर ये भी ज़्यादा पोल इन कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा नाम भी हो रहा है, एट द सेम टाइम लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं। सो एक तरीके से अफोर्डेबल बैंकिंग एक्सपीरियंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी अफोर्डेबल टर्म क्या है इसको आप खुद जाकर के चेक करेंगे तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कंपनी ने जो क्लेम किया है मैं वो शब्द आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आई एम नॉट वैलिडेटिंग दिस थिंग। द आइडिया बिहाइंड इट वॉज रियली रियली रियली सिंपल कि जो रियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए। ट्रेडिशनल बैंक में लोन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, पेपर वर्क है, फिजिकल प्रेजेंस है, ब्रांचेज में जाना है, चक्कर काटने हैं, लंच है, बाद में आना, सर्वर डाउन है, बाद में आना, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। टेक आ गया है, उनको सिंप्लीफाई करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोर्टल पे चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया। दिस इज द कोर बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। नाउ उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक जितनी बात आपको बताई है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, आप समझ पाए हैं। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील अलाइव।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे, शो पसंद आ रहा है। कंपनी के बारे में ओवरव्यू आपको दे चुके हैं, आइए आगे लेकर चलते हैं बिना किसी देरी की। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है विनय बागरी, को फाउंडर है और CEO है कंपनी के। 18 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा बैंक और भी काफी सारे बैंक्स के साथ काम कर चुके हैं, तो बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं रिटेल बैंकिंग में, स्ट्रेटजी एंड सैलरी अकाउंट मैनेजमेंट में, ठीक है। मास्टर्स की डिग्री है इनके पास इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम IIM कैलकटा। सेकंड नेम इज वीरेंद्र, जिनका शॉर्ट फॉर्म वीरेन भी पुकारा जाता है, मिस्टर वीरेंद्र बिष्ट, अनदर को फाउंडर एंड CTO ऑफ दिस कंपनी। अच्छे खासे आप कह सकते हो एक प्रोमिनेंट फिगर हैं इन टेक वर्ल्ड, जाना जाता है इनको। डीप एक्सपीरियंस रखते हैं इन बिल्डिंग कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स, मेक माई ट्रिप, मोबीक्विक, इन जैसी कंपनीज के साथ काम कर चुके। तो बेसिकली एक इंसान बैंक को अच्छे से समझता है, फाइनेंस को समझता है, मनी फ्लो को समझता है, कस्टमर को समझता है, ट्रेडिशनल बैंक्स कैसे काम करते हैं उसको समझता है, और वो क्या लूप होल्स थे वहाँ पे उनको समझता है। दूसरी तरफ है एक इंसान जो मेक माई ट्रिप, मोबीक्विक, ऐसी कंपनीज जिसने साथ जिस इंसान ने काम किया है, जो टेक को समझता है, एक प्लेटफॉर्म को कैसे चलाना होता है, स्मूथ कैसे बनाना होता है, वो सब समझता है। तो दो चीजें जब मिलती हैं तब जाकर ऐसा करता है। और यहां पर क्योंकि हम लोग फिनटेक की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी, एक भाई साहब फाइनेंस लेकर के आ रहे हैं, दूसरे टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ही चीजें काम करती हैं। वीरेंद्र की अगर आप बात करेंगे तो कस्टमर प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत मजा आता है, वो उनका सबसे बड़ा USP है। ही वॉज बाय द वे वन ऑफ द अर्ली इंजीनियर्स जिसने बैक एंड बैंकिंग सिस्टम को जो है ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा स्मूथ बनाया था। वीरेन जी की बात हुई यहाँ पर। तो ये दो लोगों ने मिलकर के प्लेटफॉर्म बनाया जिसको एक सिंपल थॉट के साथ शुरू किया गया कि ट्रेडिशनल बैंक्स में जो लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम आ रही लोगों को, उनको फिक्स किया जाए, और वो इन्होंने अच्छे से किया। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

जैन फकीरों में, जैन परंपरा में इस तरह के विचार चलते। हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ज्ञान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसपे चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब जब उसकी कृपा होती, किसी पे नहीं तो वो मारते ही नहीं। फिजूल पे तो वो खर्च ही क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम पे उसकी बड़ी कृपा है। और वो मारता है इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा। वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो। वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही, वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी, वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा, वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार। उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते न प्रकाश होता न कुंडलनी जगती न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया। गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लौटा प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो धन्यवाद, कैसा होगा कहना मुश्किल है। ये ठीक धन्यवाद था, 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था। वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का है, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते। मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को, फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे दे के बुलाया। और जब मैं गया तो वो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन। ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्य अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो, वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा, बोलो। तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है, उस फकीर ने कहा अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है, मगर ये तत्व चर्चा है। ज़ेन फकीर ये कह रहा है कि हाँ कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हाँ कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया, दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हाँ कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो ज़ेन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो, धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है, उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया, तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है, तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे, इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ साथ जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए, तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है, लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा है, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाती, वो बेचैन होने लगती, फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई,
कि वो एकदम परेशान होने लगी। एक मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा तुम सोचते हो, तुम्हें पहले पता चलेगा तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत, असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बात है। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा न रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता न रही, क्योंकि कोई पर ही न रहा, दूसरे पर निर्भरता न रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता, किसी को मिल जाए ठीक न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता। सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना, बिखेर देता जिसको मिल जाए, फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है, और जिसका फूल खिल जाता है चौथी बात आनंद स्वभाव है। जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है, बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है। तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूं, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है परमात्मा के प्रति, इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा।
जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां? अहंकार दुख है, अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वही आनंद आ गया। और जहां आनंद आ जाता है, वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती। तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बता ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है। जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है। तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है। प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत। तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है। या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो, तो तुम पहुंच जाओगे। या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते। हिंदू, मुसलमान, ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधिधर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात साथ साथ घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए, और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा तो उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर न निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका, और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र, जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी है।

0: परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहाँ तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दूं। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को कि जरा और, ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया? पहली तो बात, तुम शब्दों में भी शूद्र और ब्राह्मण बनाए बैठे, आदमियों में भी वर्ण बनाए, शब्दों में भी बना लिए, तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा शूद्र शब्द है, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं। रही बात शब्दों की, तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो, जितना अभिव्यंजक हो। अब चमचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो, इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो, इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है, इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है, तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है, कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचागिरी पुराना शास्त्र है, वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही है, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण, कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है, स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरे एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खनबाजी, लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता, सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है, या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है, जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा, अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है, अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में, तुम्हें तकलीफ हुई होगी ये मैं मानता हूं, तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है, तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है, उसे प्रज्वलित करो, बुझी बुझी, आग नहीं है उसमें, तो तुम घबरा जाते हो, जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए, और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो, बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं, तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते, कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है, बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता है। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछ नहीं मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गायें चराना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम, फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता, 3 साल यही करना है तो और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो वो करो ऐसा करो इसको वहां भेजो इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है। और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता, तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगूं तो तुम अधूरे रह जाओगे। अब तुम चुन लो, तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी, तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी। तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना है जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका। सास मंदिर गई थी, घर में बहू थी। उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं, और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी। वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है। सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली? मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली? घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला के ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा, बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली? माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी। साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूँ कहीं आगे जाओ। औपचारिकता पूरी कर दी, अब मैं कहती हूँ कहीं और आगे जाओ। बहू कौन है कहने वाली? औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय है। औपचारिकताएं छोड़ो, यहां कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे, यहां किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीजिएट वासे मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचा है चमपी, मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचा है उबाचा। जीव के श्रव नहीं मात्र से कटहीं कलेश विकार, तेहीं बटरिंग व्रत की कथा सुनहु क्लर्क नर नारी। हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार, मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले प्यारे, उसकी पत्नी के चरणों को उनके साथ जकड़ ले प्यारे। आते हुए सलाम मार दे, जाते हुए सलाम मार दे, बिछा पलंग पर चद्दर दरिया, पहुंचा सब्जी की टोकरियां, त्योहारों पर भेज मिठाई, उपहारों की कर सप्लाई। कुछ दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाएगी, तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाएगी। बटरिंग की महिमा अनंत मौसों लिखी न जाए, सुख भोगई इह लोक नर अंत बास पद पाए। बटन वृत्त की कथा को विरचित कवि बेचैन पढ़े सुने जे क्लर्क जन चैन करें दिन रैन इति श्री क्लर्को खंडे बटरिंग व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिल वस्तु गए, उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए, उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढककर आई। स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं, लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूं, लेकिन मुंह ढककर आई हूं, ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थिर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तू उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी। तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करें। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है, और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही, इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है, तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं, इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद है। पहली बात आधुनिक मनोविज्ञान का

किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती। ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था। रोग मन में था, मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था। तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता। ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता। हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती, कि कान बहरे हो जाते। ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती, कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती है। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है। इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी। लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते मन में गड़ा है तो मन से भी पार। इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी। अगर तुम्हारा मन

आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी, कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो, वो लोभ बन जाएगा। तुम उसे करुणा में लगा दो, वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती। सीढ़ियां तो वही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया। तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो क्योंकि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न है, मौलिक रूप से भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पोंछते रहो, मिटाते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। मन से हट जाए तो शरीर तत्क्षण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है ये अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़ी तो रहता है, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी। मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी। इससे दुकान खूब चल रही,
क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं, और अब बालवाल समार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर रही जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी, सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान, ज्ञान चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा, तो तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इनकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तक तो कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू हूं, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां है, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी फिर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते, वो बदला लेंगे। जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी, बदला तो लेंगे। कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है, उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा। जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था वही तुम्हें गालियां देगा, तब दिल को और भी चोट लगेगी। अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था, वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा, वो इसका बदला तो लेगा। जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना
चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते, क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है, लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है। स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है, इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती है, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है। लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है, उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं। और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई, और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया, वो तुम्हारी जीभ हो गई, और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जननेंद्रिय उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की है और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए, ट्रेसपास हुआ, तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने को सिकोड़े खड़े होते हैं। कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे, अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी है, हम नहीं छू रहे। और हम एक सीमा बांध के रखते हैं। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते, एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती।
12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे, तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगें फैलती है। उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
2: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट line which says this gyan works, that's the day when I say okay, now I'm at the right place, this is God. Even that let's say the belief to the truth, wo jo journey hai, because it starts with the belief ki ye gyan jo hai wo direct parmatma de rahe hain, lekin wo mere liye truth kab ban jata, when I see the transformation in myself, then I say ki, you know, jo dene wala hai, wo jo doctor hai, he's right because I'm getting cured.
1: Right.
2: So it's a very big thing for any individual.
1: Aur Sister Shivani, aisa bahut se log mujhe hamare sath jo jud rahe hain, wo kehte ja rahe hain ki mere mein parivartan dekh rahe ho, lekin main show par hu.
2: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says, कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, and वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, and you must know कि you are becoming a source of inspiration for a lot of people.
1: Right.
2: They are, because they're seeing you and they say कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, and they also feel there is a change in the way you're presenting the whole gyan. So they say ke, because they are seeing you as the example on which the gyan has worked. See, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस ज्ञान वर्क्स।
1: वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
3: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो, ये रिलीजियस टॉक नहीं है, ये कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then आई फेल कि दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ, जो हमारी जिंदगी है हम उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या यू नो इफ शी इज लुकिंग सो काम मैं ऐसे बन सकती हूँ, बिकॉज यू नो हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है नो. सो आई फेल कि ऑलराइट, देन आई थॉट कि ओके ये एक ही बार होगा, कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वहीं वो उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई, आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
1: I know. That's the biggest thing.
3: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं, ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस, क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा. जब वो हमारे से गुस्से से बात कर फिर उस खुद को लगता है कि शी इज़ नॉट स्क्रीमिंग तो कोई ज़रूरत है. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए यू नो क्या हो रहा है, her reaction not spontaneous anymore. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
1: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, सो यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस व्हिच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वाज सो इंपॉर्टेंट. सो शिवानी,
2: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क, यू नो, बिकॉज आई टेल यू अ लॉट ऑफ अस वॉचिंग द प्रोग्राम बट देन वन इज कि हमने प्रोग्राम देखा सुना, लाइक यू बहुत सारे भाई बहन रेगुलर भी देख रहे हैं, बट समवेयर दैट लिटिल गैप इज देयर बिटवीन प्रोग्राम को देखना सुनना, परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है समझना भी, लेकिन टू टेक इट बैक टू माई लाइफ टुमारो. सो वॉट इज इट दैट प्रोबेबली इंस्पायर्ड यू टू डू इट एंड वॉट डिड यू डू टू डू दैट, यू नो, टू गेट इट टू वर्क? बिकॉज अदरवाइज गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You
1: have to. What was that effort?
3: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life, is there were many things, factors going wrong in my life and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise I'm holding, jaise ret pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, यू नो इज दैट दैट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स,
1: चीजें सिचुएशंस हैं वो
3: सिचुएशंस हैं,
2: एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग, इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग के जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एनी मोर, तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल, माय हस्बैंड इज नॉट इन माय कंट्रोल, माय चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ दे आर नॉट इन माय कंट्रोल, एंड सबसे बड़ी बात I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And usse ek bahut feeling of demotivation, you know. Life is not enjoyable anymore when you feel ki nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into
3: yes.
2: control.
3: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you. Try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God and I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, to I felt that he actually held on to me and he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is religion, baki sare, I'm a Muslim and it gets complicated. Jo religious cheeze wo complicated. Mujhe kuch bilkul plain and simple, jo mere samajh mein aaye, aisa mujhe chahiye tha. Jisse meri zindagi, you know, hum everybody, hum jo bhi programs dekh rahe, everybody wants in their nuclear family to be happy. Koi ye sochta nahi hai ki mujhe dukhi hona hai. I don't think anybody thinks that. Everybody wants just to be happy.
1: Very true. Har koi apne efforts jo hai wo khush rehne ke liye kar raha hai.
3: Yes. So I just wanted to be happy. I wanted my family to be happy, contented. And I feel I'm already on that journey. I feel ke jo bhi mere haath se phisla ja raha tha, phisal gaya tha, jo chala gaya tha, wo dheere kaise, I don't know, main samjha nahi pa rahi hu, lekin wo wapas lot kiya. It's a tide. It went and it's returning.
2: But what all do you feel? You want to share? What do you feel had gone on that's come back?
3: A lot of things. A lot of that particular phase jab maine ye experiment kiya tha, business mein bhi mere husband's ko losses the, family mein bhi problems chal rahe the, and you know, things like that. And we were both depressed. We both were feeling that, you know, we are good people. Hume sab lagta hai, hum sab logon ko aise lagta hai ki we are good people.
2: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा
3: है? हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी, तो हमारे साथ ये ये ये इतनी punishments हमें क्यों मिल रही है? लेकिन now I realize that these were lessons and this was जैसे परमात्मा हमें ईश्वर कहो, almighty कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls. We are happy souls. We don't have to be sad, you know. Ye rona dhona is not our life.
1: Very true. How beautiful. This is what I think.
2: This is what we've been saying every time.
1: We've been wanting people to come out and say.
2: Yeah.
1: Because
2: pain
1: this
2: is not a part
1: real
2: of
1: thing.
2: Your
1: yes.
3: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
1: Yeah. You know. And
2: this is, you know, she's not even realized what she said.
1: Yes.
2: But this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority log hum kehte hain ki humne dukh nahi diya, hum kuch galat nahi kare. Lekin dukh lena nahi hai. That part we didn't know. We knew this ke dukh dena nahi hai. Wo bhi kabhi kabhi galti se de hi dete the. Lekin dukh na lo. We didn't know that we had a choice there. We always thought ki agar kisi ne kuch kaha hai to dukhi to.
3: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, mujhe 24 hours lagta hai. कि द डिवाइन फोर्सेस विथ मी, वो मेरे साथ ही है. ही इज विथ मी एंड देयरफॉर आई विल नॉट डू रॉन्ग एंड आई विल नॉट बी रॉन्ग. वो है, ही इज प्रोटेक्टिंग मी, वो मेरे साथ ही है. अगर कुछ समथिंग गोज रॉन्ग, आई फील ही इज टीचिंग मी समथिंग नाउ. आई नेवर सी इट नेगेटिवली.
2: So it becomes a very personal relationship with God.
3: Yes, I mean now I have found ke I have a mechanism for by which I can actually talk to him. I am sharing my life daily basis. Jab when I'm in meditation, that's when I'm very quiet. But uske baad I talk to him. I tell him agar if I've done something by mistake, I've done something wrong ya mujhse kuch, you know, wo spontaneous jo pehle ke sanskar the wo गुस्सा कहीं किसी पे आ गया या कुछ भी, आई विल टेल हिम कि आई हैव दिस इज व्हाट आई डिड टुडे बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. सो द कॉन्शियस लाइक सोल कॉन्शियसनेस, आई एम इन दैट सोल कॉन्शियसनेस एंड बिकॉज आई एम इन सोल कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट डू रॉन्ग. दैट्स द थिंग.
1: सी दैट्स लाइक दृष्टि अगर हमारी ठीक रहती है या हमारा पूरा एहसास रहता है तो एक्चुअली नथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो. You know, ये भी आपके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग आपको एहसास रहता है कि कभी कुछ गलत हो भी नहीं
3: सकता.
1: बहुत सुंदर. अब तो मैं आपको समीना भी कह सकती
3: हूँ. Because I feel
1: so much a part of the family.
3: Yes, I am. That's true. I am a part of the family.
1: अपने सभी दर्शकों के साथ हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि समीना जी भारत जो इस बार आई हैं वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गए ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
3: मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज़ बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सारे भाई बहन हैं, यू नो, एंड इट्स इज़ ब्यूटिफुल. एक्चुअली जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट, इट मेक्स यू फील वेरी, यू फील लाइक एंजल्स, यू नो, फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटिफुल. आई हैड अ चांस टू डू मेडिटेशन for many hours that way, you know, and it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai. mujhe khud nahi laga ki main, you know, 40-45 minute baith sakti hu ek bar, you know, I'm very fidgety, to aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the, you know, senior dadis jisse main mili, wo kehte hai ki ye apni personal journey hai, कोई आपको जज नहीं करने वाला है. आप जिस स्पीड से जाना चाहते हो जाओ, यू नो. एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था, सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम. दैट्स ऑल. आई वाज जस्ट देयर फॉर दिस कनेक्शन.
1: वंडरफुल. एंड यू फेल्ट दैट कनेक्शन?
3: यस, ऑल द टाइम व्हेन मेडिटेशन, ऑल द टाइम.
1: अच्छा, हाउ अबाउट योर फैमिलीज रिस्पॉन्स? आई मीन नॉट ओनली योर इमीडिएट फैमिली बट अब तो एक काफ़ी टाइम बाद आप अपने परिवार से मिलोगे जब मुंबई गए. दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो जब आप कह रहे हो कि वो कितनी एक्टिंग कर रही है या अभी बोलेगी या अभी ये शोर मचाने वाली है.
3: माई मदर डजंट से इट बट शी हरसेल्फ फील्स गुड, यू नो, एंड शी हरसेल्फ नाउ इज टोन डाउन. यानी क्या होता है कभी कभी हम जब शांत हो जाते, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, यू नो. हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा. हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
1: और दूसरी बात ये भी, वो आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं.
3: राइट,
1: यू नो, कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
3: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो. व्हाटएवर आई वांट टू से इट, आई विल जस्ट से इट. आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
1: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
2: This is high self-esteem. Mm. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, yes, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense, yes, that now I don't care anymore, but it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. I don't need to prove anything to anybody. And that वो सिर्फ वो ही कह सकेगा जो अंदर से भर गया है. You know, जब हम अंदर से खाली yes, होते हैं तो we need to make noise, like. लेकिन जब अंदर से भर जाते हैं, now you take your time, I'll wait for you till you come to know.
3: It's okay. Also ego, that's another thing.
2: Yeah.
3: We all celebrate ego, actually. We feel अगर ego नहीं है तो कुछ नहीं है. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is. But I have no ego issues. The reason I can say this is because somebody tells me I'm an idiot. Earlier, I would immediately react. Today, it's not important because if he says I'm an idiot, doesn't make me an idiot. They may say many things about you. They may say, you know, they may call you a failure. They may call you many, many things, you know. And that's the time, in the earlier times, it used to bother me. That, you know, it is... They're inflicting pain on me by saying this thing.
1: You know why it used to bother us, actually? Because somewhere deep within, we used to think we are.
2: Yeah. Somewhere deep within, we didn't even know, actually. हमें पता भी तो नहीं था. I don't know myself. तो आप जो मेरे बारे में बोलोगे, I'm going to take that only as the truth. And अगर आपने मुझे कहा, जैसे उसने कहा कि आपने कहा you're a failure, suddenly I feel like a failure. अगर आपने कहा बहुत अच्छे हो, suddenly I feel very good. So then I'm just waiting for people to say nice things about me. And if somebody is not going to say very nice things,
1: everything goes down. Samina, बहुत कुछ हुआ जो आपने अपने में परिवर्तन किया. घर परिवार में भी definitely होना शुरू हुआ होगा. रास्ते में अब कुछ-कुछ सवाल, कुछ-कुछ बातें अभी भी हैं.
3: Now I feel that this is the way I want to go, and I want to work more because there is so much knowledge out there that I feel ke it's not enough time. I just hope that we don't run short of time. We have to, you know, get that. That should be in a hurry. That हमें जितना ज्ञान मिल सके. Yes, about us, about the divine. कि क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ में नहीं आता था कि वो है कहाँ. जब हम उनको बुलाते थे तो है नहीं. एंड नाउ वी फील नो ही इज देयर. सो नाउ वी वांट टू नो मोर अबाउट हिम. इट्स लाइक यू हैव डिस्कवर्ड अ फ्रेंड बट यू वांट टू नो मोर अबाउट.
2: दैट्स द जर्नी. So that's what we try to do through this program is introduce the two.
3: Yes.
2: You know. And then after that it's each one's own journey with him. Yeah. Absolutely. Yes, yes. So आपने introduction stage भी cross की और relationship भी start हो गया है. And now this relationship will only grow.
3: Yes.
2: जितना आप उस relationship में time और energy invest करते हैं, it's like any other relationship. जितना time और energy आप उस relationship में invest करते हैं, it will only take you further. How did this help in relationships?
3: My relationship with
2: anybody, with closest family.
3: Actually, my husband. Let's talk about him. You know, the first realization that I got, you know, from one of the shows is that the fact that we are together as a couple is already predestined. कि हमें साथ में होना ही था, और हमें ये journey complete करनी है. You know, because divorces,
1: it is actually so important. But everything starts falling in place.
3: Yes.
1: First realization.
3: Because. You know, with divorces at the rate that they're going, and you know you have another alternative, yeah. Okay, this doesn't work, something else will work. But on the other hand, when I feel if this is the journey that I have to complete with him, then I spoke to my husband also, and then he started watching, and we both got involved at the same time, me a little bit more than him. We both realized that if this is the journey that we have to complete, then why not make it a beautiful journey? Then why fight and end it and fight and go on with it and daily cribbings and all? Why can't he change a little and I change a little? We have to make it work in such a way that we as a family collectively can have this journey which is together and have events, have experiences that are enriching our lives.
1: And somewhere, Samina, aapko kabhi ye lagta hai ki why you want to make him happy? Because it makes you happy.
3: Yes, it does. Now it does. Now it used to not be that way. I used to just do it because, okay, just to keep the shanti in the house. Kar lo, because nahi karenge to bahut tata tata hogi. To kar lo. Abhi nahi lagta, nahi, you know. And also if it is meant to be, this way if it is predestined.
2: आपको ये नहीं लगा कि आपका focus अब shift हो गया है, and that's what's made all the difference.
3: Yeah.
2: See, it's the same husband, the same you. Married for how many years?
3: 24 years.
2: So what is that one thought which changes because of which so many changes take place? See, we've talked about so many things changed, and not that we didn't know about these changes before. ये सारी बातें कि हमें अगर किसी के लिए कुछ करना है तो खुशी से करना है बजाय कि ठीक है कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर हम दर्द क्रिएट करते हैं. आज दिन तक हम औरों के लिए करते थे, लेकिन इट वॉज मोर लाइक अ कॉम्प्रोमाइज. इसीलिए अगर आप किसी से भी पूछो कि रिलेशनशिप्स क्या हैं, तो वो कहेंगे एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, यू नो द वर्ड्स आर आल्सो ऑल वेरी निगेटेड. द सैक्रिफाइस आएगा सबसे पहले, एडजस्टमेंट आएगा, कॉम्प्रोमाइज आएगा, क्योंकि मैंने आपकी खुशी के लिए तो कर लिया, लेकिन मैंने अंदर खुद क्या एक्सपीरियंस किया? दैट वॉज पेन. Or you know, I'm not very happy with
3: resentment,
2: anger or hatred sometimes or whatever. तो उससे क्या होगा? फिर भी वो घर में खुशी नहीं होगी. भले हमने वो किया भी, and that's what happened with majority of us. कि हमने बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया. It's not that we're not adjusting. हम बहुत करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर से करते हैं. अंदर से हम अपने ही thought को पकड़ के बैठे हैं. तो क्या हुआ? बाहर से हमने किया. अंदर से हमें फील हो रहा है मैंने इतना किया. तो इट्स मोर लाइक सहन किया. एंड घर का वाइब्रेशन फिर भी कैसा बना? एंड देन वी से मैंने आपके लिए इतना किया, फिर भी खुश नहीं हुए. यू नो, यू स्टिल डिडंट हैव द हैप्पीनेस इन द हाउस दैट वी वर लुकिंग फॉर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एडजस्टेड सो मच एंड कॉम्प्रोमाइज सो मच. बट हियर व्हाट हैपेंड वाज द फोकस शिफ्टेड. And the focus was what I feel in what happened in your case is you stopped working on him and started working on yourself.
1: That's right. And I have to realize that. Thank you so much.
2: Okay. I'm sharing.